सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हुए हैं। इस मीटर पर अब हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रेक समय

0: सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृतियों और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइड्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

संसार के समस्त सुख चैन समृद्धि संप्रभुता एकमात्र उसी ईश्वर की छत्रछाया में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं और प्राणी निर्भय होकर स्व सत्कर्म करने लग जाता है।

ये नेत्र तभी सफल हैं जब इनमें वो सुंदर छवि सदा के लिए बस जाए जिन्हें अपने चित्त में लाकर तपस्वी तप करते हैं, दानी दान करते हैं और महात्मन सभी प्राणियों में इन ईश्वर के दर्शन करते हैं।

जगत जननी माँ, तुम्हारी दया से ही ये संसार चल रहा है। हमें भी ऐसा आशीष प्रदान करो कि इस संसार में रहकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। सदा सभी का भला करें, हमारे मन में किसी के प्रति वैर न हो, सबसे अपना प्रेम निभाएं।

आज के कार्यक्रम वंदना में आपने जिन स्वरों को सुना वे स्वर थे हरिओम शरण, राजेश मिश्रा, पंडित कुमार गंधर्व, लता मंगेशकर और अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना संवेद स्वरों में। इसी के साथ आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बौद्ध धर्म में जन कल्याण विषय पर ये वाचन। आलेख भिक्षु ज्ञान रतन का है और स्वर सरोज शर्मा का। आइए सुने कार्यक्रम प्रकाश किरण।

0: तथागत भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में बुद्ध धर्म का उपदेश देकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय घोष से सुख और समाधान के मार्ग को प्रशस्त किया। उन्होंने राजा से लेकर रंक तक सबके मन में धर्म के प्रति श्रद्धांकुर पैदा कर दिया था।
1: यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति,
0: जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है।
1: स्वाख्यातो भगवता धम्मो,
0: भगवान बुद्ध का धम्म सुआख्यान है, अच्छी तरह कहा गया है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को धम्म प्रचार के संबंध में उपदेश देते हुए कहा था,
1: चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं देशेत भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं परियोसान कल्याणं सात्थं सौभिंजनं केवल परिपूर्णं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेथति।
0: भिक्षुओं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देवता और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। भिक्षुओं, ऐसे धम्म का उपदेश करो जो आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी व्यंजनों से पूर्ण और सार्थक है। ऐसे सर्वांग परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का उपदेश करो।
1: हीनं धम्मं न सेवेय पमादेन न सौवसे मिच्छा दिट्ठीन सेवेय न सिया लोकवर्धनो,
0: पाप कर्म न करे, प्रमाद से न रहे, झूठी धारणा न रखे और आवागमन को बढ़ाने वाला न बने।
1: उत्तिठे नपमज्जय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच,
0: उठे आलसी न बने और सुचरित धम्म का आचरण करे। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख पूर्वक रहता है।
1: धम्मं चरे सुचरितं नतं दुश्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच,
0: सुचरित धम्म का आचरण करे, दुश्चरित कर्म न करे। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से रहता है।
1: तस्मा हि धीरं च पञ्यं च बहुसुतं च धौरयशीलं वतवन्तमरियं

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज संध्या 7:31 पर आप सुन सकेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। संध्या 10 बजे से आपको सुनवाएंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। प्रादेशिक संगीत आपके लिए पेश किया जाएगा रात्रि 9:30 से। ये सभी कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे।

प्रातः के 6:50 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे पशुओं में संक्रमण रोगों की रोकथाम के विषय में। जानकारी देंगे विजय सिंह नौलखा। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत आप सुन सकेंगे प्रातः 7 बजे, और 7:31 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आज इस कार्यक्रम में होगी ब्रज लोक लहरी। जी हाँ, आपके ही पसंदीदा फरमाइशी लोकगीतों का ये कार्यक्रम आज प्रसारित होगा। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रसारित किया जाएगा प्रातः 8:30 पर, और सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9 बजे आप सुन सकेंगे आज के कलाकार अमित कुमार मलिक के स्वर में कुछ रचनाएं। सामयिक चर्चा होगी प्रातः 9:15 पर, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम, और कार्यक्रम बाल गोपाल का समय रहेगा प्रातः 9:30 का। आज इसमें चर्चा होगी हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी के महत्व के विषय पर। प्रातः 10 बजे आपको सुनवाएंगे परिचर्चा, इसका विषय रहेगा साहित्यकार की रचनाधर्मिता एवं राष्ट्रीय सारोकार। इस परिचर्चा में भाग लेंगे राजीव सक्सेना, डॉक्टर अंजीव कुमार रावत, और आपसे भेंटकर्ता होंगे ओपी सिंह। फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे दिन में 11 बजे से, और कार्यक्रम ब्रजलोक गीत का समय होगा दिन में 12:30 का। आज आप सुनेंगे रांझा गायन, कलाकार होंगे भगवान दास अज्ञानी। इस मास का गीत सुने

0: का दिन में 1:10 से। दिन में 1:15 पर आपको सुनवाएंगे संजीव कुमार शर्मा की लिखी हुई झलकी बबूल का पेड़, प्रस्तुति आर के पोदार की होगी। दिन में 1:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। आज के कार्यक्रम में आपके साथ होंगे ओपी सिंह और संजय सारस्वत। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर और 3 बजे हमारी पहली सभा का समापन होगा। सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी संध्या 5:30 से कार्यक्रम युवाणी के साथ, जिसमें आज के विषय आज की बात का विषय रहेगा व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। साथ ही एक और विषय पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम मातृभाषा का सम्मान और संवर्धन करें। संध्या 6:15 पर सुनेगा कार्यक्रम ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य मकरंद। आज के कवि होंगे अटल राम चतुर्वेदी। संध्या वंदन कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 6:30 पर और ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा संध्या 6:50 का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी बीजोपचार का महत्व और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। इसी कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनते हैं ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम मन भावन। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:30 पर और फरमाइशी फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम संध्या 7:31 पर सुनिएगा शाम सुहानी। रात्रि 11:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। पशुओं में संक्रमण रोगों की रोकथाम, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसे रोग जो बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ से होते हैं तथा एक बीमार पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में पहुंचते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इन रोगों का कारण बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ होता है। अन्य कारक दूषित आहार, अनुचित प्रजनन, अस्वस्थ निवास, गंदा पानी, अधिक पशुओं का एक साथ रहना इसे फैलाने में सहायक होते हैं। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशु से तुरंत अलग कर देना चाहिए। स्वस्थ पशुओं को साफ सुथरे, हवादार तथा रोशनी युक्त स्थानों पर रखें। उनका खाना पीना तथा परिचायक भी रोगी पशु से अलग रहे। रोग की आशंका होने के तुरंत बाद समीप के पशु चिकित्सालय को सूचना देकर बुलावा भेजना चाहिए तथा उनके परामर्श से बचाव कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। रोग से मरे पशु का शव खुले मैदान, नदी, तालाब इत्यादि में नहीं फेंकना चाहिए और न ही उसकी खाल उतारनी चाहिए। रोगी पशु तथा उससे संबंधित बिछावन आदि को 8 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर तथा नीचे चूने की 1 फुट की सतह बिछाकर मिट्टी में बंद कर देना चाहिए। इस गड्ढे के चारों ओर कांटेदार तार या खाई लगवा देना चाहिए ताकि स्वस्थ पशु यहाँ चरने न आ सके। पशु गृह के फर्श तथा दीवारें खूब अच्छी तरह पानी से साफ करके 3% कास्टिक सोडा या 5% कार्बोलिक एसिड घोल से धो देना चाहिए। फिर दीवारों को कार्बोलिक अम्लयुक्त चूने के घोल से पुतवा देना चाहिए। रोगी के संपर्क में आए हुए बर्तनों तथा जंजीरें इत्यादि को उबलते हुए पानी में खौलाकर जीवाणु रहित किया जाना चाहिए। बीमार पशुओं द्वारा चरे हुए चारागाह बहुधा रोग फैलाने में सहायक होते हैं, क्योंकि इस पर बीमार पशु का मल मूत्र आदि पड़ा होता है जिसमें जीवाणु निवास करते हैं। ऐसे में चारागाहों पर चूना छिड़ककर हल चलाकर 5-6 महीनों की अवधि के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गलगोंटू रोग का टीका राजकीय पशुपालन विभाग की ओर से रोग की ऋतु आने से पूर्व ही लगवाया जाता है, जिसे लगवाया जाना चाहिए। सभी नए खरीदे गए पशुओं को निजी यूथ में मिलाने से पूर्व 15 दिनों तक अलग रखकर इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि पशु किसी संक्रामक रोग से पीड़ित तो नहीं है। यदि पशु स्वस्थ पाया जाए तो ही उसे स्वस्थ पशुओं में मिलाया जाना चाहिए। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि बाजारों, मेलों और प्रदर्शनियों आदि में इकट्ठा होने से पशुओं में छूत के रोग शीघ्रता से फैल जाते हैं, अतः रोग की आशंका

0: वालों स्थानों पर मेले आदि में नहीं जाना चाहिए। बीमारी फैलने के समय स्वस्थ पशु के चारे व पानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु को ऐसा आहार न दें जिससे कब्ज हो, क्योंकि इससे रोग ग्रहण की संभावना प्रबल हो जाती है। अतः ऐसे समय में शीघ्र पाचक व पौष्टिक चारा जैसे हरे चारे, चोकर, दलिये इत्यादि तथा स्वच्छ एवं कुएं का ताजा पानी ही पिलाना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। पशुओं में संक्रमण रोगों की रोकथाम इस विषय पर जानकारी दी विजय सिंह नौलखा ने। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: वृक्ष शिखर सम्मेलनावधौ द्वैपाक्षिकोपवेशने गतवर्षस्य अगस्तमासे तियान्शिन नगरे उभयोः अन्तिमोपवेशनानन्तरं भारत चीन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु निरन्तरं प्रगतिः अभवत् इति स्वीकृतवन्तौ। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः AIIB इति भारत एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् अवसरेषु चर्चितवती इति वार्ताः।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7 बजे हैं।

प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे की। लीजिए सुने कार्यक्रम में पहला गीत चितलकर और शमशाद बेगम की आवाज में पतंगा फिल्म से। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, संगीत सी रामचंद्र का।

पतंगा फिल्म का ये गीत आपने सुना शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज़ों में। और अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में इस सोमवार 14 सितंबर 2026 दोपहर 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में इस जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। यदि आप बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं जैसे लगातार सर्दी जुकाम, साइनस, नाक की एलर्जी और नाक का बंद रहना या मांस बढ़ना, कान बहना, कम सुनाई देना या बहरापन, कान में अजीब सी आवाजें आना और चक्कर आना, टॉन्सिल और एडेनोइड की समस्या, गले में खराश या दर्द, गले में संक्रमण, आवाज बैठना और निगलने में कठिनाई, स्लीप एपनिया, खर्राटे, थायराइड की असामान्यताएं और सिर व गर्दन क्षेत्र की गांठें या ट्यूमर आदि के समाधान। और ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी 14 सितंबर 2026 और समय दिन में 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी सूचना अब समाप्त हुई। और एक बार फिर से आपका स्वागत कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। कार्यक्रम के इस गीत को हमने लिया है फिल्म श्री 420 से। आवाज है आशा भोसले मन्नाडे और साथियों की। शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का।

दो बीघा जमीन, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर मनाडे और साथियों की आवाज़ में। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था सलिल चौधरी का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म दस्तक से। शब्द रचना मजरूह की, आवाज़ और संगीत मदन मोहन का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिस्तरे की FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने विरासत और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया। प्रदेश भर में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत, निस्तारित किए गए मोटर वाहनों, पारिवारिक राजस्व सहित विभिन्न प्रकार के शमनीय मामले और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 2 दिवसीय एआई मंथन का हुआ शुभारंभ। देश भर से आए विशेषज्ञों ने एआई की उपयोगिता पर किया विमर्श। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले ही दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपना लिया गया। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: आगामी 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शासन प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस सेवाकाल को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। इसी क्रम में कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की कार्ययोजना साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर ग्राम पंचायत, नगर निकाय और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों को नए भारत का विजन दिया है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 से लेकर के उनकी जो ये यात्रा है, ये नए भारत का दर्शन पूरे भारतवासियों को कराता है। एक नया विजन उन्होंने देश को दिया, चाहे वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो, चाहे वह आत्मनिर्भर और विकसित भारत का हो। इसके लिए व्यापक कार्य योजना उन्होंने बनाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देशवासियों को दिया, वेलफेयर की वे स्कीमें दी जो कभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फ्रेजाइल 5 से दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को स्थापित करने का मॉडल प्रस्तुत किया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की वडनगर से काशी तक की यात्रा को भी अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और भव्य दिव्य कुंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी, विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में वर्ष 26-27 के लिए MISU, डायस प्लस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6,55,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार विद्यालयी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर प्रभावी नजर सुनिश्चित कर रही है। MIS और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच्चों से जुड़ी जानकारी के बेहतर उपयोग को नई मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।

0: यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 1,20,00,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत में मोटर वाहनों, पारिवारिक राजस्व समेत विभिन्न प्रकार के शवनीय मामले निस्तारित किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया ने आयोजन को उत्साहजनक बताया।
1: बहुत दिनों से लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर रहे थे हम लोग, तो उसमें बहुत ही हमें उत्साहजनक जो रिस्पांस मिला है। पेंडिंग केसेस जो लोक अदालत में जिनका निस्तारण हुआ है, जिसमें फैमिली कोर्ट, एमएसटी, कंपाउंडेबल मैटर्स, सिविल वाद और अन्य श्रेणी के वाद शामिल हैं, और प्री लिटिगेशन के जो टोटल वाद है वो 1,15,24,062 हमारे पास आए हैं कि जिनका डिस्पोजल हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 9 दिनों तक चलने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 में पुस्तकों के विमोचन के साथ लेखकों से संवाद और उनकी रचनात्मक यात्रा को समझने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स पढ़ने के लिए प्रेरित किया।
2: आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, अभी मैं आ रहा था, मैंने बच्चों को एग्जाम वॉरियर फिर वहां वितरित की। हर बच्चे को इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। केवल स्कूली छात्र के लिए ही नहीं है, हर युवा के लिए है, हर नागरिक के लिए है, क्योंकि उसको किसी न किसी अवसर पर, किसी न किसी परिस्थिति में उन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है।
0: लखनऊ को साहित्य का प्राचीन केंद्र बताते हुए श्री योगी ने प्रदेश के उन स्थानों की चर्चा की जहां कालजयी रचनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है।
2: अनेक ऐसे साहित्यकार लखनऊ ने और लखनऊ के आसपास के क्षेत्र ने दिए हैं, जिन्होंने देश को अपनी कालजयी रचना के माध्यम से आकर्षित किया है। इसी लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूर में नैमी सारण्य है। नैमी सारण्य में भारतीय ज्ञान की इस परंपरा ने चिंतन को आगे बढ़ाने का काम किया था। काशी के विश्वविद्यालय जगविख्यात रहे हैं। प्रयागराज की धरती, वहां के कुंभ की परंपरा, ये केवल एक आयोजन महोत्सव नहीं है, भारत की ज्ञान परंपरा की चिंतन की वह स्थली रही है, जहां पर देश भर से ऋषि मुनि जुड़ते थे। इसी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ में श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा का वाचन भी होता है।
0: इस 9 दिवसीय पुस्तक महोत्सव में पुस्तक प्रदर्शनी के साथ साहित्यिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल गतिविधियां, कार्यशालाएं और तकनीक से जुड़े आयोजन किए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल जन भवन उत्तर प्रदेश और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय AI मंथन 2.0 का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर स्थित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में हुआ। कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न आयामों, शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य, कृषि, शासन, रोजगार और तकनीकी विकास में इसकी संभावनाओं सहित विश्वविद्यालय प्रशासन में AI की उपयोगिता पर देश भर से आए विशेषज्ञों व शिक्षाविदों द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा और अयोध्या बाराबंकी व तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने तहसील रामनगर में सरयू नदी के कटान से प्रभावित ग्राम हितमापुर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने विरासत और विकास को एक साथ आगे

0: के पढ़ाया। प्रदेश भर में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत, निस्तारित किए गए मोटर वाहनों, पारिवारिक राजस्व सहित विभिन्न प्रकार के शमनीय मामले और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में दो दिवसीय एआई मंथन का हुआ शुभारंभ। देश भर से आए विशेषज्ञों ने एआई की उपयोगिता पर किया विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 330.2
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैयाओं, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिले हैं कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में। लेकिन बात यही है कि कार्यक्रम के बीच में जो दूरी है जाए है कुछ दिन की, तो लगे कि बहुत दिन है गए। और आज रविवार को तो है हुए हैं आपके मनपसंद के लोकगीतन कार्यक्रम, चाहे आप कहो हो हम कहे हैं ब्रज लोक लहरी। तो आज ब्रज लोक लहरी प्रारंभ है वे तेई पहले बहुत सारे संदेशन की झड़ी लग गई है आपको। नंबर तो पतो ही है हमारा, व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता दें उन श्रोतान को जिनको जे नंबर बिसर गए हो है, चाहे जो हमारे श्रोता नए जुड़े हैं अपने हमारे जा कार्यक्रम से, तो वे नंबर अवश्य नोट कर लें हमारे व्हाट्सएप संदेश के दाई 94-122-25-575। आप और जुड़ सको हमारे जा कार्यक्रम ते अपने पसंद के माध्यम ते अपने जो लोग गीतन को सुनवे को मन कर रहे हो तो वह को नाम लिख के भेजो तो आपको सुनवावेंगे जरूर। अब पढ़ देवे उनके नाम जिनकी झड़ी बहुत पहले से लग गई है। तो भैया सबसे पहले आज को जो संदेश प्राप्त भयो जा कार्यक्रम में वह को भेजे वारे हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश ते तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। इनके बाद संदेशों प्राप्त हो जे और जे हैं हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान ते। और जे संदेशो आयो चकला बाजार सामाना शहर पंजाब ते, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, हंसमुख लाल खुशदिल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, संजीव

मार्जिन दल और समस्त खुशदिल परिवार जी हमारे श्रोता हैं जी हैं कलेक्ट्रेट कॉलोनी रायसेन मध्य प्रदेश से योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, प्रेम बाई भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललिता बाई भारतीय, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल से डॉक्टर शिखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता शामनानी, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, भगवान सिंह नायर, ग्राम कजलास पोस्ट टिगरिया ते जे हैं श्रोता, तहसील डोलरिया जिला नर्मदापुरम, गोरेलाल निमोदा, मिश्री बाई और लक्ष्मी निमोदा जुड़े हुए हैं हमारे जय कार्यक्रम ते। और जी हमारे श्रोता हैं राजदीप राजेश, राजेश साबले पाटिल, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर ते। और जिनके बाद जुड़ गए हैं हमारे जय कार्यक्रम ते बिरला नगर ग्वालियर ते प्रदीप भैया और इनके संगी साथी जी हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ ते दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवारीजन। और जी श्रोता जुड़ गए हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के और इनके सबरे संगी साथी। तो आओ सुनवावे हैं आप सबकी पसंद पे जा लोकगीत को और जा लोकगीत स्वर दिनों है डोरी लाल गोला ने।

लड़ गई लड़ गई रे शाम ते अखियाँ लड़ गई। अब भाई आपने सुनो जा लोकगीत को डोरी लाल गोला के स्वर में, और अब मिले हैं नेक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद।

एक बार फिर से स्वागत आप सबन को अपने कार्यक्रम ब्रज माधुरी में। और आज ब्रज माधुरी में आप सब सुन रहे हो अपने पसंद के लोकगीतन को ब्रज लोक लहरी के अंतर्गत। और संदेश शामिल करवे को समय है, तो जिस संदेश को प्राप्त भयो है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषारदेव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और इनको पोता मास्टर अलकबीर को। जिस संदेश आयो है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ ते। और जे श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू, इनके संग हमारे जे श्रोता जुड़ गए हैं। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश ते राजेश राज वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ ते मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार को जे संदेश हमने पढ़ो। और जे हैं पलारी छत्तीसगढ़ ते नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन और इनके सगरे संगी साथी। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ ते संदेश प्राप्त भयो हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा को। और सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, सौभाग्यवती जगुताई राजे जाधव देशमुख, संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख को जे संदेश प्राप्त भयो कालेगांव जाफराबाद से। जी हमारे श्रोता जुड़े हैं हम संग पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ ते दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, इनके संग ही संग एक और जो संदेश ले हुए हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ते रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और इनके परिवारी जन को। और जे श्रोता है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ते महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी को। और हमारे जाई कार्यक्रम में संदेश प्राप्त भयो शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप को पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। और जे संदेश प्राप्त भयो पटेल नगर मलोट ने डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू को। जे हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, चंडीगढ़ सिटी से। और अब सुनवावे आप सबके पसंद के लोकगीत को जय स्वर दीनो है ओम प्रकाश डांगुर ने।

गीते भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा को। जो श्रोता हैं ग्राम फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके संगी साथी। जो श्रोता हैं बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, काजल, करण, अनुष्का, मोहिनी, गोलू, नीरज, भारती, आरती, शीला, भगवती, रामकली, अनुष्का, यशोदा, काजल, बाबू और समस्त बुंदेलखंड निवासी छतरपुर से जे संदेश आयो है और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से भेजे वारे संदेश को हमारे श्रोता है नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से और उनके परिवारीजन। सादाबाद से जे संदेश है भूपेंद्र प्रजापति, निशा, संजू, गुंजन, आयुष, राशि, प्रिया और इनके पापा मम्मी को जो संदेश प्राप्त भयो। और जे हैं पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ते बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश, प्रमिला बंछोर और ये हमारे श्रोता हैं उमा शर्मा, नितिन, सचिन, राधिका, निधि, धौली, प्याऊ, मथुरा ते। हमारे जो श्रोता हैं उंदी ते जनार्दन सिंह सिसोदिया, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, टीकम सिंह सिसोदिया और बंशीवारे बाबा, ये श्रोता जुड़ गए हैं जसवंत नगर जिला इटावा ते, गोकर्ण सिंह, दिव्या, नैतिक, संगीता और सभी इनके परिवारीजन। और जे हमारे श्रोता जुड़ गए हैं डोंगरगांव राज नांदगांव छत्तीसगढ़ ते, राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबी और संगी साथी। ये श्रोता हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, सुप्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी, तृप्ति, नांदेड़, एताला, महाराष्ट्र से। और इनके बाद पर्दे में हमारे इन श्रोतान को संदेश। और जे हमारे श्रोता हैं हिप्पड़ सोगा, औसा जिला लातूर ते, उस्मान शेख फौजी, सायरा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख को। ये हैं वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और इनके संगी साथी। तो आप सबको सुनवावे हैं कार्यक्रम के जय अगले लोकगीत को।

ओम प्रकाश डांगुर के सुर में अभी आपने सुनो जा लोकगीत को, और अब पढ़ें दोबारा से आप सबके संदेशन को। और जे संदेश प्राप्त भयो है गांव जाखो ते शंभु दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, योगेश कुमार, दीपेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक को। और जे हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के

सरस कौल और रमेश रावत के सुर में अभी आपने सुनो जालोगी तो अरजाई के ताई संदेश भेजे हो तो ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ते रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने जय के संग अब कार्यक्रम को समय पूर्ण है चलो है तो हमें देव आज्ञा स्वीकारो हमारी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण। कृपया कुछ पल
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
2: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
4: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल

0: सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद डीआरडीओ का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
0: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद

0: 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ते के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. BRICS leaders condemn 2025 Pehelgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism, also express concern over escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purva Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today.

आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम के आवाज़ में आपने सुना फुटपाथ फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में आपने सुना 100 डेज फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था रविंद्र रवेल ने और संगीत था राम लक्ष्मण का। आइए सुनते हैं गीतांजलि कार्यक्रम का ये अगला गीत।

इस गीत को हमने लिया है फिल्म यू मी और हम से। गीत को आवाज दी है अदनान सामी, श्रेया घोषाल और साथियों ने। शब्द रचना मुन्ना धीमान की, संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: किधर है?
1: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: RBI कहता है,
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में इस सोमवार यानी 14 सितंबर 2026 को दिन में 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, बदलते मौसम में नाक, कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94122-25575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में नाक, कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक, कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। श्रोताओं, यदि आप बदलते मौसम में नाक, कान और गला संबंधी समस्याएं जैसे लगातार सर्दी जुकाम, साइनस, नाक की एलर्जी और नाक का बंद रहना या मांस बढ़ना, कान बहना, कम सुनाई देना या बहरापन, कान में अजीब आवाजें आना और चक्कर आना, टॉन्सिल और एडेनोइड की समस्या, गले में खराश या दर्द, गले में संक्रमण, आवाज बैठना और निगलने में कठिनाई होना, स्लीप एपनिया, खर्राटे, थायराइड की असामान्यताएं और सिर दर्द व गर्दन दर्द की गांठें या ट्यूमर आदि से संबंधित समस्याएं रखते हैं, तो समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 14 सितंबर 2026 और समय दिन में 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी यह सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

रोग फिल्म का ये गीत आपने सुना एमएम करीम की आवाज़ में। गीत को लिखा था नीलेश मिश्रा ने, संगीत एमएम करीम का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

लाइफ इन अ मेट्रो, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोहम की आवाज़ में। और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कार्यक्रम सुगम संगीत में आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार मलिक के गाए हुए कुछ भजन। आइए सुनते हैं ये पहली भक्ति रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अमित कुमार मलिक के गाए हुए कुछ भक्ति रचनाओं को। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में ये अगली रचना।

सूरदास जी की इस रचना को स्वर दिया अमित कुमार मलिक ने, और इसी भजन के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज शाम 7:31 से आपको सुनवाएंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम श्रीलंका के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल, मैच की समाप्ति तक।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनेंगे वाराणसी से शुरू हुए 9वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत प्रदेश में होने वाली गतिविधियों और जागरूकता के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
1: विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश का हर नागरिक स्वस्थ और सक्षम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में पोषण को महत्वपूर्ण आधार माना है। देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की शुरुआत 9 सितंबर को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की। ये अभियान 8 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच, आयरन और जरूरी पोषक तत्वों के सेवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा का मजबूत आधार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम

0: मेरी आंगनवाड़ी मेरी जिम्मेदारी रखी गई है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम पंचायत और गांव के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी।
1: आत्मनिर्भर विकसित भारत दिल्ली में बनाने से नहीं, गांव और गलियों से होकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला यहां से प्रारंभ होती है। आंगनवाड़ी केंद्र और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इसके प्रारंभिक केंद्र बनेंगे और ये से शुरुआत हुई है एक समर्थ और शिक्षित भारत के लिए, स्वस्थ और सशक्त भारत के लिए, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र। और उसकी थीम इसीलिए इस वर्ष रखी गई है कि मेरी आंगनवाड़ी मेरी जिम्मेदारी।
0: वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पोषण माह अभियान कुपोषण से मुक्ति के साथ स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी। आज पोषण का ये संकल्प जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है।
2: राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में एक ऐसे राष्ट्रीय संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं जो हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की समृद्धि से जुड़ा है। यह संकल्प है सुपोषित और सशक्त भारत का।
0: कार्यक्रम में शामिल रही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पोषण अभियान के अंतर्गत देश भर में 150 करोड़ से अधिक जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पोषण सिर्फ भोजन नहीं है बल्कि जीवन का सार है। इस सोच के साथ पिछले 8 वर्षों में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित पोषण अभियान के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई है। इस आम जन के बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। यह जन भागीदारी पोषण अभियान के सबसे बड़ी ताकत है।
0: पोषण माह में 5 प्रमुख विषयों आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा एवं हॉट कुक्ड मील, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, बाल शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए विशेष गतिविधियां पूरे देश में आयोजित की जा रही हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इस बार यहीं से इस अभियान की शुरुआत भी हुई है। यहां राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि विस्तृत कैलेंडर जारी कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया गया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वह पोषण माह के लिए जारी कैलेंडर का पूर्णतः पालन करें।
0: वाराणसी के बाद बात कानपुर देहात की, जहां राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो चुकी है और यहां आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, स्वच्छता, संतुलित आहार और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री शैलेश दीक्षित ने बताया कि गांव-गांव में पंजीकरण किया जा रहा है, साथ ही जागरूकता गतिविधियों के जरिए परिवारों को स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करने को कहा जा रहा है।
5: मैं आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण भी करती हूँ, महिलाओं को जागरूक भी करती हूँ और घर घर जा करके महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी देती हूँ।
0: बुंदेलखंड में कुपोषण कभी बड़ी समस्या थी, लेकिन अब यहाँ भी पोषण माह जैसे अभियान और सरकारी योजनाओं ने तस्वीर बदली है। बुंदेलखंड के हमीरपुर में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां केवल विभागीय कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे बच्चों के गर्भावस्था से लेकर शुरुआती बचपन तक पोषण, स्वास्थ्य और समुचित विकास की पहली प्रहरी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहां राष्ट्रीय पोषण माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया की तय की गई 5 थीमों पर साप्ताहिक रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा।
6: 5 थीमें तय की गई हैं जो साप्ताहिक रूप से उनका क्रियान्वयन कराया जाएगा। जैसे आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन के बारे में जानकारी दी जाएगी, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा पका भोजन बच्चों को मिले इसकी व्यवस्था

0: पहले से ही चल रही है। सामुदायिक स्वामित्व में जवाबदेही तय की जाएगी और उसके बारे में जागरूकता प्रसारित की जाएगी और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत इस पूरे माह में विशेष अभियान चला करके सभी पात्र लाभार्थियों का इसमें हम लाभान्वित कराने का प्रयास करेंगे।
1: आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल बलरामपुर में भी पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान कई विभागों के सहयोग से चलाया जा रहा है। जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री नीलम ने बताया कि गांव-गांव तक पोषण का संदेश पहुंचाया जाएगा जिससे कि पोषण के प्रति जागरूकता बढ़े।
2: हम लोग गर्भवतियों और धात्री माताओं का बैठक करवाते, उनके घर पे जाते, उनको समझाया जाता है, घर पे जाते भी समझाया जाता है और हम लोग एक माता बैठक करते हैं उसमें भी हम लोग समझाते हैं कि आप लोगों को कैसा खान पान करना चाहिए और टीका कैसे लगवाना चाहिए, कितना टीका लगवाना चाहिए, पोषण में क्या क्या लेना चाहिए, दवाई क्या क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, हर चीज़ों के बारे में हम लोग उनको माता बैठक में भी समझाते हैं। बाकी हम लोग रैलियाँ भी निकालते हैं।
1: पोषण माह के दौरान पोषण वाटिका को भी बढ़ावा दिया जाता है। घर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल और सामुदायिक स्थानों पर हरी सब्जियां, फल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसी प्रयास को अमरोहा में भी पोषण माह के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थों व मोटे अनाजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, साथ ही स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और महाविद्यालयों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित होंगे।
3: कुछ कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित होंगे, कुछ ब्लॉक स्तर पर आयोजित होंगे और ज्यादातर सारे कार्यक्रम ग्राम स्तर पर हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित होंगे। केंद्र के जो है 5 मुख्य थीम रखी गई है, आहार विविधता पर्याप्त प्रोटीन पहला है, दूसरा जो है बाल विकास हेतु पोषण और एवं प्रारंभिक उद्दीपन, तीसरा है आंगनवाड़ी केंद्रों पर पका हुआ भोजन, चौथा है सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही और पांचवा है हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये 5 विषयों पर फोकस करके हर एक दिन का कार्यक्रम पेश किया गया है साप्ताहिक।
1: पोषण माह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया जैसी समस्याओं की समय पर पहचान करना और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। शाहजहांपुर में भी राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में कुपोषण दूर करने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कुपोषण की स्थिति पर निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से बच्चों और महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आंकड़ों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है।
4: पोषण माह के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की जांच के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं जिसमें मैंने अपने बच्चे की भी जांच कराई है जो पहले कुपोषित था, बाद में पोषण सामग्री मिलने के बाद अब सही है।
1: नौवा पोषण माह केवल एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ भोजन, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाने का व्यापक प्रयास है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि हर परिवार तक पोषण का संदेश पहुंचे, हर बच्चे को पर्याप्त पोषण मिले और मिलकर एक स्वस्थ, सक्षम और कुपोषण मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।
5: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे वाराणसी से शुरू हुए 9वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत प्रदेश में होने वाली गतिविधियों और जागरूकता के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
6: सामयिक चर्चा अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।
7: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, क्या है जलवायु परिवर्तन। आइए सुने इस कार्यक्रम में आलेख और वाचन नीलिमा शर्मा का है।

इसी स्थान की औसत मौसमी दशाएं जलवायु कहलाती हैं। ये मौसमी दशाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे प्रकाश, ताप, दाब, वर्षा एवं आर्द्रता आदि। इन मौसमी दशाओं में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन पर्यावरण के तापमान, हवा के विन्यास व दाब में समय के साथ प्रभावी बदलाव से है। इसमें से कुछ बदलाव चक्रीय रूप में आते हैं, जैसे दशकों में, शताब्दियों में तथा हजारों वर्षों में, लेकिन कुछ परिवर्तन अनायास ही होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप बारिश

ओले या बर्फ का गिरना, कड़कड़ाती बिजलियों के तूफान, चक्रवात तथा समुद्री तूफान आदि होते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से संतुलित जलवायु में कई परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे कई दुष्परिणाम परिलक्षित होते हैं। तीव्र औद्योगिकरण, वनों का ह्रास एवं बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तित हो रही है। ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगी है। जलवायु परिवर्तन से सभी पर्यावरणीय घटकों के साथ समुद्र, बर्फ, झील, नदियां आदि प्रभावित होते हैं। इन पर्यावरणीय घटकों के परिवर्तन से पृथ्वी के जीव जंतु एवं वनस्पति भी प्रभावित होते हैं। जिस गति से मानव अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है और उसका दोहन कर रहा है, उसी गति से प्रकृति में अनेक ऐसे परिवर्तन होते जा रहे हैं जिसके दुष्परिणाम मनुष्य को भुगतने पड़ रहे हैं। विश्व में बिगड़ते हुए पर्यावरण संतुलन एवं प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में जो निरंतर वृद्धि हो रही है वह ग्लोबल वार्मिंग है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण पृथ्वी के नीचे की सतह पर एकत्रित हो जाती है। इसकी मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली किरणें एवं पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाला ताप वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाता है। इस कारण विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। वैसे भी पृथ्वी के तापमान में पहले से ही इतनी वृद्धि हो चुकी है कि यदि विकास एवं औद्योगिकीकरण की गति इसी दर से बढ़ती रही तो शताब्दी के अंत तक तापमान में 1.5 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार ताप बढ़ने से वायु गर्म हो जाएगी, जिससे ऋतु चक्र में परिवर्तन होगा, जिससे कहीं वर्षा कम, कहीं अधिक, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ एवं चक्रवात की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से कृषि पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ जाने के कारण फसल चक्र प्रभावित होगा। पादप रोग एवं हानिकारक कीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर तो बढ़ेगी, जिससे पादपों की वृद्धि दर तीव्र होगी, किंतु तापमान बढ़ जाने से इस क्रिया का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। जलवायु में परिवर्तन, जो कि मुख्य रूप में यदि देखें तो जनसंख्या में वृद्धि की वजह से हो रहा है, इस जलवायु परिवर्तन के कारण जीवों पर भी संकट आ गया है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने से ध्रुवों की बर्फ तथा हिमालय जैसे क्षेत्रों के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और समुद्रीय तटों पर रहने वाली जनसंख्या पूर्णतया प्रभावित होगी। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तथा कई तटीय नगर जलमग्न हो जाएंगे। पृथ्वी पर वनों की जो निरंतर कटाई हो रही है, उसकी वजह से पेड़ समाप्त होते जा रहे हैं। पेड़ों की कमी से वायुमंडल में प्रदूषित गैसों की मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी की ऊष्मा बाहर उत्सर्जित नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तित होती जा रही है। इससे ओजोन परत को भी क्षति पहुँच रही है। पृथ्वी तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन मंडल की सघनता रहती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं, लेकिन वाहनों के धुएं, चिमनियों से निकलने वाली गैसें आदि, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड व क्लोरीन होते हैं, वे ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित व सही रूप में बनाए रखने के लिए मुख्यतः प्रदूषण व जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे ताप में अधिक वृद्धि न हो और जलवायु में परिवर्तन कम से कम हो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, क्या है जलवायु परिवर्तन। आलेख और वाचन था नीलिमा शर्मा का। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बच्चों का प्रिय कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को पेश कर रही हैं निधि मित्तल।

0: बच्चों जय हिंद। बच्चों हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही एक प्रमुख त्यौहार है गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान, विवेक और शुभ का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं। गणेश चौथ का पर्व भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घरों में और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और मोदक अर्पित किए जाते हैं। बच्चे भी इस उत्सव में बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। लेकिन बच्चों, गणेश चतुर्थी केवल पूजा और उत्सव का ही पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई शिक्षाएं भी छिपी हैं। भगवान गणेश का सिर बड़ा होता है तो वह हमें सोचने की प्रेरणा देता है। उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनकी छोटी आंखें हमें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की सीख देती हैं। उनका वाहन चूहा होता है ना बच्चों, तो उनका वाहन हमें संदेश देता है कि हमें अपनी इच्छाओं और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। बच्चों को उनके जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि केवल पढ़ाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच के अंतर को भी समझना चाहिए। तो अब एक गीत हो जाए।
1: वक्रतुंड महाकाय

अभी आपने किस सुना? अब बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, आप स्कूल में पढ़ते हो ना, है ना? तो वहां पर आपको कुछ काम तो कक्षा में करवा लेते हैं और कुछ काम होमवर्क में दे देते हैं, कहते हैं बच्चों ये घर से करके लाना। तो कुछ बच्चे तो पता है क्या करते हैं, अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनमें कुछ बुरी आदतें होती हैं तो वे अपना काम नहीं कर पाते। जैसे वो घर में टीवी देखते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, उनसे चिपके रहते हैं, तो उन्हें अपना होमवर्क करने का ध्यान ही नहीं रहता, तो हमेशा खेलते रहते हैं। इसलिए माँ बाप ऐसे बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें दूसरी गतिविधियों में उलझने का मौका दें। बच्चे से हमेशा यह नहीं पूछना चाहिए कि उसे होमवर्क में क्या मिला है, जहाँ तक हो सके उसे खुद ही होमवर्क करने दें। बार बार कहने से पता है क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे विद्रोही बन जाता है, ढीठ बन जाता है। इसलिए बच्चों को ना ही ज्यादा उपदेश दें और ना ही धमकाएं। बच्चे को जबरदस्ती से कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता और ना ही सिखाया जा सकता है, ये तो उसका अपना मन होता है। इसलिए बच्चे को बार बार डांटना नहीं चाहिए। पढ़ाई के लिए बच्चे को समय समय पर प्रोत्साहित करना चाहिए। जिन दिनों स्कूल चल रहा हो उन दिनों में उस कमरे से, जिस कमरे में बच्चा पढ़ता है ना, तो उस कमरे से टीवी, वीडियो गेम जैसी चीजें बिल्कुल हटा देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का ध्यान उस पर ना जाए। बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित करनी चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि आपके बच्चे के जीवन में कोई तनाव है या कोई बच्चा टेंशन में है, तनावग्रस्त है, पढ़ नहीं पा रहा, तो उसको डॉक्टर के पास अवश्य ले जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ना हिंदी दिवस मनाने के लिए, है ना? और हिंदी हमारी प्यारी और सरल भाषा है, जिसे हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बोलते हैं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी पहचान और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है। हमें हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने पर गर्व होना चाहिए। बच्चों, हम जब अपने घर में परिवार और दोस्तों के साथ हिंदी में बातचीत करते हैं तो

अच्छा लगता है ना, क्योंकि हिंदी के माध्यम से हम अपनी मन की बातें और अपनी भावनाएं और अपने विचार जो होते हैं वो एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और हिंदी केवल बोलने की भाषा ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, साहित्य और परंपराओं से जुड़ी हुई है। हिंदी में बहुत सुंदर कविताएं, कहानियां, गीत और किताबें भी लिखी गई हैं। कबीर, तुलसीदास, अनेक महान साहित्यकारों ने हिंदी को समृद्ध बनाया है। बच्चों, हिंदी बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें हिंदी को सही तरीके से बोलना, पढ़ना, लिखना और सीखना चाहिए। साथ ही हमें दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, क्योंकि हर भाषा का अपना अलग महत्व होता है। हिंदी हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। इसलिए बच्चों, हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि हम हिंदी का सम्मान करेंगे, उसे सीखेंगे और दूसरों को भी हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। और बच्चों, अब अंत में, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी से हम जुड़े रहें, हिंदी का हमेशा सम्मान करें। तो बच्चों, अब एक गीत हो जाए।

अभी आपने ये गीत सुना और अब हम आपको एक बाल नाटक सुनवाते हैं, राजा राम मोहन राय।

0: आज से 200 साल पहले सारा देश कुसंस्कारों और कुरीतियों का अखाड़ा बना हुआ था। अत्याचारों से गरीबों और अनाचारों से महिलाओं का दम घुट रहा था। सती दाह की अग्नि धू धू करके मनुष्यों का उपहास कर रही थी। उस प्रगाढ़ अंधकार में राममोहन राय का जन्म 1774 में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। बचपन से ही राममोहन को फारसी पढ़ाने के लिए घर पर एक मौलवी नियुक्त कर दिया गया था। एक बार की बात है,
1: अरे राममोहन, आजकल तुम कहाँ रहते हो? बाहर खेले ही नहीं आते।
2: क्या करूं मित्र, आजकल एक मौलवी मुझे फारसी पढ़ाने के लिए घर पर आते हैं।
1: मगर राममोहन, तुम्हें फारसी पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तुम तो हिंदू हो, तुम्हें तो संस्कृत पढ़नी चाहिए।
2: संस्कृत भी पढ़ूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो मेरे पिता नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ ऊंचे पद पर हैं और वो चाहते हैं कि फारसी और अरबी पढ़कर मेरा भविष्य उज्जवल बने।
1: ये तो अच्छी बात है,
2: लेकिन मैं अपने अध्ययन का उपयोग अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में करूँगा।
1: अच्छा, लेकिन वो कैसे?
2: मैं हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ूंगा ताकि ये पता चल सके कि उनमें क्या कहा गया है।
1: लेकिन उससे लोगों को क्या अंतर पड़ेगा?
2: अंतर अवश्य पड़ेगा। हमारे समाज में गलत रीति रिवाज इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि धर्म ग्रंथ लोगों की समझ में ही नहीं आते। मौलवी और पंडित जैसा बताते हैं उसी का वो आँख मूंद कर पालन करते हैं।
1: तो तुम क्या करोगे?
2: मैं इन धर्म ग्रंथों को लोगों तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे लोग तर्क के आधार पर स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि धर्म के नाम पर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहां तक सही है।
0: राममोहन राय ने लगभग 16 वर्ष की अवस्था में ही धर्म ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि वास्तविक जीवन में धर्म के नाम पर हम कई गलत काम करते हैं। बस फिर क्या था, राममोहन राय ने भी धर्म के नाम पर की जाने वाली ऐसी हर बात का विरोध करना शुरू कर दिया जिसका धर्म ग्रंथों में कहीं उल्लेख न था। इस तरह की बातों को लेकर पिता पुत्र में अक्सर झगड़ा होने लगा, यहां तक कि एक बार तो राममोहन को अपना घर छोड़ना पड़ा।
3: राम राम राम राम।
4: अजी, मैंने कहा ये तुलसी की बनी माला अभी कितनी देर और जपनी है?
3: राम राम राम राम। क्यों, क्या हुआ?
4: हमारे बेटे राम मोहन की वजह से तो गली मोहल्ले के लोगों ने हमारा जीना दूभर कर दिया है।
3: राम राम राम राम। तो क्या राम मोहन की शिकायत तुम्हें भी सुननी पड़ी?
4: पहले तो मैं समझती थी कि लोग अनाप शनाप कहते हैं, मगर अब तो वो मेरे पूजा पाठ करने पर भी ऐसे ऐसे सवाल करता है कि बस पूछो मत।
3: वो हमारे पूजा पाठ के तरीके से सहमत नहीं तो ना सही, हम तो वैसे ही करते रहेंगे।

0: जैसे हमारे बाप दादा करते आए हैं।
1: पिताजी, बात मेरे सहमत या असहमत होने की नहीं, बात केवल इतनी है कि किसी ने तर्क देकर मुझे संतुष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों किया जाता है।
0: बेटे, इस छोटी सी बात को लेकर समाज में हमारी भद्द क्यों उड़वाते हो?
1: ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग तर्क नहीं करते, इसलिए वो अंधविश्वास के गर्त में गिर जाते हैं। आदत और रीति रिवाज के कारण लोग विश्वास करने लगते हैं कि नदी में नहाने और वृक्ष की पूजा करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं।
2: बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम धार्मिक बातें करने लगे?
1: नहीं माँ, मैंने धर्म ग्रंथों को पढ़कर ही हिंदुओं की मूर्ति पूजा प्रथा पर शंका प्रकट की है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी जान लिया है कि आचार्य और धर्म उपदेशक अपने अपने स्वार्थों के लिए अंधविश्वास को बनाए रखना चाहते हैं।
2: समझ में नहीं आता, तुम हाथ धोकर हमारे धर्म के पीछे क्यों पड़ गए हो?
1: ऐसा नहीं है माँ, मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अंधविश्वास और धर्मांधता का ही विरोध कर रहा हूँ।
0: आखिर तुम चाहते क्या हो राम मोहन?
1: मेरा केवल इतना कहना है कि हमें शास्त्रों के आदेशों और उपदेशों को तर्क की कसौटी पर रखकर स्वीकार करना चाहिए।
0: लेकिन तुम्हारी इन बातों की वजह से मोहल्ले के लोग हमारी हंसी उड़ाने लगे हैं, घर में कलह होने लगी है। ऐसा कब तक चलेगा राम मोहन?
1: तो आप रहिए सुखचैन से, इन परिस्थितियों में मेरा इस घर में रहना संभव है ही नहीं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्रणाम।
3: घर से निकलने के बाद भिन्न भिन्न प्रदेशों का भ्रमण करके राम मोहन ने अनेक भाषाएं सीखी और अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। राम मोहन ने अरबी और फारसी का अध्ययन पटना में किया। पटना उस समय अरबी और फारसी की शिक्षा और इस्लामी संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था। बाद में वाराणसी में रहकर राम मोहन ने संस्कृत का अध्ययन किया। राम मोहन राय विद्वान तो थे ही, एक सुधारक भी थे। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस समय ये धार्मिक प्रश्नों पर मुक्त विचार का केंद्र और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन के लिए एक मंच था। इसके अलावा उन्होंने वेद विद्यालय, हिंदू कॉलेज की नींव डाली। यही हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया। एक बार की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर द्वितीय अपनी पेंशन की वृद्धि करवाना चाहते थे। इसके लिए ब्रिटिश राजा को आवेदन करना था। अपने इस कार्य के लिए उन्हें एक शाही दूत नियुक्त करना था। इस दूत को ही इंग्लैंड के दरबार में दिल्ली के सम्राट अकबर द्वितीय का आवेदन पेश करना था। इस कार्य के लिए उन्होंने राम मोहन को अपना शाही दूत नियुक्त किया और दूत के पद की गरिमा बढ़ाने के उद्देश्य से सम्राट द्वारा राम मोहन को राजा की उपाधि प्रदान की गई। तभी से उन्हें राजा राम मोहन के रूप में जाना गया। हमारी परंपरा में जो कुछ महत्वपूर्ण था उसका वे आदर तो करते थे, पर उसके दास कभी नहीं बने। वेदांत और उपनिषदों का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का सारत्व अधिक से अधिक लोगों के सामने रख दिया। राम मोहन राय के समय में सती प्रथा का प्रचलन था, अर्थात पति के मरने पर उसकी विधवा को उसकी चिता के पास बैठकर भस्म होना पड़ता था। एक दिन राम मोहन राय ने इसी अत्याचार का हृदय विदारक दृश्य देखा। जब उसके भाई जगमोहन राय की मृत्यु होने पर उनकी भाभी को जिंदा जलाया गया, इस दृश्य को देखकर राम मोहन राय का हृदय कांप उठा।
1: माँ, माँ, मेरे भैया की चिता के साथ भाभी को जीवित जलाना, ये अत्याचार तुम कैसे सहन कर सकती हो?
2: दुख तो हमें भी हो रहा है बेटा, लेकिन क्या करें, हमारी प्रथा ही ऐसी है। पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है।
1: नहीं माँ, ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। इस अत्याचार को मत होने दो माँ। माँ देखो तो सही, अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले लोग भाभी को कैसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये तो सरासर हत्या है, हत्या। इसे रोको माँ, इसे रोको माँ।

राम मोहन के विरोध करने के बावजूद उनकी भाभी को जला दिया गया। इस घटना पर राम मोहन इतने दुखी हुए कि उसी समय उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कराने की प्रतिज्ञा कर ली। बाद में सती प्रथा विरोधी कानून को लागू करवाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को याचिका दी और इंग्लैंड की यात्रा की। बाद में उनके प्रयासों से सरकार ने इस प्रथा पर अंकुश लगा दिया और 1817 में सती प्रथा विरोधी कानून को लागू करने के आदेश जारी कर दिए।

0: राजा राममोहन राय समस्त विश्व के इतिहास में न सही, कम से कम भारत के इतिहास में अवश्य अद्वितीय व्यक्ति हैं।
1: अभी आपने ये बाल नाटक सुना, राजा राममोहन राय। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई से ज्यादा खेलना अच्छा लगता है। आप में से भी तो कोई कोई बच्चा ऐसा होगा ना कि पढ़ाई से ज्यादा खेलना अच्छा लगता है। खेलना कोई बुरी बात नहीं है। तो बच्चों ऐसे ही पता है क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची थी चीनू, वो कहती थी मुझे पढ़ाई से ज्यादा खेलना अच्छा लगता है, मैं नहीं पढ़ती। तो एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने बताया कि अगले हफ्ते कहानी सुनाने की प्रतियोगिता होने वाली है। अब चीनू को बहुत डर लगा क्योंकि उसने कभी मंच पर नहीं बोला था। बच्चों आपको भी तो लगता है ना डर, जब आप पहली बार मंच पर डांस करते हो या बोलते हो, है ना। तो घर आकर ऐसे ही चीनू को लगा। तो घर आकर चीनू ने मम्मी को बताया, मम्मी ने मुस्करा दिया और मम्मी ने मुस्करा कर कहा कि डरने से कुछ नहीं होगा क्योंकि कोशिश करने से ही जीत मिलती है। चीनू ने क्या करा, अब वह रोज आईने के सामने खड़ी होती और कहानी का अभ्यास करती। कभी वह शब्द भूल जाती, कभी उसकी आवाज धीमी हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब समय आ ही गया प्रतियोगिता का। उस दिन तो हाथ कांप रहे थे उसके, जोर जोर से दिल धड़क रहा था, लेकिन जब चीनू का नाम पुकारा गया तो उसने गहरी सांस ली और मंच पर चली गई। जैसे जैसे वह बोलती गई उसका डर खत्म होता गया, कम होता गया। अब जब कहानी खत्म हुई उसकी, जो वो बोल रही थी, तो सबने तालियां बजाई खूब। उसे प्रथम पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उसे जो भी मिला उसमें सबसे बड़ा उसका हाथ था और वह था आत्मविश्वास। तो बच्चों हमने इस कहानी से क्या सीखा कि डर से भागने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। बच्चों अगर कभी आप किसी काम से डरते हो तो समझ लो वही काम आपको आगे बढ़ाएगा, बस हिम्मत से आगे आप बढ़ते जाइए। और अब बच्चों हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आप पता नोट करिए, बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन नंबर है 281003। बच्चों जय हिंद।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल, प्रस्तुति निधि मित्तल की थी।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है।

0: एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, RBI कहता है
0: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हुए हैं। प्रस्तुत है परिचर्चा, साहित्यकार की रचना धर्मिता और राष्ट्रीय सरोकार। इस विषय पर इस परिचर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं राजीव सक्सेना, डॉक्टर अंजीव कुमार रावत, और आपसे भेंट करता है OP सिंह। आइए सुने ये साहित्यिक परिचर्चा।
3: श्रोताओं, साहित्य हर कालखंड में जब भी लिखा जाता है, हमारे अपने बीच की ही रचना होता है, हमारे अपने बीच की ही कालखंड की परिस्थितियां उसमें होती हैं। साहित्यकार जो रचना हमारे लिए लेकर के आता है, उसको पहले वो जीता है और अपने अनुभव से उसमें कुछ निचोड़ हमारे सामने अपनी कृति के माध्यम से लेकर के आता है। इसीलिए साहित्य को हमेशा समाज का दर्पण भी कहा गया है, समाज उससे प्रेरणा लेता रहा है। बहुत सारी ऐसी कालजयी रचनाएं हमारे और आपके समाज में हैं, जिन्होंने जब समाज को कहीं भी दिशा नहीं मिल रही थी, तो उन कालजयी रचनाओं ने समाज को एक दिशा दी, एक बोध दिया और एक रास्ता दिया कि यहाँ अगर हम चलेंगे तो समाज की कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो एक साहित्यकार की जो रचना धर्मिता है, उसका क्या मर्म होना चाहिए और उसका राष्ट्रीय सरोकारों से कितना तारतम्य होना चाहिए, ये आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो साहित्यकार हैं। आप हैं राजीव सक्सेना जी, यूँ तो आप जिला बचत अधिकारी हैं, लेकिन साहित्य सृजन उनका पहला और मूल कार्य है। साथ ही साथ हमारे साथ अंजीव कुमार रावत जी हैं, आप शिक्षक हैं, लेकिन साहित्य से आप भी जुड़े हुए हैं, नई नई रचनाओं के माध्यम से आप भी समाज से जुड़ते रहते हैं। राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा कि हम देखते हैं आजकल की परिस्थितियों में जब भी कोई रचना आती है, तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो देश काल की समकालीन परिस्थितियां उसमें चित्रित की जाती हैं। उसमें पात्र कोई भी हो, विषय वस्तु कोई भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि समाज और देश काल से हट करके वो हो, तो वो अपने समाज को और अपने परिस्थितियों को जीती हुई रचना होती है।
4: जी बिल्कुल।
3: जब उस पर पाठक उससे जुड़ता है, तो उस पाठक के जुड़ने की जो क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसका जो प्रतिबिंब राष्ट्रीय प्रदर्श पे या समाज में देखने को मिलता है, वो कई बार बहुत हट करके होता है। तो यहाँ थोड़ा सा इस चर्चा में मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो साहित्यकार की रचना धर्मिता है, हम राष्ट्रीय सरोकारों को बाद में जोड़ें, लेकिन उसकी जो रचना धर्मिता है, कोई एक कृति जब हम लेकर के आते हैं या कोई साहित्यकार लेकर के आता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं अपनी इस कृति के माध्यम से, इस अपनी पुस्तक के माध्यम से या अपनी इस रचना के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहता हूँ या देना चाहते हैं उसमें, तो वो जो एक रचना धर्मिता है, उस रचना का एक धर्म है, गुण धर्म है, उस कालखंड की परिस्थितियों को जिया है, उसके क्या मायने होते हैं इसमें, एक साहित्यकार के तौर पर जो आप सोचते हो।
4: देखिए, सबसे पहले तो मैं साहित्यकार के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि किसी भी साहित्य का जो मूल उद्देश्य है वो मनोरंजन है, और उसके अलावा कुछ टीचिंग या एजुकेशन देना, या और भी अगर मैं व्यापक अर्थों में जाऊं तो एक बेहतर समाज की रचना करना है। साहित्यकार का दायित्व होता है कि अगर वो कहीं कुछ गलत देख रहा है तो उसको इंडिकेट करना, उसके ऊपर तर्जनी उठाना, यानी ये बताना कि यहाँ ये कमी है और उसको हमें सुधारना है। क्योंकि हम जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक बेहतर नहीं बन पाएंगे। तो किसी भी साहित्यिक रचना का या किसी भी साहित्यकार का जो मूल उद्देश्य होता है वो एक बेहतर समाज की रचना करना होता है। अब ये समाज जो है उसका अपना जाति का समाज हो, अपने गांव का समाज हो, अपने शहर का समाज हो, या पूरा राष्ट्रीय समाज हो, पूरा राष्ट्रीय क्यों ना हो।
3: जी, जी, जी।
4: तो अगर कोई भी साहित्यकार व्यापक परिप्रेक्ष्य में या व्यापक उद्देश्यों को लेकर कोई रचना रचता है तो वो अपने समय और समाज से जुड़ती है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि बहुत सारे साहित्यकार जो हैं वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य रह गया है केवल आत्मप्रचार करना या ज्यादा ज्यादा मनोरंजन करना, जैसा कि आप देख रहे हैं मंचीय कविता के मामले में हो रहा है। तो नतीजा ये है कि कुछ

0: और बहुत इस तरह का चित्रण हो रहा है जो यथार्थ चित्रण नहीं है। वो कहना चाहिए कि बिल्कुल एक कृत्रिम किस्म के वातावरण में रचा गया साहित्य होता है, एक कृत्रिम किस्म का चित्रण होता है, तो वो
1: जी
0: ना तो पाठकों से जुड़ पाता है और ना अपने समाज से जुड़ पाता है। नतीजा ये है कि अब आजकल ऐसी कृतियां नहीं सामने आ रही हैं, प्रकाश में आ रही हैं, जो राष्ट्र का या अपने समाज का प्रतिनिधित्व करती हों, ये जो लोगों की जुबान पर हों या जिन पर बहुत चर्चा होती हो। तो ये वजह क्या है, उसका जो मैं कारण समझता हूं वो ये कि साहित्यकार ना तो पाठक से जुड़ रहे हैं और ना समाज से जुड़ रहे हैं। एक गैप, एक अंतर दोनों के बीच में बना हुआ है। तो ये अंतर के कारण जो है पाठक और लेखक के बीच में दूरी बन जाती है और वो अपनी बात पाठक तक नहीं पहुंच पाता और पाठक उस रचनाकार से भी नहीं जुड़ पाता है, और नतीजा ये कि उसमें समाज फिर पृष्ठभूमि में चला जाता है।
1: जी, आप क्या, मैं इसको इस रूप में लूं कि आज जो हर व्यक्ति के जीवन में एक द्वंद्व है, कथनी और करनी का जो जीवन में एक अंतर पैदा हो गया है, और उस द्वंद्व
0: जी
1: को समाज में हर व्यक्ति जी रहा है, और
0: जी
1: शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस
0: साहित्यकार
1: द्वंद्व
0: भी
1: का
0: जी रहे हैं,
1: पाठक भी उसका हिस्सा है और साहित्यकार भी,
0: जी
1: जो भी
0: उसका एक हिस्सा
1: कलाकार है
0: हैं।
1: वो उसका एक हिस्सा है, तो वो द्वंद्व कहीं गैप पैदा कर रहा है। अंजीव कुमार जी, क्या ये
0: नहीं,
1: बात?
0: बिल्कुल ये सत्य बात है। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम देखते हैं, जैसे मैंने भी कई बार कुछ रचनाएं ऐसी लिखी, जैसे एक रचना थी, उस रचना में था कि एक भिखारिन है और उस भूखी भिखारिन का एक चित्रकार एक चित्र बनाता है, और चित्र बनाने से बनाते बनाते ही, और उस भिखारिन को वो रोटी नहीं देता, वो कहता है कि तुम्हारी भूख मुझे इस चित्र में दिखानी है, और जब वो उसको रोटी नहीं दे पाता, वो भिखारिन मर जाती है, और जब वो चित्र बिकता है तो वो 13 लाख का चित्र, और अखबार में बाकायदा उसकी कटिंग है मेरे पास, कि वो 13 लाख का चित्र बिका है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम भाव देख रहे थे, जिस पक्ष को देख रहे थे, जिस पक्ष पर हमने अपनी कविता लिखी, जिस पक्ष को लेकर के हमने पैसा कमाया, लेकिन उसका जो हिस्सा था, जिसको लेकर के हमने कमाया था, जिस भाव को अपन उतारा था, उसको हम 1 रुपया नहीं दे पाए। यहाँ ये हमारा कथनी करनी, यहाँ हमारी बिल्कुल साफ आके दिखाई देती है कि हमने किसी गरीब को चित्रित किया, और हमारा मूल उद्देश्य जो आजकल की पत्रकारिता में भी है, जो आजकल की कविता में भी है, साहित्य में भी है, वो वहां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे दाना माझी वाली एक घटना बड़ी जबरदस्त आई थी, कि वो व्यक्ति 8-10 किलोमीटर की जाने 12 किलोमीटर अपनी पत्नी को कंधे पर लेकर के चलता है, और उसका फोटो बाकायदा अखबार में आता है, वो भी एक साहित्य है, पत्रकारिता। तो वहां जो आवश्यकता थी कि उसे कोई भी व्यक्ति सहयोग करता, मदद करता, वो मदद न करके बल्कि उसकी फोटो को उन्होंने
1: दस और
0: अपनी
1: बारह किलोमीटर का जो चित्रांकन और
0: चित्रांकन था वो,
1: फिल्मांकन तो किया गया, उसकी खबर
0: लेकिन
1: तो बनी,
0: खबर
1: लेकिन
0: लेकिन
1: मदद के लिए कोई
0: नहीं है।
1: नहीं
0: तो
1: आया
0: कथनी
1: उसका।
0: करने का अंतर बहुत ज्यादा आज के पत्रकारों में भी है, और मैं कहूंगा कि जो साहित्यकार है उनमें भी एक अंतर बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा है।
1: जी, तो इसमें जैसे राजीव जी, अब जैसे अजीब भाई ने कहा कि हम जो देख रहे हैं हम उसको एक तटस्थ भाव से देख रहे हैं,
0: जी बिल्कुल।
1: हम उसके उस रूप में, मतलब उस भाव रूप में उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर भाव रूप में जुड़ गए होते तो मदद पहले करते और
0: बिल्कुल
1: उसका
0: साहित्यवाद में
1: हिस्सा
0: रचते
1: बाद
0: हैं।
1: में होते उसमें, तो हम इतने तटस्थ हो गए, हम इतने अपने विचारों में संकुचित हो गए, संकीर्ण हो गए, या कहें कि हम स्वार्थी हो गए कि हम चीजों को लिख भी रहे, पढ़ भी रहे, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं होना चाहते,
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल
1: उसके उत्तरदायित्व बोध से नहीं जुड़ना चाहते। तो साहित्य में भी यही चीज आ रही।
0: देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि साहित्य भी साहित्यकार की साइकी पर, यानी उसके मानस पर या उसकी कहूं कि सोच के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और जहां तक साहित्यकारों की बात है, तो साहित्यकार अब पहले जो साहित्य रचते थे आम आदमी के लिए रचते थे ज्यादातर, तो वो सबसे जुड़ते भी थे, लेकिन अब साहित्यकार भी अपने को एक अभिजात या एलीट किस्म का जंतु मानने लगे हैं। वो ये मानने लगे हैं कि हम बाकी समाज से अलग हैं, थोड़े विशिष्ट किस्म के लोग हैं और
1: विशिष्ट
0: हमारा
1: है।
0: एक अपना दर्जा है। तो वो मतलब साहित्य समाज के बारे में लिखते तो हैं, लेकिन समाज से या व्यक्ति से जुड़ते कहीं भी नहीं है, खासतौर से भावनात्मक स्तर पर कहीं नहीं जुड़ते हैं। वो देखते तो हैं, वो चित्रण तो करते हैं, वो चित्रण फोटोग्राफिक किस्म का चित्रण तो होता है, लेकिन उसमें भावनाएं कहीं नहीं
1: मतलब
0: होती
1: उसमें
0: हैं।
1: जुड़ाव नहीं है।
0: हाँ, वो कृत्रिम है, एक रोबोटिक किस्म का कहना चाहिए कि साहित्य, या कृत्रिम किस्म का साहित्य होता है जिसमें भावनाएं तो शायद बिल्कुल गायब होती हैं। और उसका कारण जैसा कि मैंने बताया

0: कि वो खुद अपने को एक अलग
1: अलग
0: का
1: है।
0: जंतु मानने लगे हैं हम,
1: जी जी
0: और व्यक्ति को ये समाज को एक अलग
1: तो
0: एंटिटी समझने लगे
1: उसमें
0: हैं।
1: फिर जो जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें न तो तथ्य आएगा न तथ्य आएगा और न वास्तविकता आएगी। तो आपने जो शुरुआत में कहा कि फिर वो कालजयी कैसे हो सकता है, जब जिन लोगों के बारे में हम लिख रहे हैं, जब उनके साथ हमने जिए नहीं, उनके साथ हमारी रोटी पानी का संबंध नहीं है, भाव का संबंध नहीं है जुड़ा।

0: संबंध नहीं है, भाव का संबंध नहीं है, जुड़ाव नहीं है, तो वो जो विषय वस्तु हम लेके आएंगे उसको हम नहीं जी पाएंगे, तो साहित्य में कैसे
1: तो
0: वो
1: मैं
0: फिर कैसे हो पाएगा उसका।
1: आपकी ही बात को विस्तार देना चाहूंगा, बड़ा
0: जी
1: करना चाहूंगा। यही इसी बात का परिणाम है कि शायद मुंशी प्रेमचंद के गोदान के बाद से, या फणीश्वर नाथ रेणु का अगर मैं जिक्र करूं उनके मेला आंचल के बाद, कोई इस तरह का बहुत ही चर्चित उपन्यास या कृति नहीं आई है जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र का या समाज का बिंब जिसमें हमें दिखाई पड़ता हो। मैं इससे भी और आगे जाना चाहूंगा, अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन जो कि रूसी भाषा के नोबेल विजेता साहित्यकार थे, या मिखाइल शोलोखोव वो भी एक दूसरे महान
0: रूसी।
1: उपन्यासकार
0: जी जी
1: थे। जैसे सोल्जनित्सिन ने उपन्यास लिखा गुलाग आर्किपेलागो, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, या मिखाइल शोलोखोव ने लिखा था ऑन क्वाइट फ्लोज द डॉन,
0: जी
1: तो उसमें उन्होंने समकालीन रूसी समाज का बड़ा यथार्थ, बड़ा विशद, बड़ा बारीक सूक्ष्म चित्रण किया था। और ऐसा चित्रण वो इसलिए करवाए क्योंकि वो अपने समय से, अपने समाज से और व्यक्तियों से जुड़े
0: जी
1: कहीं ना कहीं,
0: जी
1: उन्होंने
0: जी
1: उसको भोगा, उसको जिया। या मुंशी प्रेमचंद गोदान लिख पाए तो उन्होंने बिल्कुल उस स्थिति को देखा, भोगा भी।
0: उसका
1: या फणीश्वरनाथ रेणु ने, वैसा आजकल के साहित्यकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो केवल ड्राइंग रूम में बैठ करके लिख रहे हैं, यह पता लगा कि एक कृत्रिम किस्म के वातावरण में लिख रहे हैं। तो नतीजा ये कि जो साहित्य लिखा जा रहा है वो साहित्य के नाम पर तो कहा जाता है कि ठीक है साहित्य, लेकिन वो
0: हाँ
1: जनता का प्रतिनिधि साहित्य, ये
0: हाँ
1: समाज का प्रतिनिधि साहित्य तो नहीं है,
0: जी
1: वो
0: जी
1: अपने समय का भी प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है।
0: इसीलिए
1: नतीजा
0: फिर वो कालजयी भी नहीं हो पाता।
1: इसलिए वो कालजयी भी नहीं हो
0: नहीं,
1: पाता है।
0: एक कारण और है
1: जी
0: कि जो ये समय चल रहा है, एक जैसे पहले प्रयोगवाद आया, उसके बाद जी
1: साठोत्तरी आई, उससे पहले प्रगतिवाद था, छायावाद था। ये एक ऐसा समय है इस समय कि इसमें प्रतिवाद का दौर है,
0: हाँ
1: कि जैसे हमने देखा, और जो पुराने जो नायक थे उनके विरुद्ध हम कोई भी बात को उठा करके रखें, जैसे
0: जी
1: हम
0: जी
1: परशुराम जी को ले लें, या जो कृष्ण को ले लें, या राम को ले लें,
0: हाँ,
1: या इनके खिलाफ जैसे
0: पर
1: कोई,
0: उसके बारे में हम जो सोच रहे हैं वो
1: हाँ,
0: लिख देंगे, उसको
1: वो
0: वो
1: एक
0: बता देंगे।
1: कल्पना की भरमार ज्यादा नजर आती है कि हम ये नहीं देखते कि इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा।
0: हाँ,
1: मुख्य चीज ये
0: जी
1: है कि
0: जी जी वही हम जानना चाह रहे थे
1: हाँ, कि
0: उसमें।
1: मुख्य उसका असर क्या पड़ेगा, और हम उसको क्या एक प्रतिवाद के उस पर ले लेते हैं कि प्रतिवाद है साहब, हमें ये इन्होंने ये कार्य किया, गलत किया, अब उसका समाज पर कितना असर पड़ रहा है इस चीज को।
0: नहीं उस, लेकिन हो सकता है कि हम उसको, जब जैसा राजीव भाई ने कहा कि उससे जब उसको जान ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए, तो उस पर प्रतिवाद कैसे करेंगे बिना वास्तविकता को जाने। जिसे कोरोना काल आया, इसको थोड़ा हम व्यवहार में जोड़े, बहुत सारी चीजें ऐसी थी हिंदू माइथोलॉजी की जिसको हमने एक पिछड़ेपन के नाम पर, या आज इनकी वास्तविकता में जरूरत नहीं
1: अंधविश्वास,
0: है, हाँ,
1: अंधविश्वास भी मान
0: अंधविश्वास
1: सकते
0: के
1: हैं।
0: नाम पर कुछ भी एक लगा के एक नई पीढ़ी ने उसको एक 40-50 साल
1: खारिज
0: के
1: किया
0: जीवन
1: था।
0: उसमें खारिज कर दिया उसमें, और हम नितांत आधुनिकता के उसमें आ गए। लेकिन जब आज जब उन चीजों को हमने देखा कि हमारे मसाले तो औषधि है, हमारी किचन तो किचन नहीं, वो तो हमारी रसायन शास्त्र है,
1: रसायनशाला है
0: जिसमें
1: वो।
0: हमारी औषधियां बन रही है, हमारा भोजन वो लंच और डिनर नहीं है, वो उसमें वो भोग और प्रसाद है, उसमें रस पैदा होता है, और रस वास्तव में हर भोजन से पहले रस बनता है, रस से ही पोषण होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आज उन चीजों को हम चरित्रार्थ कर रहे हैं, आंवला उसमें जीवंत तो औषधि है, आपका तुलसी उसमें वो है, तो वो एक जो भारतीय जनमानस नहीं जानता था उसके वैज्ञानिक पक्ष को, लेकिन उस समय के इतने कालखंड के इतने ज्ञानी लोग थे कि उन्होंने एक रिचुअल्स बना के उसको हमारी जीवन पद्धति में डाल दिया
1: नहीं,
0: था।
1: इसका एक और कारण है,
0: जी
1: हमारी जो जो साहित्यिक एक शैली रही है
0: जी जी
1: या एक परंपरा रही है, उसका एक रहा है कि हमने हमेशा अतीत से सीखा है,
0: हाँ
1: अतीत की जो समृद्धि जो है वो हमारे को मिली है,
0: हाँ
1: और वर्तमान का हमें मूल्यांकन करना चाहिए, और उसके बाद जो भविष्य के लिए हमें उसे स्थापित करना चाहिए। लेकिन हम अतीत को देख नहीं रहे हैं, हमारी
0: हाँ
1: समृद्धि क्या है, वर्तमान का सिर्फ एक मूल्यांकन करते हैं हम, अतीत को छोड़
0: उसका
1: करके,
0: भी सतही मूल्यांकन हो
1: वो
0: रहा
1: भी
0: है।
1: सतही मूल्यांकन होता है। तो ये एक बड़ी गलत परंपरा मानता हूं। और दूसरा, आजकल का जो साहित्यकार है वो क्यों नहीं जुड़ पा रहा पाठक से, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो न तो वो पढ़ पा रहा है, वो पढ़ता नहीं है, वो लिखने पर विश्वास है उसका
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: मुझे लिखना है, मुझे कल्पनाओं से लिखना है, और जब तक कल्पनाएं यथार्थ के धरातल पर नहीं आएंगी तब तक सतही माना जाता है। आजकल का पाठक भी इतना तेज है,

0: कि वो समझ जाता है कि ये कल्पना है पूरी तरह से और ये थोपी
1: ये
0: जा रही है,
1: पठनी है, ये पठनी
0: पठनी
1: नहीं
0: है,
1: है।
0: ये एक बहुत बड़ा कारण।
1: राजीव भाई, जैसे अंजीव भाई ने कहा कि उसमें जो है समय का भी ये हो सकता है, उसमें हम ये नहीं जा रहे, लेकिन मैं अपने जो बातचीत का दूसरा वो है राष्ट्रीय सरोकार, उस पर लाना चाहता हूँ। आपने जैसे कहा कि समाज के बेहतर समाज के निर्माण के लिए कोई रचना रचनाकार लाता है उसमें, लेकिन प्रतिक्रिया जैसा अंजीव भाई ने कहा कि वो सतही तौर पर प्रतिक्रिया हो जाती है और उसका एक इशू भी बन जाता है उसमें, लेकिन जब हम राष्ट्रीय सरोकारों को आज देखते हैं, आज़ादी के हम 75 साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें, तो राष्ट्रीयता की जो भावना है, देश प्रेम की भावना है, वो भी कई बार अब उसकी परिभाषा अलग हो गई है,
0: बिल्कुल
1: अलग अलग खंडों में उसको करके देखा जा रहा है।
0: जी।
1: तो अब उसमें जिसे कहा कि आपने साहित्य का एक बेहतर समाज निर्माण तो है ही, लेकिन उसमें टीचिंग भी है, उसमें समझाने और एक विषय वस्तु देने की भी वो होती है उसमें। तो अब जो कहीं पिछड़ रहे हैं हम चीज को समझने में राष्ट्रीय हितों को, तो क्या अब इसमें रचनाकार की जो कल्पनाशीलता कहें या उस रचना धर्मता का वो कहें कि अब आज उसकी जो जिम्मेदारी है और बढ़ नहीं गई है उसमें चीजों को?
2: नहीं, बिल्कुल बढ़ गई है और मैं समझता हूँ कि साहित्यकारों की जिम्मेदारी तो हर युग में बराबर रही है।
1: जी जी जी।
2: लेकिन इस युग में कुछ ज्यादा बदल गई है और ज्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह यह कि ये संक्रमण का समय है, ट्रांजिशन का समय है, तो साहित्यकारों को समय की चाल को और समय के संदर्भों को समझना होगा, परिभाषित करना होगा। दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो ये कि जो आजकल ये जो कृत्रिम या कहना चाहिए प्राणहीन किस्म का या जो प्रतिनिधित्व साहित्य का जो लेखन नहीं हो रहा, उसका मूल कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि साहित्यकारों की अपनी कोई दृष्टि नहीं है। और मैं मानता हूं कि बिना दृष्टि का लेखन जो होता है वो वास्तविक या सच्चा साहित्य या सच्चा लेखन नहीं होता।
1: जी, जी, जी, जी।
2: सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि साहित्य के क्षेत्र में भेड़िया दशान जैसी स्थिति हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो साहित्य रचने लगे हैं लेकिन उनकी अपनी कोई दृष्टि, अपना कोई स्टैंड नहीं है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि वो कभी साहित्य के या इतिहास के गंभीर छात्र भी नहीं रहे हैं, तो इतिहास की कोई दृष्टि नहीं है और साहित्य के प्रति भी कोई दृष्टि नहीं है। तो वो बिना दृष्टि के चूंकि जो लेखन हो रहा है तो उससे कोई राष्ट्रीय विचारधारा भी आगे नहीं बढ़ रही है, कोई पता लगा कि सोच नहीं बन रही है। अब राष्ट्रीयता को जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत ही संकीर्ण अर्थों में ले लिया गया है, ये मान लिया गया है कि देश के प्रति जो है मतलब एक भक्ति या देशभक्ति जो है या कुछ कहना चाहिए रूढ़ अर्थों में जो राष्ट्र प्रेम की भावना वही राष्ट्रवाद है, जबकि ऐसा नहीं।
1: जबकि गरीबी की बात भी राष्ट्रीय सरोकार में आती है,
2: उसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात भी आती है, उसमें पता लगा देश के आर्थिक विकास की बात भी आती है, उसमें स्पेस
1: एक्सप्लोरेशन
0: कोई भी भूख है, भ्रष्टाचार है, जनसंख्या है, हमारी आवश्यकता है, महंगाई, ये सारी राजनीति जो राष्ट्रीय सरोकार में आती है।
2: ऐसे सारे मुद्दे जो कि राष्ट्र के विकास में मतलब हमारी चिंता का विषय होने चाहिए, जो हमारी चिंता के केंद्र में होने चाहिए या जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए, वो सब राष्ट्रीयता के दायरे में आते हैं। और मैं समझता हूँ कि साहित्यकारों को इन विषयों पर, साहित्य से थोड़ा हटकर, इनके ऊपर भी विचार रखना चाहिए और इनके बारे में अपनी भी एक दृष्टि विकसित करनी चाहिए कि भाई ये चीज जो है हमारे पाठक तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे, तो समाज उससे जो है मतलब एक प्रेरणा ले, उससे एक डायरेक्शन या एक दिशा प्राप्त करे, तब हम एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ेंगे और तब राष्ट्र जो है उत्तरोत्तर।
1: अब इस बात को जैसे आपने कहा कि जो लिख रहा है, जो लेखक है, जो रचनाकार है, वो अपनी रचना लेकर के आ रहा है, वहां भी एक एक वो कहे कि एक जो उद्देश्यहीन जीवन है वो हो गया है। हम हमारे पास अपने पास प्रेरणा नहीं है तो हम दूसरे को क्या प्रेरणा देंगे और काली रचना तो क्या आएगी? तो फिर क्या इसमें फिर से हमें उन चीजों से, अपने मूल्यों से जुड़ना पड़ेगा कि हम अपने अपने उसको तो विराट स्वरूप दे पाए, अपने व्यक्तित्व को, और उसको न सिर्फ विचार में बल्कि उसको जीने में लेके आए। आपने कहा कि अब एक साहित्यकार भी एक इलीट वर्ग हो गया है,
2: हाँ।
1: तो शायद वो अपनी वास्तविकताओं से भी कट रहा है, समाज से कट रहा है, तो वास्तविकताओं से कट
2: रहा है, जड़ों से कट रहा है,
1: जड़ों से कट रहा है, तो फिर से क्या है, जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, मतलब
2: बिल्कुल जड़ों से। देखिए कोई भी पेड़ अगर अपनी जड़ों से नहीं जुड़ता है तो गिर जाता है, ये आप बात मानेंगे। तो अगर समाज मतलब साहित्यकार भी अपने समाज से, अपने देश से या अपने साहित्य से या अपने इतिहास से कटता है तो जाहिर सी बात है कि उसका पतन कहीं ना कहीं होगा। सबसे बड़ी विडंबना ये कहूंगा मैं कि साहित्यकारों के साथ दिक्कत ये है कि वो अब साहित्य के खुद भी गंभीर पाठक नहीं है और उसका विश्लेषण तो बिल्कुल करते ही नहीं है,
1: और
2: तो
1: जबकि ये टू वे प्रोसेस है।
2: हाँ,
1: म्यूचुअल प्रोसेस है।
2: साहित्यकार बनने से पहले हमें उसका गंभीर पाठक या अच्छा पाठक भी होना चाहिए।
0: इसके अलावा

0: एक ये भी बात है, जैसे प्रेमचंद जी ने एक बात कही थी कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली एक मशाल है, लेकिन आज देखा जाए तो इस बार का जैसे चुनाव हमने बीच में देखा है, इसमें बहुत से कवियों को हमने देखा खुलेआम पार्टियों के बारे में बोलते हुए, तो वहां उनका वो मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम एक पार्टी विशेष या दो पार्टी विशेष या अन्य लोगों के बारे में
1: जी
0: बात
1: जी जी
0: करें,
1: जी
0: हम अपनी
1: अपनी
0: उन
1: राय भी रखें तो राष्ट्रीय
0: राष्ट्रीय
1: संदर्भों
0: संदर्भों को लेकर के रखें ये एक। और इस बार जो इतना पहली बार ऐसा चुनाव देखा गया जिसके अंदर के हमने जैसे नागार्जुन को भी हमने पढ़ा, वो खुलेआम बोलते थे, खुलेआम लिखते थे, उन्हें डर नहीं लगता था कि वो इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो खुलेआम लिखते थे वो, कि नेहरू की बेटी करके उन्होंने कई कविताएं भी लिखी, तो ऐसा नहीं था। लेकिन आज का जब हमने देखा तो यशोगाथा गाना जो सबसे बड़ा गलत रहा, वो भी पार्टियों की, आप देश की गाते,
1: सही बात है,
0: देश के
1: सही
0: विकास की गाते,
1: देश के मूल्यों की
0: मूल्यों
1: गाते
0: की
1: हैं, अपनी
0: गाते,
1: संस्कृति
0: संस्कृति की गाते,
1: की।
0: लेकिन उन्होंने वो ना करके एक विशेष वर्ग को लेकर के उठाया, एक विशेष पार्टी को उठाया और दूसरी पार्टी को नीचे दिखाया, तो ये बड़ा गलत था इस तरह से। तो आप राजनीति की मशाल हैं और आज आप राजनीति के पीछे चलने वाले लोग हो गए हैं, अर्थात राजनीति जहां चल रही है आप उसके पीछे पीछे पिछला को चल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और सत्य बात यह है कि कई बार ऐसी रचनाएं भी देखने को मिलती हैं भैया, कि उन रचनाओं का वास्तविक तौर पर कहीं कोई अर्थ ही नहीं होता और वो रचनाएं हमारी सरकारी पत्र पत्रिकाओं में भी छप जाती हैं। वो कुछ विशेष लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात होती हैं, और कई घटनाएं तो मैंने ऐसी देखी हैं कि सरकारी अनुदान पर ऐसी रचनाएं भी छप रही हैं जिनमें उनके वास्तविक जो छंद हैं उनकी मात्रात्मक और गुणात्मकता यदि देखी जाए, शिल्प देखा जाए, भाव देखा जाए, तो वो कहीं भी छूता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कहीं जो राजनीतिक नियुक्तियां जो होती हैं वो भी साहित्य को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ कदम धकेलने में बहुत बड़ा मदद करती हैं, योगदान कर रही हैं।
1: राजीव भाई, अब जैसे राष्ट्रीय सरोकारों की बात हो रही थी, यहाँ थोड़ा सा इसको और ले जाए, अपन कालजयी चीज चर्चा में आई थी उसमें, और कालजयी होने के लिए शायद मुझे लगता है कालखंड के आगे और पीछे दोनों तरफ जाना पड़ता है
0: नहीं,
1: उसमें।
0: अतीत तो भविष्य है,
1: हाँ, तो जब तक
0: भूत
1: आप नहीं देख पाएंगे तो शायद कालजयी रचना भी
0: नहीं हो
1: नहीं दे
0: पाएगा।
1: पाएंगे।
0: नहीं,
1: तो वो जो पहले जो कालजयी रचनाएं दे गए वो लेखक शायद उन्होंने अब पहचान के लिए नहीं लिखा था,
0: बिल्कुल
1: उनका
0: बिल्कुल
1: जीवन भी पहचान के लिए नहीं था, वो कभी उसके मोहताज नहीं रहे।
0: नहीं नहीं नहीं
1: बाद में हम सबने उनको सर माथे पे बिठाया, आज भी बिठाते, लेकिन उन्होंने कभी उसकी इच्छा नहीं की। तो आज का जो लेखक अपनी पहचान पाने के लिए अपने ही समय में शायद जो जद्दोजहद कर रहा है, इसीलिए कहीं रचना में वो चीज गहराई नहीं आ पा रही है।
2: हाँ, उसकी वजह मुझे जो महसूस होती है कि अगर रचना में मतलब अपने समय या समाज का यथार्थ चित्रण नहीं है, या वो प्रतिनिधित्व रचनाएं, प्रतिनिधि रचनाएं नहीं बन पाई हैं, या कालजयी रचनाएं नहीं बन पाई हैं, तो उसका एक समय एक बड़ा कारण तो मुझे ये लगता है कि लेखक आज स्वयं भी अपनी भूमिका को रेखांकित नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी बढ़िया या सच साहित्य लिखने से पहले या जेन्युइन लिटरेचर लिखने से पहले उन्हें अपनी भूमिका को रेखांकित करना पड़ेगा, उन्हें अपना ये तय करना पड़ेगा कि वो ये आखिर साहित्य रच क्यों रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, या उनका क्या
1: मूल
2: मतलब उनकी
1: उद्देश्य क्या,
2: भूमिका
1: मूल
2: क्या होनी
1: उद्देश्य
2: चाहिए
1: क्या है।
2: मौजूदा संदर्भों में, मौजूदा समय के अंदर। अब उनको एंटरटेनर बनना है या उनको पता लगा कि राजनीति के आगे चलने वाली मशाल बनना है, ये साहित्यकारों को खुद तय करना पड़ेगा। और वो मतलब संयोग से कहा जाए कि या जानबूझकर इस चीज को डिफाइन नहीं करना चाह रहा है, इसको तय नहीं कर रहे हैं हम। पिछले साहित्यकारों ने जो कालजयी साहित्य रचा उसका एक बड़ा कारण यह था कि वो समय को रेखांकित करते थे, वो समय को जानते थे। और कोई भी रचना तब कालजयी बन पाती है जब वो अपने समय का अधिकरण करती है, यानी वो सार्वभौमिक होती है,
1: बिल्कुल,
2: हर स्पेस टाइम में वो उसके जो मूल्य
1: वो
2: होते हैं वो बराबर होते हैं।
0: बराबर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
2: महाभारत अगर एक कालजयी रचना है और उसके बहुत सारे संदर्भ अगर आज भी हमें अपने सामने के, अपने समय के लगते
1: हाँ,
2: हैं,
1: उसके चाहे पात्र हो चाहे
2: हाँ
1: परिस्थितियां हो, वो
0: तो
1: आज भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सीखने
2: उस तरह के पात्र आज
1: को।
2: भी अगर हमें समाज में दिखाई पड़ते हैं तो उसका
1: हाँ
2: मूल कारण ये है कि वो समय का अतिक्रमण करती है वो रचना,
1: जी
2: और
1: जी
2: उसके रचनाकार ने किसी समय विशेष को ध्यान में उसको नहीं रचा था, बल्कि सारे समय को जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ शामिल है उसको ध्यान में रखते हुए रचना को लिखा था कि इसका इम्पैक्ट कहाँ तक होगा, कहाँ तक जाएगा, ये
1: जी
2: रचना कहाँ तक जाएगी, ये
1: जी
2: साहित्यकार के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो अपनी
1: जी
2: रचना को कहाँ तक पहुंचाना चाहता है। तो
1: जी
2: मेरा मतलब यही कहना है कि एक तो वो अपनी भूमिका को रेखांकित करें, ठीक है, और इस तरह की रचनाएं लिखें जो केवल अपने सामने के समय से ही नहीं, अपने डायरेक्ट या जिस समय में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उससे ही नहीं, बल्कि उसके पीछे के

0: समय से भी और आगे के समय से भी जुड़े, तब
1: जी
0: कालजयी
1: तब
0: रचनाएं आएंगी,
1: वो
0: तब इस तरह का साहित्य रचा जा सकेगा जो जनता का या राष्ट्र का या समाज का प्रतिनिधि साहित्य होगा।
1: जी जी और अगर शायद मैं समझता हूँ रचनाकार इस बात को नहीं समझ पा रहा, इस बात को नहीं अपने जहन में ला रहा, तो फिर समय मूल्यांकन करेगा, और फिर उस समय जब मूल्यांकन करेगा तो फिर शायद आप कहीं एक रचनाकार के तौर पर शायद नहीं ठहर पाएंगे।
2: नहीं
1: ठहर पाएंगे,
2: बिल्कुल बिल्कुल। एक रचना पर बड़ी गंभीर चर्चा इन दिनों में चल रही है, पंचतंत्र को लेकर के, कि पंचतंत्र बाल साहित्य है कि नहीं
1: जी,
2: है।
1: जी, जी।
2: और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस पर चर्चा करने वाले उसको बाल साहित्य की चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा करने वाले लोग प्रौढ़ होते हैं उसमें। यदि आपको लगता है कि बाल साहित्य है या नहीं है तो बच्चों के बीच में रख दीजिएगा, होगा तो वो अपने आप उसे अडॉप्ट करेंगे, सीधे सीधे स्वीकार करेंगे।
1: जी, जी।
2: लेकिन बात यही आती है कि जब हम किसी चर्चा यानी उस किताब को हम खारिज करते हैं कि ये बाल साहित्य नहीं है, और उस समय जब हम देखते हैं कि जब ये मना कर रहे हैं कि ये बाल साहित्य नहीं है, तो उस समय लगता है हमें कि इसकी जो आलोचना करने वाले लोग हैं या जो इसका एक मूल्यांकन करने वाले लोग हैं वो या तो अपनी स्थिति को ही खत्म कर चुके। तो इसमें साहित्यकार का नहीं, एक मूल्यांकनकर्ता का भी बहुत बड़ा दायित्व तो हो जाता है कि उस रचना का उस समय के अनुसार मूल्यांकन करें।
1: जी,
2: तो जैसे रामचंद्र शुक्ल जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, रामविलास जी थे, तो इन लोगों ने जो मूल्यांकन किया उससे महादेवी वर्मा निकल के आती हैं, उससे निराला जी निकल के आते हैं, उससे प्रसाद जी निकल के आते हैं, और उससे प्रेमचंद निकल कर आते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो मूल्यांकन हुआ वो रचनाएं आज चाहे अज्ञेय जी हों, चाहे मुक्तिबोध जी हों, चाहे सक्सेना जी हों, लेकिन इनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं तो आज पुराना व्यक्ति इनकी रचनाओं को नहीं पढ़ पाता। कालजयी रचना वो हुआ करती थी कि आला उदल जो है आज भी हमारे पुराने बुजुर्गों के मुंह पर आती है वो रचना, और तो
1: जो, जो लोक जीवन से
2: जुड़ी हुई थी,
1: लोक जीवन में समाहित
2: समाहित थी। अच्छा, वो लोक जीवन से समाहित थी, एक शैली थी, लेकिन उसको शैली बना दिया गया, लेकिन वो था एक साहित्य। लेकिन हम उससे भी अलग चले, एक श्याम नारायण पांडे जी की एक किताब है हल्दी घाटी, उसकी एक रचना थी कि रणभीर चौकड़ी भर भर कर, तो वो रचना है, या हम कहें कि सुभद्रा कुमारी चौहान की आज भी बच्चों के बीच में रहती है, ये कालजयी रचनाएं हैं, क्योंकि ये उस समय लिखी अवश्य गई थी, उस समय इनका मूल्यांकन
1: सर्वकालिक है,
2: सर्वकालिक हो गई,
1: तो सर्व स्वीकार सर्वकालिक,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सब में जो है समाहित वो
2: बिल्कुल
1: उसमें। तो अब चलते चलते मैं राजीव जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब सर्वकारों की बात होती है, रचना की बात होती है, रचना धर्मिता की बात होती है, तो फिर से हम वहीं लौट के आ जाते हैं कि लेखक को ये सोचना पड़ेगा कि आज मेरे पाठक को जरूरत क्या है, आज मेरे समाज को और मेरे देश को और मेरे काल को क्या जरूरत है,
2: बिल्कुल,
1: मैं उसको क्या दे पा रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ पाठकों पर भी हम नहीं छोड़ सकते भाई उनकी, क्योंकि पाठक का हो सकता है वो लेवल न हो, वो कुछ और चाहता हो, लेकिन हम उसको वो तो नहीं दे सकते, हमें तो देश को और काल को और अपने उसको देखना, परिस्थितियों को। तो अगर उसमें से हमें प्रेरणा देनी है साहित्य के तौर पर, साहित्य के माध्यम से, तो लेखक का उत्तरदायित्व फिर से बढ़ जाता है,
2: बहुत अधिक बढ़ता है इसमें, बहुत
0: नहीं। इसके लिए मैं समझता हूँ ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है जितना लगता है। इसके लिए बस इतना करना है कि लेखक को संवेदनशील होना तो उसका अनिवार्य शर्त ही है साहित्य रचने के लिए, उसको अपने पाठक के करीब जाना पड़ेगा,
1: आपका पाठक भी तो समाज में रहता है,
0: आपको
1: जुड़ना पड़ेगा,
0: अपने पाठक से संवाद भी कायम करना पड़ेगा, इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा। अब वो नहीं है कि केवल आपने कोई कृति रच दी और पाठक तक पहुंचा दी और यही संवाद आपने मान लिया, अब आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रत्यक्ष संवाद भी करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, और पाठक के साथ साथ समाज की साइकी यानी समाज के मानस को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई समाज आखिर चाहता क्या है, क्या इस समय की जरूरत है, हमें किस तरह का साहित्य रचना चाहिए। तो जब तक हम ये अध्ययन विश्लेषण या दृष्टि विकसित नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि यथार्थ या प्रतिनिधि साहित्य या कालजयी साहित्य रचा जा सकेगा।
1: जी जी, निश्चित तौर पे श्रोताओं बातें तो और भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन जब हम कहते हैं कि जहाँ रवि नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँचता है, वहाँ साहित्यकार पहुँचता है, तो वो बात जो राजीव जी कहा ने कहा अंजीव जी ने कहा कि वहाँ हमें जाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर वहीं से विषय वस्तु उठा के, वहीं से पात्र उठा के, वहीं से एक मूल संदेश को उठा करके फिर से एक नए रूप में देना पड़ेगा जहाँ से वो प्रेरणा ले सके। आप दोनों हमारे साथ आए और ये इस वाणी और विचार से हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको धन्यवाद,
2: आपको बहुत बहुत आभार।
3: साहित्यकार की रचना धर्मिता और राष्ट्रीय

सरोकार इस विषय पर आधारित थी ये परिचर्चा। आप सुन रहे थे, इस परिचर्चा में प्रतिभाग किया राजीव सक्सेना और डॉक्टर अंजीव कुमार रावत ने, और आपसे भेंट करता थे ओपी सिंह। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर की आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और कुमार सानू के स्वर में आपने सुना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था जतिन ललित का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अभिजीत और आशा भोसले के युगल स्वरों में। गीत को लिखा है देव कोहली ने, संगीत जतिन ललित का है। फिल्म का नाम है खिलाड़ी।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में इस सोमवार 14 सितंबर 2026 को दोपहर 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94122-25575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। श्रोताओं, यदि आप बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं जैसे लगातार सर्दी जुकाम, साइनस, नाक की एलर्जी और नाक का बंद रहना या मांस बढ़ना, कान बहना, कम सुनाई देना या बहरापन, कान में अजीब आवाजें आना और चक्कर आना, टॉन्सिल और एडेनोइड की समस्या, गले में खराश या दर्द, गले में संक्रमण, आवाज बैठना और निगलने में कठिनाई, स्लीप एपनिया, खर्राटे, थायराइड की असामान्यताएं और सिर व गर्दन क्षेत्र की गांठें या ट्यूमर आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी 14 सितंबर 2026 और समय दिन में 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और एक बार फिर से जुड़ जाते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, तो लीजिए आनंद इस कार्यक्रम के अगले गीत का।

खलनायक फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक, मनहर उदास और साथियों की आवाज़ में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सलामी से। गीत को आवाजें दी हैं कुमार सानू और आशा भोसले ने। मदन पाल की रचना को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: शाश्वती की आवाज़ में आपने सुना मुंबई मैटनी फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था देव कोहली ने, संगीत था आनंद राज आनंद का। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है।

0: हेलो
1: हेलो मथुरा आकाशवाणी।
0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से।
0: मनोहर लाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सर आप बताइए, बड़े दिनों बाद बात हो रही है आज आपसे।
1: हाँ जी, थोड़ा गैप करके जरा लगाते हैं कॉल, ताकि अन्य श्रोता जो हमारे मित्र हैं उनकी भी आवाज सुन सके हम।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जी आप तो बहुत ही रेडियो के सुधी श्रोता हैं।
1: हाँ जी, हम रेगुलर वैसे सुनते रहते हैं मथुरा आकाशवाणी के प्रोग्राम, सुनने
0: जी जी जी
1: में बड़ा आनंद आता है।
0: अरे आप लोगों का बड़ा सहयोग रहता है सर, आप ही लोगों की वजह से हमारे कार्यक्रम अच्छे दूर दूर तक सुने जा रहे हैं।
1: जी आप आरजे हैं सभी की, मनमोहक अंदाज हमारे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। धन्यवाद बहुत बहुत।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अच्छे बने रहें। क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में?
1: ये फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन,
0: जी
1: देवा ओ देवा गणपति देवा।
0: सुनवाते हैं गांधी जी आपकी पसंद का ये भक्ति गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: हेलो,
0: हेलो
2: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
2: ठीक हो सर, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी पीरियड में हूँ सर। यहाँ तो मौसम एकदम बादल किया है, पानी गिरने के कगार में सर। छत्तीसगढ़ में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में पानी गिरने की संभावना ज्यादा है।
0: बहुत बढ़िया बात है, तो मौसम अच्छा हो जाएगा आपके यहाँ।
2: जी सर, और सबसे पहले सर आपको गणेश पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं, जो आने वाला है गणेश पूजा।
0: बिल्कुल, आपको भी भगवान गणेश खूब संपन्न रखें, सुखी रखें आपको।
2: जी सर, और मैं आज दिशा मर्तुबे मंडल के साथ में अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन, और गाने के बोल है देवा और देवा गणपति देवा हमसे बढ़कर। इसी गीत को सुनाएंगे सर।
0: ठीक है, धन्यवाद आपका। आइए सुनते
2: जी
0: हैं आपकी फरमाइश का ये भक्ति गीत।
2: जी सर, धन्यवाद सर।
3: वक्र

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार। कैसे
0: नमस्कार।
1: हैं सर? काफी
0: बहुत अच्छे हैं। जानना चाहते हैं आप कौन बोल रहे हैं।
1: दिन बाद लगाया सर। मैं चौधरी धर्मवीर सिंह नंगला भोकला की थम आगरा से सर।
0: आपका स्वागत है चौधरी साहब। कैसे हैं?
1: बढ़िया है, हल्की बूंदाबांदी हुई है अभी सुबह। जी
0: जी, मौसम थोड़ा ठीक हुआ। कई दिन से गर्मी हो रही है।
1: जी
0: और आपका काम सही चल रहा है?
1: हाँ जी, एज ए सुपरवाइजर की नौकरी है कंपनी में।
0: जी, आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में।
1: आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, मजबूर फिल्म का गाना है सर। शुक्रिया
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: कभी

0: हेलो,
1: जी भैया नमस्ते।
0: कौन बोल रहे हैं सर?
1: आपका नियमित श्रोता साथी योगेश जांगड़े पे मैं तेरा छत्तीसगढ़ से। जी
0: स्वागत है योगेश भाई कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: क्या हाल चाल चल रहा है?
1: बढ़िया है भैया, मजे में।
0: मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ या गर्मी ही है अभी?
1: गर्मी है भैया, बारिश होता भी है तो ऐसा है 5 मिनट होके चला जाता है।
0: गर्मी और बढ़ा जाता है, उमस हो जाती है ऐसी बारिश से। चलिए, मौसम का चक्र तो चलता रहता है। क्या फरमाइश रखेंगे कार्यक्रम में?
1: बिंदिया चमकेगी फिल्म अधूरा रास्ते से सुनवा देंगे।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।
1: जी
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: शुक्रिया आपका, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते। प्रेम
0: नमस्कार,
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी,
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं सर, आप बताएं कैसे हैं।
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
0: जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी आपका फोन आता है। तो
1: जी,
0: क्या कारोबार चल रहा है इस समय।
1: अभी हमने सोयाबीन की फसल लगाई है
0: जी
1: जो 2 महीने की हो गई है, और पकने के लिए उसने स्प्रे करके छोड़ दिया है।
0: जी जी
1: अभी 1 महीने में इसकी कटाई हो जाएगी,
0: ठीक है,
1: और उसके बाद में फिर कटाई होने के बाद में लहसुन और गेहूं की फसल लगाएंगे हम लोग।
0: बिल्कुल हमारे कार्यक्रम
1: जी
0: आप सुनते रहें।
1: जी बिल्कुल, मोबाइल पे कार्यक्रम सुनते हैं तो हमें स्पष्ट प्रसारण मिलता है, और साथ
0: जी
1: में बहुत सारे आकाशवाणी का साथ भी मिल जाता है।
0: आज क्या फरमाइश रहेगी बताइए।
1: जी, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में,
0: जी
1: और गाने के बोले चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। बहुत
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: धन्यवाद,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार।
0: कैसे हो साहब? राधे राधे।
1: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं आप?
0: जितेंद्र कुमार लोबन मथुरा से बोल रहे हैं हम।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
0: अच्छा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।
1: क्या हाल चाल है सर आपका?
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर। आज तो पहली बार कॉल मिला है हमारा जो है।
1: अरे बहुत विशेष स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका।
0: कृपा करिए, कुंज बिहारी है हमारा लल्लू है, इससे भी थोड़ी बात हो जाएगी क्या?
1: जी बिल्कुल हो जाएगी। हेलो नमस्ते।
0: चारों धामों से निराला ब्रज धाम।
1: अच्छा, ये आप दोनों की फरमाइश है। हमारा कार्यक्रम आप लगातार सुनते हैं?
0: बरकरार बरकरार सर, सन 2000 से बहुत पहले से सुन रहे हैं हम तो।
1: जी जी, फोन करते रहा करिए।
0: लगता हमारा नहीं है, हम भी है श्रोता, तो जब ही है जब मिल जाए हमारा साहब।
1: नहीं नहीं, फोन की तो बात अलग हुई, लगे या न लगे वो तो चांस की बात है, लेकिन श्रोता तो आप हैं ही।
0: श्रोता तो शुरू से ही रहे साहब, हमारे पिताजी ट्रांजेक्शन पर रेडियो पर सुनते थे आकाशवाणी को।
1: सम्माननीय है आप हमारे। जितेंद्र जी, आपकी पसंद का ये गीत आइए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: ओके साहब, राधे राधे।
1: राधे राधे।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपसे बात करेंगे गणेश चतुर्थी के विषय पर। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी हमारे देश में वैसे तो कई जगह हर प्रदेश में मनाई जाती है और हमारे यहाँ कई पर्व और त्यौहार भी मनाए जाते हैं। उनमें से ही एक गणेश चतुर्थी का पर्व है जिसे हमारे भारत देश में बहुत ही श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्रोताओं, भगवान गणेश सनातन धर्म में सुख शांति समृद्धि और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य पूजा या अनुष्ठान में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें प्रथम पूज्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार उन्हें यह वरदान प्राप्त है कि उनकी आराधना के बिना कोई भी मांगलिक कार्य सफल नहीं हो सकता। वे हमारे जीवन से सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं।

श्रोताओ, भगवान गणेश की पूजा भारत के सभी राज्यों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ की जाती है। वैसे तो यह पर्व पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसे मनाने के तरीके और वहाँ की सांस्कृतिक झलक बेहद अनोखी होती है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, तो वो इसका मुख्य केंद्र है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। मुंबई का लाल बाग चौराहा पंडाल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और बात करें हम दक्षिण भारत की, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले उनकी माता गौरी की पूजा की जाती है। हैदराबाद में हर साल भारत की सबसे ऊंची गणेश मूर्तियों में से एक स्थापित की जाती है। दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक रूप से मिट्टी के छोटे गणेश जी बनाकर घर घर में पूजे जाते हैं। दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक रूप से बहुत ही अच्छी तरह से गणेश जी को पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें जो है भोग लगाया जाता है। और अब बात कर लेते हैं गोवा की, तो इस त्यौहार को चावत कहा जाता है वहाँ। यहाँ पर पूरी तरह से एक पारिवारिक उत्सव होता है। गणेश जी की मूर्ति के ऊपर लकड़ी के फ्रेम पर विभिन्न प्रकार के स्थानीय फल फूल और औषधीय पौधे लटकाए जाते हैं, जिसे माटोली कहते हैं।

श्रुता, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं गणेश चतुर्थी पर, और शाम को भजन कीर्तन और झांकियों का आयोजन होता है। भगवान गणेश को मुख्य रूप से मोदक और लड्डू का भोग लगाया जाता है। इन्हें मोदक सबसे अधिक प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें मोदक प्रिय भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें बूंदी के लड्डू, मखाने की खीर और केले का भी भोग लगाया जाता है। श्रोताओं, भगवान गणेश बहुत ही दयालु और प्रथम पूजनीय देव हैं। बहुत छोटी सी और सरल सेवा से भी वो अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं।

श्रोताओ, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे अनूठा और महान देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग प्रेम के साथ रहते हैं। और अगर हम बात करें एक भाषा के रूप में हिंदी की, तो हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन, मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेक्षक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में 30

से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी एक विशेष स्थान रखती है। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है, लेकिन हिंदी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी न बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकते लगते हैं। इसीलिए सरकार का और हम सब का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल हम सब तैयार करें। श्रोताओं, राजभाषा हिंदी के विकास के लिए खास तौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हों। इसी कड़ी में राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, यानी कि कल के दिन, हिंदी दिवस समारोह का आयोजन हर जगह किया जाता है।

श्रोताओं, हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायने में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी जन आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। श्रोताओं, भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी है, इसीलिए इसको एक दूसरे में प्रचारित करना चाहिए। इस कारण हिंदी दिवस के दिन उन सभी से हम सब निवेदन कर सकते हैं कि वह अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का प्रयोग करें। हिंदी भाषा के प्रसार के में पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय थे गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्मी कव्वालियाँ।

भूपेंद्र सिंह, अभिजीत और सोनू निगम की आवाज़ों में अभी आपने सुनी ये कव्वाली। फिल्म का नाम था शोले। कार्यक्रम की अगली कव्वाली आइए सुनते हैं सोनू निगम और भरत जोशी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चांदी सोना।

0: हम किसी से कम नहीं, कम
1: नहीं। सोनू निगम और बेला सुलाखी की आवाज में अभी आपने सुनी ये कव्वाली। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं।

0: नुसरत फ़तेह अली खान और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुनी है कव्वाली, फिल्म का नाम था धड़कन। और इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्मी कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: किधर है?
2: बेटी का नया अकाउंट और मेरा KYC अपडेट,
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर KYC डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो KYC या आधार OTP बेस्ड eKYC से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: RBI कहता है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: भाभी ये पकौड़ी तो बहुत टेस्टी है।
1: बाजरे की पकौड़ी है।
2: बाजरे की पकौड़ी, वाह।
1: लोगों को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसे श्री अन्न के व्यंजन अपनाना चाहिए, क्योंकि यह पोषक तत्वों, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होते हैं और पाचन सुधार में मदद करते हैं।
2: अच्छा भाभी,
1: श्री अन्न से रोटी, दलिया, खिचड़ी, लड्डू, पोहा आदि बना सकते हैं।
3: श्री अन्न अपनाए, स्वास्थ्य बनाए।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने उप कृषि निदेशक से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: आइए सुनते हैं ब्रजलोक गीत के कार्यक्रम के अंतर्गत रांझा गायन। कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी।
6: बेटा मैं तेरी माँ हूँ, और जब तेरे पिताजी को इंतकाल भयो तो बोले भाई हम तो जा रहे हैं, मगर हमारे रांझे का ब्याह छह भाई मिल करके इतनी शान शौकत से करें कि मेरा मरने के बाद भी नाम हुए। तो रांझो क्या कह रहे हो मैया से।

हे बेटा, छह भैयन को ब्याह तेरे पिताजी कर गए। मैंने छह बहुअन को खूब आनंद लियो, खूब सेवा करवाई। आ गई समर, मैंने बेटा तेरो तो कछु ना दे। बोले हाँ मैया, कोई बात ना है, मगर सुन मेरी बात।

मैया भी ना मनावे में आ रही और भैया भौजाई तो पीछे रह गए और रांझे को समय व्यतीत हो तो जा रो है। तो आज एक बात बता देना चाहते हैं हम सामाजिकता में कि सबसे पहले अगर हमारे ऊपर कोई आफत मुसीबत आए तो अपनों बल अजमा में, फिर भैयन को बल अजमा में, फिर अड़ोसी पड़ोसी इनको बल अजमा में, और फिर भैया ब्याज पे ले आवे पैसा, बाके बाद भी कोई फायदा नहीं हो तो फिर हम मालिक की इबादत में लग जाएं कि हे मालिक तू ही हमारो रखैया है और तू ही हमारी लाज को बचैया है, कैसे बचा मेरे मालिक। तो जाते पहले ही क्यों ना भैया ठाकुर जी की शरण में, अल्लाह ताला की शरण में पहुंच जाओ। इसी तरह से रांझे से हमको एक ये सीख मिलती है, छोटे से छोटो और बड़े से बड़ो काम मालिक के बिना माने कियो ही नहीं। अभी तक आप रांझो बहुत देर से सुन रहे हो मेरे श्रोताओ, तो रांझो मालिक को याद करे है तो कैसे करे।

पीर कहवे लगे रांझे, अगर हम अपनी चमड़ी उधेड़ करके और मैया को चप्पल बनवा के पहनवा दें तो भी हमारो कर्ज ना उतर सके, और तू हाथ जोड़ करके विनती करके मैया दूध बकसवे की बात कर, दूध बकस देगी मैया। इतनी कह कर के और पीर रूपोस है गए तो रांझो क्या कर रो है, मैया के सामने जा करके और घोटू टेक करके बैठ गए और मैया से कह रहे हो

मेरे प्यारे श्रोताओं, छह बहू खड़ी हैं, छह बेटा खड़े हैं और बुढ़िया जमीन पे गिर गई है, मगर वारे पत्थल दिल लांझे, ना तो रांझे ने मैया को उठायो ना देखो और ना छो भैया भौजाइन ने मैया को देखो। जब मैया को 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा के बाद में जब श्रोता होश आवे तो बुढ़िया डंडा के सहारे से खड़ी भई है और क्या कह रही है रांझे से।

सज्जनों, छयो भैया भौजाई और मैया महल को चल देते हैं। और जब महल में आए, पहली ड्योड़ी पे जैसे ही कदम रखो तो चनुआ खड़ो भयो, आंखन में आंसू और दादी के पास लिपट करके, और क्या कह रो चनुआ,

श्रोताओं, चनुआ ने दादी से झटका मार करके हाथ छोड़ायो और सीधो जो है खेतनी खेतन खेतनी खेतन और वही दगरे में पहुंच जाए जहां में रांझो गुजरेगो। तो बिन्ने की मैं एक पेड़ की आड़ में चनुआ खड़ो है गयो है कि चाचा आएगो तो मैं बाकी पाम पकड़ लूंगो और मोए संग ले जाएगो। धीरे धीरे समय गुजरतो गयो, आगे रांझो और पीछे फक्कड़ और भूरो भैंसा चले आ रहे हैं। तो चनुआ ने चाचा से लिपट के और चनुआ क्या कह रहा,

जनों रांझे ने चनुआ को लाल प्यार दुलार से खूब समझायो, मगर चनुआ एक ना मानो तो रांझो क्या करता है।

सज्जनों, दोबारा फिर चनुआ में मार लगाई जैसी पहले लगाई, और मार लगाते लगाते चनुआ बेहोश है करके दगरे में गिर पड़ो है। मगर वारे बेदर्दी रांझे, रांझे ने क्या काम कियो कि पेड़ के सहारे खड़ो करके और बाके सिर पे से सेला खोल करके और पेड़ ते बांध दियो। भैया बोले, बाबा हम यहाँ के बादशाह हैं, कोई गैल हारो निकर के जाएगो तो जाए, खोल देगो सबरो गाम, जाने तो है ही कि जे चनुआ है। चल बाबा। तो फक्कड़ और रांझा दोनों चल देते हैं।

ये वो राजा है, इसके तन बदन में आग लग रही है कि कैसे भी हीर से मिला जाए, और जब हीर मिल जाएगी तो उसकी सारी अग्नि शांत हो जाएगी। तो बाबा रांझे से का कह रहे है,

सज्जनों, बाबा ने वजू करके और बाबा तो एकांत में नमाज पढ़वे को मालिक की इबादत करवे बैठ गयो और रांझो ये बोई सतलज नदी है।

उधर से जो बाबा आया था, दोनों वहीं पार पे आ चुके हैं। और जब रांझो नदिया में बजू करवे के ताई गयो तो क्या देख रो है, जो चनुआ भतीजो वो वा पेड़ ते बांध के जो रांझो आयो, बाकी भैया जो करके नार लटक गई, तो रांझे के रोंगटे खड़े हो गए और बाबा से का कह रो है।

0: अभी आप सुन रहे थे रांझा गायन, कलाकार थे।
1: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
2: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
2: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाखस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और

0: की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

संध्या 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम श्रीलंका के मध्य खेले जाने वाले फाइनल में क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल आप मैच की समाप्ति तक सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर आप सुनेंगे संजीव कुमार शर्मा की लिखी हुई झलकी बबूल का पेड़। प्रस्तुति आर के पोद्दार की होगी।

दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति ओपी सिंह और संजय सारस्वत की होगी।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपराह्न 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज की बात होगी, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें और मातृभाषा का सम्मान और संवर्धन करें विषयों पर।

संध्या 6:50 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें चर्चा होगी बीजोपचार का महत्व और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन विषयों पर।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:23 पर। फिल्म संगीत श्रोता रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर भी सुन सकेंगे। रात्रि 9:30 पर प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं इस मास का गीत, बोल है अपनी बोली प्यारी बोली। गीत लिखा है यतीन्द्र चतुर्वेदी ने, संगीत सुरेश गुप्ता का है। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में ये गीत।
1: आइए सुने संजीव कुमार शर्मा की लिखी और आर के पोद्दार द्वारा।

अभी आप सुन रहे थे इस मास का गीत समवेत स्वरों में। गीत लिखा था यतिंद्र चतुर्वेदी ने, संगीत दिया था सुरेश गुप्ता ने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं संजीव कुमार शर्मा की लिखी हुई झलकी बबूल का पेड़। प्रस्तुति आर के पोद्दार की है।

0: क्या भीड़ लगा रखी है? क्या गड़बड़ है? क्या हुआ?
1: थानेदार साहब, यह कॉलेज के लड़के हैं, रोज जबरदस्ती हमारी बस में चढ़ जाते हैं। आज तो इन्होंने मार पिटाई भी की, इन साहब को बहुत मारा।
2: हमने नहीं मारा, झूठ बोलता है
3: ये। झूठ बोलते हैं थानेदार साहब, ये सब बस में चढ़ गए, मुसाफिरों को उठाने लगे, मैंने रोका तो मुझे मारा, ये देखिए।
0: हवलदार, इन सबको थाने ले चलो।
2: हम सब यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे प्रिंसिपल साहब नहीं आ जाते।
4: लो, प्रिंसिपल साहब आ गए।
5: क्या बात है?
0: नमस्ते प्रिंसिपल साहब।
5: नमस्ते। मेरे स्टूडेंट ने आकर मुझे अभी खबर दी है कि ड्राइवर और मुसाफिरों ने मिलकर स्टूडेंट को मारा।
1: ये गलत है साहब, आप मुसाफिरों से पूछ लीजिए।
2: ये बकता है सर।
0: जानते हो ये कौन है? कॉलेज के प्रिंसिपल। इस रूट पर गाड़ी चलानी है और गाड़ी में आग नहीं लगवानी तो माफी मांगो।
6: कमाल है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। एक तो जबरदस्ती बस में चढ़े।
5: ये जबरदस्ती बस में चढ़ेंगे, 10-10, 15-15 मील से आते हैं, इन्हें भी कॉलेज वक्त पर पहुंचना होता है। इनके पास क्या कार या स्कूटर है?
0: ड्राइवर के बच्चे, माफी मांगनी है, ले चलो थाने।
1: माफ कर दो साहब,
6: मगर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। ये देखिए घाव, इन्होंने मुझे मारा है।
0: अस्पताल जाकर मुआयना कराओ, तब रिपोर्ट लिखी जाएगी। चलो लोगों बस में। तू भी तो कभी स्टूडेंट रहा होगा, याद कर अपने वो दिन। ड्राइवर, जीप चलाओ।

0: अरे यह क्या हुआ?
1: कुछ नहीं।
0: यह खून कैसा? किसी से लड़ाई हुई?
1: हाँ।
0: किससे?
1: स्टूडेंट पावर से, युवा शक्ति से।
2: क्या रणवीर आ गया?
0: हाँ जी।
2: यह क्या
1: झगड़ा बस में? कॉलेज के लड़के चढ़ गए थे, लड़के ड्राइवर को मारने लगे।
2: और तुम उनके झगड़े में पड़ गए? वे तो राष्ट्रीय कॉलेज के लड़के हैं।
1: उन्होंने पत्थर मारकर बस रुकवाई, जबरदस्ती घुसे और सवारियों को उठाने लगे।
2: कॉलेज तो खोल दिया मगर बसों का इंतजाम नहीं किया।

0: उम्मीर गुरु, इन साले बस वालों को ठीक करना पड़ेगा। बहुत सिर पर चढ़ गए हैं। इनकी हिम्मत तो देखो, हमारे लड़कों से हाथापाई की।
1: तो पकड़ लो कल और पेट्रोल की टंकी में चीथड़ा डालकर दिखा दो दिया सलाई।
0: पर प्रिंसिपल से तो पूछो।
1: जब हमने कह दिया तो प्रिंसिपल क्या कहेगा? कॉलेज उसके नहीं, अपुन के दम से चलता है।
0: फिर गुरु, अब के हमें पास करा दो, पिछले साल तो हम रह गए।
1: अबे, हम 3 साल में पास हुए हैं, तू 2 साल में ही पास होना चाहता है? तेरे बाप की क्या माँ मर गई है जो फीस नहीं दे सकता? अबे, पास होकर गांव में पड़ा सड़ेगा, कॉलेज का आनंद नहीं मिलेगा फिर। नमस्ते वार्डन साहब।
2: नमस्ते। हम भी तुम गया नहीं
1: कहां?
2: हम तुमको हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया।
1: हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला।
2: या क्या, और इस पर तुम्हारा दस्तखत भी? जी
1: कहां है, ला दिखा।
2: देखो जी, तुमने फाइल फाड़ दिया जी।
1: तुझे भी फाड़ कर रख दूंगा, अपने आपे में रह।
2: मैं तेरे को निकलवा कर रहूंगा जी।
1: ओए, वो जो तेरी बेटी है बड़ी सज धज के निकलती है, एक दिन उठा लूंगा तो पता ना लगेगा कहां गई।
2: मुझे धमकी देता, चलो प्रिंसिपल के पास।
1: उससे हथेली लगवानी है, लगवा ले, चल चल।
3: राम राम प्रिंसिपल साहब।
4: आइए आइए मुरलीलाल जी, बैठिए।
3: अजी क्या बैठे प्रिंसिपल साहब, हमारा तो ये लौंडा हमारे कर्म में जाने कहां से लिख गया। साले को 3 साल हो गए 10वीं में, भैंसे की तरह अड़ गया है, पास होके ही ना देता।
4: भैंसे की तरह? पर आपको आपको पास करा के क्या करना है? सीमेंट की बोरी बिकवानी है, रेत मिला के बेचता रहेगा।
3: ब्याह ना करना उस गधे का? अब बेपढ़े लिखे को कोई लौंडिया भी तो ना देता। अजी साहब, और दे भी तो टिकती है क्या? अजी मैं तो ये सोचूं, पास हो जाए तो 2 लाख मेरे गले में आ जाए।
4: 2 लाख?
3: अजी 3 भी मिल जाए सरकार, पर इस ससुरे की खोपड़ी में तो भूसा भरा है। 10 दफा तो कक्षा में फेल हुआ, 3 दफे जन्म तिथि बदलवा चुका हूं, अब प्राइवेट इम्तिहान दिला रहा हूं। ऐसा है, पैसे देकर तुम्हारा सेंटर रखवा देता हूं। अजी इम्तिहान के पर्चे के साथ किताब भी इसके हाथ में थमा देना। कर लेगा ससुरा, मेरे गले का मरा सांप भी निकल जाएगा।
4: इम्तिहान के कमरे में इनविजिलेटर होते हैं।
3: अजी कुछ उसे भी खिला देना।
4: ऐसे कह रहे हो जैसे गाय को लोई खिलानी हो।
3: अजी बात तो यह है कि गाय को भी कोई लोई ऐसे ही नहीं खिलाता।
4: फिर तो खिला देंगे। 2 लाख का 2% 20,000।
3: अजी कहीं वो इतना खावे है?
4: कुछ इनविजिलेटर को भी दे देंगे, बाकी जाएगा फंड में। और फिर लड़कों के लिए बसें भी चाहिए, रोज लड़ाई होती रहती है।
3: खैर कल भिजवा दूं।
4: जिस कमरे में बैठवाना है उसमें 10 सीटें हैं, कल की राम जाने।
3: अजी राम क्या जाने, जानना तो मुझे है, आज ही भिजवाता हूं।
2: मैं आई कामाना सर जी।
4: आइए आइए वार्डन साहब। अरे उम्मीर तुम?
1: ये वार्डन बोले चलो प्रिंसिपल साहब के पास, हमने कहा ले चल।
2: सारा जी मैंने नोटिस दिया था, अभी तक हॉस्टल में रह रहा जी, जब की पढ़ाई खत्म हुआ है 1 साल हो गया जी।
4: इन्हें मैंने रोका है।
5: उम्मीर तुम जरा बाहर जाओ, मैं अभी आता हूं, तुमसे जरा जरूरी बात करनी है।
4: इस कॉलेज में बिगड़े जमींदारों के और देहातों से लड़के आते हैं जो लठ की भाषा समझते हैं, इन्हें कामों में रखना मेरे और आपके बस में नहीं।

0: और फिर स्टूडेंट यूनियन को भी हाथ में रखना है, वो हाथ में न रहे तो एक दिन कॉलेज नहीं चल सकता।
1: लेकिन सर जी, यह रूल के खिलाफ है ना, लड़कों को कमरा नहीं मिल रहा, और कभी ये बिजली उड़ा देता तो कभी लड़ाई दंगा करता, दिन से लड़कों की पढ़ाई टिक डिंग से नहीं होता जी।
0: पढ़ना किसको है, आप देख रहे हैं, हुक्का पीना है, ताश खेलना है और फिल्मी गाने सुनने हैं। 10-20 को पढ़ना है, मोमबत्ती जलाकर पढ़ लेंगे या फिर दिन में पढ़ लेंगे। चिंता मत कीजिए, उन्हें अच्छे नंबर दिलवा देंगे। बाकी की चिंता आप मत करें।
1: सारा जी, इस ओमवीर ने धमकी दिया कि मेरी लड़की।
0: अरे नहीं, ये नहीं होगा। आप आइए, आपके सामने कहता हूं। अरे ओमवीर
2: जी सर।
0: भाई, देखो देखो, तुम बार्नर साहब को कुछ नहीं कहोगे। सिफारिशियों के बीच एक यही है जिनके दम पर हम ग्रांट लाते हैं। मेरी न कर पर इनकी इज्जत करना। बाड़न साहब, आप जाइए, इसने जो कहा उसे भूल जाइए। ओमवीर, चलो आओ तुम। ओमवीर, ये सामने के खेत देख रहे हो? मैं इन्हें खरीदना चाहता हूं, पर वो इसे बेच नहीं रहा है।
2: पर आप इसका क्या करेंगे सर?
0: देखो ओमवीर, मुझे भी घर चलाना है। कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर मुझसे ज्यादा भूखे हैं, इसलिए कॉलेज के पैसों का ज्यादा गमन नहीं कर सकता। करूं तो कभी ना कभी मारा जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं ये सामने वाले खेत खरीद लूं। तुम किसानों को बेचने पर मजबूर कर दो, वहां दुकानें बना दूंगा, तो कॉलेज के पैसों से मेरी नजर हट जाएगी।
2: तो नजर हटी समझिए, जमीन मिल जाएगी। सर, अब चलता हूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा।

0: कौन है भाई? अरे भाई कौन है?
1: हजूर दरवाजा खोलिए, हम हैं गोपाल।
0: गोपाल? क्या बात है, इतनी रात को कैसे?
2: सरकार, आपके कॉलेज के सामने हमारी जमीन है ना, कॉलेज के लड़के हमारी खेती को उजाड़ते हैं सरकार। आज ओमबी ने खलियान में आग लगा दी सरकार, सब जल गया, बर्बाद हो गई सरकार, हम लुट गए
0: तुमने उसको आग लगाते देखा?
2: सरकार। जी सरकार, आग लगाकर भाग रहा था।
0: कोई गवाह है बदमाश कहीं का? अगर उसको पता चल गया तो तुझे जान से मार देगा, समझे?
2: ठीक कह दिए सरकार, जाता हूँ सरकार, जाता हूँ
3: अरे शीला, मुन्नी पढ़ रही है या सो गई? भाई परीक्षा नजदीक है, जाने क्या करती रहती है वो।
4: कुछ कहा आपने?
3: मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा ध्यान बच्चों पर है या नहीं? मुन्नी पढ़ रही है या सो गई?
4: मुन्नी? वह तो शाम को ही सहेली के यहाँ जाने को कहकर गई थी, अभी कहाँ लौटी है?
3: इस घर का भगवान ही मालिक है, जिसके जो जी में आए करे। मैं चला सोने,

0: शीला, शीला कहाँ हो?
1: क्या है, क्या कह रहे हो?
0: हम लुट गए, हमारी मुन्नी मर गई शीला।
1: हमारी मुन्नी मर गई? कैसे मर गई? मेरी बेटी, बताइए ना।
2: सर जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, धैर्य रखिए जी, धैर्य रखिए। जरा अखबार देखूं, कल रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक कॉलेज के प्रिंसिपल की लड़की को आग में जलाकर मार डाला। पुलिस का अनुमान है कि लड़की से बलात्कार करने के बाद उसको आग के हवाले किया गया।

0: पुलिस का भरोसा कि अपराधी को शीघ्र पकड़ लिया जाएगा।
1: बार्डन साहब, आज की खबर पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। कल रात राष्ट्रीय कॉलेज के सामने एक खेत में खड़ी खलियान में आग लगाकर भागने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर थाने पहुंचा दिया। युवक का नाम ओमवीर है, जो इसी कॉलेज का छात्र है।
0: भाई कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यह लड़का तो सात्र बदमाश है, लेकिन जब हम स्वयं बदमाश को तरजी देगा तो आज किसी और के साथ गलत करता तो कल मेरे साथ भी कर सकता।
1: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बार्डन साहब, इस पेड़ को तो प्रिंसिपल साहब ने ही खाद पानी देकर बड़ा किया है, नहीं तो आज इनको यह दिन देखना ना पड़ता। कल तक तो ये लड़का दूसरों को सताता था, आज इन्हीं पर हाथ साफ कर गया।

0: आप सुन रहे थे संजीव कुमार शर्मा की लिखी झलकी बबूल का पेड़। इसमें भाग लिया था प्रदीप शर्मा, नीरज तिवारी, राजेश दीक्षित, नवशील भटनागर, रमेश चंद्र, सत्यपाल सिंह, सुषमा भार्गव, शीला रोहतगी, सुरेंद्र तोमर और ब्रजभूषण चतुर्वेदी ने। आलेख संजीव कुमार शर्मा का था और प्रस्तुति आरके पोद्दार की थी।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति OP सिंह और संजय सारस्वत की है।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। और आज एक बार हमारे साथ हैं ओपी सिंह जी।
1: संजय भाई नमस्कार, सभी श्रोताओं का नमस्कार करता हूँ, चाहे वो पत्र के माध्यम से जुड़ते हैं, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से जुड़ते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। और एक लंबी कतार रहती है हमारे श्रोताओं के सुझावों की भी, और जो खट्टी मीठी शिकायतें उनका भी हम बेसब्री से इसलिए इंतजार करते हैं कि उनके माध्यम से हमें निश्चित तौर पर ये पता लगता है कि श्रोता हमसे क्या
0: जब
1: चाहते
0: तक हम
1: हैं।
0: स्टूडियो में आते हैं सर, उससे पहले ही रिंग बजनी शुरू हो जाती है।
1: जी जी जी मैं सोचता हूँ कि पहले से उठा लिया जाए।
0: आज फोन आना शुरू हो गए हैं सर, पहली फोन कॉल लेते हैं। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: संजय सारस्वत जी को सुरेंद्र सिंह सिसोदिया गांव छठीगरा से नमस्कार करता हूँ।
0: नमस्कार सिसोदिया जी, हमारे साथ आज सिंह साहब हैं।
2: ओम प्रकाश जी आपको नमस्कार,
1: प्रणाम कर रहा हूँ सिसोदिया जी। बिल्कुल
2: इतना बड़ा आदमी नहीं हो सर, प्रणाम को नमस्कार ही बहुत है। राधे राधे।
1: प्रणाम तो छोटा हो या बड़ा हो तो बनता है सबको, क्योंकि हम सबके अंदर प्रणव बैठा हुआ है, उसको हम प्रणाम करते हैं।
2: सही बात है जी, आपकी सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारा आपका एक स्नेह है,
1: भारतीय संस्कृति का अभिवादन वाक्य ऐसे ही नहीं आया, प्रणाम हो नमस्ते हो, हम अपने और आपके अंदर बैठे हुए उस अस्तित्व को नमस्ते करते हैं।
2: नहीं बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल महोदय जी सही बात है, हमारे यहाँ तो राधे राधे प्रणाम ही चलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा आपका जो अनुभव है बताइए कार्यक्रमों को लेकर के।
2: कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय, कोई हमें शिकायत केवल ये है कि थोड़ा प्रसारण में कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है,
1: मतलब क्वालिटी
2: थोड़ा बंद हो जाते हैं, कभी समय पर कार्यक्रम के समय पर बंद हो जाते हैं, गड़बड़ी आ जाती है।
1: अच्छा, वो कई बार नेट प्रॉब्लम हो जाती है तो उस वजह से हो जाता है। बाकी हम आपकी सेवा ठीक से कर पा रहे हैं?
2: नहीं, बात सेवा ठीक से कर पा रहे हैं सर। एक सुझाव यहाँ देना चाहूंगा आपको।
1: हाँ स्वागत है
2: सर। जो शाम की जो सभा है उसको थोड़ा सा आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए, 5:30 के स्थान पर 5 बजे प्रारंभ हो तो कैसा रहेगा।
1: चलिए ठीक है, इस पर गौर करेंगे और संभव होगा तो जरूर सोचेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
2: बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल।
1: आपने फोन किया, इसके लिए धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद जी, नमस्कार सर।

0: प्रणाम
1: श्रोता सर ये चाहते हैं कि
0: जी
1: ज्यादा से ज्यादा हम उनके बीच रहें।
0: जी जी तो और ये हमारे और आपके प्रति, संस्था के प्रति और रेडियो के प्रति लोगों का नेह है,
1: बहुत स्नेह है
0: प्रेम
1: सर।
0: है, प्यार है कि
1: जी
0: वो
1: जी
0: जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन जैसा
1: कोशिश
0: आप
1: यही रहती है उनकी कि कैसे ही फोन इन प्रोग्राम में जुड़ जाएं,
0: हाँ
1: व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं, किसी तरीके से मतलब संपर्क बना रहे।
0: एक बार संवाद हो जाए, संवाद हो जाए।
1: हाँ
0: और ये आप लोगों की मेहनत है कि आप लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि
1: पूरी
0: कार्यक्रम में श्रोता तभी जुड़ता है जब आप दिल से उसके लिए कुछ लेकर के आ रहे हैं। देखिए एक फोन आ
1: सर
0: रहा
1: एक
0: है,
1: फोन आ रहा है। जी
0: बात कर
1: जी
0: लेते। हेलो राधे राधे साहब
1: कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राधे राधे,
0: जी,
1: कौन बोल
0: रामेश्वर
1: रहे हैं?
0: बोल रहा हूँ साहब, गांव परखम गुजर से।
1: बहुत स्वागत
0: जी
1: है कार्यक्रम में, बताइए।
0: आपके कार्यक्रम सुन के साहब आनंद आ रहा हूँ।
1: अरे
0: जी,
1: वाह
0: कैसे
1: वाह।
0: हो रामेश्वर जी, बढ़िया लग रहा है आपको?
1: हाँ जी, कितना आनंद आ रहा हूँ साहब, टेंशन ही खत्म है गई ये मान लो।
0: क्या
1: अरे
0: बात
1: इससे
0: तो
1: बढ़िया कौन सी बात होती है।
0: मैं 6 बजे से,
1: हाँ
0: और यू मान लो दिन भर कार्यक्रम में आनंद बढ़ रहा है, फिर से मैं आनंद बढ़ रहा हूँ जो समझ। तो ब्रज तो है ही आनंद की चीज जो है, और उसमें रेडियो आपका संगी साथी बन रहा है कार्यक्रमों के
1: हाँ
0: माध्यम से, कुछ सलाह के माध्यम से। जैसा रेडियो का सारस्वत जी
1: जी जी
0: एक ध्येय वाक्य है कि
1: देव
0: भैया
1: वाक्य
0: हम
1: है,
0: उसको एजुकेशन देंगे, शिक्षा, मनोरंजन और जानकारी।
1: सब चीज।
0: हम यू मान लियो साहब, एक रांझा कार्यक्रम आ रहा हो 12:30 बजे, रांझा गायन। अच्छा
1: जी
0: लग रहा है आपको?
1: अरे साहब जो मान लो भैंस दोरन की बीमारी और खत्म है जा रहा था सुन गए थे।
0: यही
1: वाह वाह
0: इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य है कि भाई रांझा गायन जो हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा है, लोक जीवन का हिस्सा है और लोगों के बीच की विधा है, और चूंकि अब ये खत्म हो रही है तो जो हमारे जो कलाकार हैं बड़े मनुहार के बाद उन्होंने आकाशवाणी के लिए कुछ एपिसोड रिकॉर्ड कराए, तो और आगे भी हमारा ये वो रहेगा कि रांझे से जुड़ी और भी जो कहानियां हैं वो आप तक पहुंचे, चाहे कलाकार कोई भी हो,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल जी
0: राजा ढोला और आला जो हमारी विधाएं खत्म हो रही हैं रामेश्वर जी, उनको आप तक फिर से पहुंचाया जाए।
1: मैं मिट्टी को काम करूं साहब, से दिन भर आपको कार्यक्रम सुनूं, चाक चलते रहे, मिट्टी के दीपक बनाऊं।
0: अरे वाह
1: अरे
0: वाह,
1: वाह क्या बात।
0: आप तो विश्वकर्मा वाला काम कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: सृष्टि सृजन का काम कर रहे हैं रामेश्वर जी। आपने
1: और
0: फोन
1: सर
0: किया, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ और कहना चाह रहे हैं?
1: इतना ही बोलेंगे साहब।
0: चलिए
1: राधे
0: सुनते
1: राधे
0: रहिए और फोन करते रहिए हमें।
1: राधे राधे
0: राधे
1: राधे
0: राधे।
1: राधे साहब, इतने भाव विभोर हो रहे थे हमारे श्रोता। ये
0: जी,
1: पुरानी विधाएं सर इतनी संपन्न हैं अपने आप में कि सुन के आत्मा को बड़ी तसल्ली मिलती है।
0: संजय भाई, लोक जीवन जो है वो जुड़ाव का ही मतलब है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: चाहे संबंधों का जुड़ाव हो, चाहे हम एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भरता हो,
1: जी,
0: जुड़ाव महत्वपूर्ण है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: संबंधों का, भाव का, कार्य का, एक
1: जी
0: दूसरे
1: जी
0: के ऊपर मदद का।
1: कुछ
0: तो
1: रोजमर्रा की सी जिंदगी की बातें जब होती हैं ना,
0: जी,
1: तो आदमी अपने आप को उनसे जोड़ लेता
0: जोड़
1: है।
0: लेते,
1: हाँ
0: अपनापन महसूस होता है।
1: हाँ
0: तो यही लोक संस्कृति है, यही लोक जीवन है, यही लोकगीत है। तो अब जो राजा गायन हुआ, ढोला गायन हुआ,
1: जी जी
0: नौटंकी हुई,
1: हमारा रेडियो ही
0: स्वांग
1: एक
0: हुए।
1: ऐसा माध्यम है सर
0: जी
1: जो इन विधाओं को जीवित रखने की बहुत कोशिश कर रहा
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप
1: अपने
0: को
1: आप को उसमें
0: कि
1: जुड़े
0: ऐसी
1: हैं।
0: संस्था में हम काम कर रहे हैं,
1: जी
0: लोगों
1: जी
0: के बीच काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन से जुड़ी चीजों पे काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर
0: तो क्योंकि काम तो कोई भी खराब नहीं होता, सब
1: जी।
0: महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा है, कि काम भी करें और लोक जीवन से, लोक संस्कृति से अच्छा, जिसको मतलब करके अच्छा लग रहा
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो ये हम
1: हमको भी
0: सौभाग्य।
1: अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी और अच्छा लगता है।
0: और देखो ये इसी तरह की एक जो SMS आया है, व्हाट्सएप संदेश है
1: जी सर
0: प्रकाश राय जी का,
1: जी जी
0: वो ही पुरानी वाली बात को ये फिर दोहरा रहे हैं कि आप सिर्फ बातें ही करते रहेंगे या हमारी
1: शिकायत
0: फरमाइश भी पूरी करेंगे। तो इनको
1: भी
0: फिर
1: कर रहे
0: से
1: हैं।
0: दिलासा हम दे रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इंतजार करिए,
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: अच्छे कार्यक्रमों के साथ हम आएंगे, और उसमें उन कार्यक्रमों के बीच में ब्रज हमारे केंद्रीय भूमिका में होगा,
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: होगा
0: वो ब्रज 84 कोस की हम बात करें, चाहे ब्रज 84 कोस के लोक जीवन की बात करें, ये जो अपना ये रास्ते जिंदगी के भी लोक जीवन से जुड़ा हुआ था
1: बिल्कुल। और
0: कि
1: क्या
0: हमारे जीवन में क्या हो रहा है,
1: सही बात।

0: उसको हम लेकर के आते थे। तो आएंगे, प्रकाश राय जी को हम आश्वासन नहीं दे रहे बल्कि ठोस वो कर रहे हैं कि आएंगे।
1: विश्वास दिला रहे
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ अच्छे कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे और
1: जी।
0: इनको भी इस यात्रा का सहभागी बनाएंगे, ये हमारा इनसे वायदा है। पत्र तो आपके सामने भी पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो पढ़ लें जब तक हमारे कोई कॉल आता है उसमें।
1: जी ये एक पत्र आया है सर, नगला कुम्हेरिया दतिया गोवर्धन रोड मथुरा से। सर
0: जी
1: हमारे श्रोता हैं राधेश्याम कुंतल, रेवती कुंतल, हरविलास, डब्बू, बबलू और इनके सभी परिवारीजन। इन्होंने सर अभी जो जन्माष्टमी का प्रसारण
0: जी कमेंट्री में।
1: हुआ हमारे यहाँ
0: हाँ
1: से सजीव, उसकी बड़ी तारीफ लिख के भेजी है सर इन्होंने, और लिख के भेजा है कि हम हर साल आपके यहाँ से सजीव प्रसारण सुनते हैं। टीवी पे तो लोग देखते ही
0: देखते
1: हैं,
0: ही हैं, बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: रेडियो की कमेंट्री सुनने का आनंद ही कुछ और
0: जी
1: है।
0: जी जी और इस बार ये कार्यक्रम अच्छे से हुआ, लोगों तक आया, इस तरह की एक दो भावनाएं और भी आई थी। प्रकाश राय जी ने भी इस बात को लिखा है अपने इसमें
1: जी
0: व्हाट्सएप
1: जी
0: मैसेज में दूसरे नंबर पे कि आपने हमें कमेंट्री सुनवाई,
1: जी सर
0: अच्छे से सुनवाई, अच्छा चित्रण था, क्योंकि रेडियो तो शब्द चित्रण करता है, तो
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: शब्द चित्रण इनको पसंद आया है, इस पर भी इनको हम धन्यवाद दे देते हैं।
1: वो पूरे टीम का इतना जबरदस्त सहयोगी वर्क होता
0: जी
1: है।
0: जी जी और उसमें कई दिनों से तैयारियां करते हैं लोग,
1: जी
0: को
1: जी
0: लिखते हैं, भले ही सामने हो रहा है लेकिन उस सामने होती हुई चीज को प्रासंगिकता के साथ जोड़ना
1: जोड़ना
0: है,
1: बिल्कुल
0: लोक जीवन के साथ जोड़ना, और वो क्यों हो रहा है,
1: जी
0: उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, लोकाचार क्या है, ये जो मंदिर है इसमें कब कब किन लोगों का योगदान
1: योगदान
0: रहा,
1: रहा, कैसे बने,
0: हाँ
1: क्या
0: कैसे
1: हुआ।
0: बने, उतार चढ़ाव क्या रहे, और लोगों की कितनी आस्था
1: जी
0: है
1: जी
0: वो आस्था ही आज भव्यता के साथ दिखाई दे रही है।
1: जी
0: वो
1: जी जी
0: आस्था अगर नहीं होती तो ये तो कितनी बार जो है खत्म हो गए
1: खत्म
0: होते
1: हो गए
0: हैं,
1: होते, सही
0: वो उस
1: बात।
0: आस्था के वजह से ही बार बार ये बने बिगड़े और आज इस भव्यता दिव्यता और लोक जीवन के जुड़ाव के साथ आज भी है, तो यही प्रासंगिकता होती
1: और
0: है।
1: सर इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, जन्माष्टमी से एक दिन पहले हमने एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम और यहाँ से मथुरा से भेजा था
0: ये
1: दिल्ली।
0: इस बार थोड़ा सा एक नया वो था,
1: जी
0: हालांकि स्थानीय स्तर पर तो हम हमेशा ही करते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन दिल्ली के स्तर पर एक कर्टन रेजर जिसको हम बोलते हैं पूर्वावलोकन कार्यक्रम,
1: जी जी जी
0: और अच्छे से हुआ, और उसमें संजय भाई आपकी भी इन्होंने तारीफ लिखी है, सर
1: जी
0: राही जी ने भी लिखा है
1: जी
0: कि संजय भाई का इसमें स्वर था, तो वो ही है कि टीम ने काम किया, एक अच्छा कार्यक्रम बन के गया, प्रसारित हुआ, लोगों ने पसंद किया, और
1: सर
0: उस
1: एक
0: नवीन उसका भी वो कह रहे हैं कि भाई ये नवीन प्रयोग था।
1: जी एक कॉल ले लें सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हेलो
0: हेलो जी,
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
2: नमस्कार, हम विपिन कुमार बोलेगा छोड़ी से।
1: जी विपिन जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: कार्यक्रम तो आपके सभी बढ़िया चल रहे हैं, जैसे राजा गायन चल रहा है ये भी हमको बहुत पसंद आ रहा है, रविवार के दिन
1: जी
2: किसान
1: जी
2: पत्र का जिक्र था ये भी हमको अच्छा लगा, और
1: अच्छा
2: सब्जी
1: जी
2: जी डॉक्टर ये भी हमको अच्छा लगा, हम चाहते हैं डॉक्टरों के कार्यक्रम सुनिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: बहुत अच्छी बात
0: तो
1: है, और भी कार्यक्रम आपके लिए बड़े उपयोगी होते हैं हमारे यहाँ से, सुना करिए।
2: उनको भी सुनते हैं हम
1: जी,
0: नियमित, हमारे श्रोता
2: कार्यक्रम के दो तीन कहानी प्रसार है वो हमको बहुत ही पसंद आई,
0: और सुनते ही नहीं जो है
1: अपनी प्रतिक्रिया भी
0: प्रतिक्रिया भी
1: देते
0: देते हैं, तो ये एक
1: हैं
0: सराहनीय कार्य है। ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, प्रतिक्रिया देते रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको तो अच्छा लग ही रहा है,
1: ये
0: तो
1: हमारे फरमाइशी प्रोग्रामों में भी बहुत जुड़े रहते हैं
0: जी
1: सर
0: जी जी जी जी
2: अब दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कोई आधा घंटे का नाटक सुनवाइए आप, रूपक तो बहुत सुनवाते हैं पर नाटक बहुत ही कम सुनवाते हैं।
0: चलिए नाटक भी आपको सुनवाएंगे, कुछ नया होगा तो नया भी सुनवाएंगे, नहीं तो हमारे
1: जी
0: पुराने तो है ही,
1: बिल्कुल
2: पुरानी जल्दी है 2 घंटे के पापा, उसको भी प्रसारित करें किसी दिन।
0: चलिए जी
2: अच्छा
0: जी ये अच्छा है कि आपने नाम भी ले दिया, तो इसको अगले सप्ताह ही हम सुनवाएंगे अगर हमारी अर्काइव में होगी तो।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो क्या 2 घंटे के पापा,
1: 2 घंटे के पापा उसका
0: जी
1: टाइटल है सर।
0: जी जी
2: ये
0: तो
2: बहुत ही बढ़िया लड़की है, बहुत ही अच्छी है ये,
0: चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाली झलकी भी ना।
1: बिल्कुल आपकी फरमाइश
2: धन्यवाद,
1: जल्दी ही पूरी
2: नमस्कार।
1: होगी। नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो अभी तो संजय भाई इतना ही वक्त है कि समय घड़ी कह रही है कि थोड़ा सा,
1: तो
0: लेकिन
1: चलते चलते अपने कार्यक्रम का पता बता दें
0: जी
1: सर।
0: जी जी
1: कार्यक्रम का पता है श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक

0: वृंदावन रोड, आकाशवाणी मथुरा, पिन कोड संख्या 281003।
1: और जो लोग व्हाट्सएप पे अपना संदेश भेजना चाहते हैं उनके लिए 94-122-25-575 नंबर, टेलीफोन नंबर बता दीजिए संजय भाई।
0: जी हमारा फोन नंबर है 2530-135, और मथुरा से अगर बाहर से आप जुड़ना चाहते हैं तो 0565 कोड लगाएं। आपके पत्रों का भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं,
1: जी जी
0: चाहें तो
1: जी
0: आप पत्र के माध्यम से भी हमें जुड़ सकते हैं।
1: जी तो ले विदा फिर भैया उनसे।
0: जी आज के कार्यक्रम में आप यही विदा लेते हैं।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति ओपी सिंह और संजय सारस्वत की थी। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अनुराधा पोडवाल और मनु की आवाजों में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था कसम तेरी कसम। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म कसूर से इस गीत को स्वर दिया है कुमार सानू ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार

0: करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
0: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसकनक, आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच

0: रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है, और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परम्परा का स्वामी है।
2: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हो

0: नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था कटी पतंग। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। करकम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म का नाम है खामोशी। शब्द रचना गुलजार की है, संगीत हेमंत कुमार का है।

मोहम्मद रफ़ी के सुर में अभी आपने सुना फिल्म गाइड का ये गीत, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत दिया था SD वर्मन ने। और आइए आप सुनते हैं रविंद्र जैन के लिखे इस गीत को, जिसे संगीत से भी सजाया है रविंद्र जैन नहीं, स्वर आशा भोसले का है। फिल्म का नाम है फकीरा।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था फ़र्ज़। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मातृभाषा का सम्मान और संवर्धन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का मुख्य आधार होता है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और संस्कारों की आत्मा है। मातृभाषा में सोचने और सीखने से बच्चों की समझने की शक्ति और रचनात्मकता तेजी से बढ़ती है। सांस्कृतिक पहचान अपनी भाषा से जुड़े रहने पर पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, मूल्य और लोक कथाएं सुरक्षित रहती हैं। मातृभाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के भीतर अपनेपन का भाव और आत्मसम्मान मजबूत होता है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे हों या युवा, वो अपनी मातृभाषा में ज्ञान अर्जन करने के लिए दूसरी प्राथमिकता रखते हैं। पहले वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं, जिससे होता ये है कि ना तो बच्चे अंग्रेजी में योग्य हो पाते हैं और ना बच्चे हिंदी में योग्य हो पाते हैं। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि भाषाएं हम कितने भी सीखें लेकिन अपनी मातृभाषा को पहले प्राथमिकता दें। प्राथमिक शिक्षा हमेशा मातृभाषा में होनी चाहिए, जिससे बच्चों की नींव मजबूत हो। घर परिवार मेल मिलाप के दौरान

अपनी भाषा का गर्व से उपयोग करें। मातृभाषा की पुस्तकों, कविताओं, नाटकों, लोक कलाओं को भी हम सबको बढ़ावा देना चाहिए। रामचरितमानस का ग्रंथ या श्रीमद् भागवत का ग्रंथ कि कुछ कुछ बातें बच्चों के लिए संस्कार के रूप में, उस बीज के रूप में जिससे कि वो आगे जाकर वृक्ष का रूप ले, उनके मन में वो भावना रखें, उन लोक कलाओं को बताएं, उन त्याग तपस्या और बलिदान के बारे में जानकारी दें, जिससे मातृभाषा के साथ साथ हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो आगे इस देश के होनहार नागरिक बनेंगे, उनके अंदर वो वास्तविक बीज पैदा हो, वो अपनी मिट्टी और अपनी भाषा से प्यार हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितना अच्छा हम अपनी मातृभाषा में सोच सकते हैं, किसी अन्य भाषा में उतना अच्छा नहीं सोच सकते। ये तो बात हुई कुछ मातृभाषा के सम्मान और संवर्धन की, और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था हीरा पन्ना। दोस्तों, व्यायाम करना जीवन में बहुत आवश्यक है। आजकल के युवा देखने में आता है कि फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके सोने जगने की जो प्रक्रिया है, उनका जो क्रम है, वो सूर्य निकलने के बाद जगते हैं और लेट आवर्स में सोते हैं। धूप निकलने के बाद ना वो व्यायाम कर पाते हैं, ना वो अपने आप को उतना स्वस्थ और ताज़ा महसूस करते हैं। हम तो ये कहेंगे कि धन से भी ज़्यादा आवश्यकता शरीर को स्वस्थ रहने की होती है, क्योंकि धन तो कमाया जा सकता है लेकिन स्वास्थ्य को दोबारा उस स्थिति में लाना बहुत कठिन काम होता है। और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए स्वास्थ्य का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अपने आप को अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए सुबह जल्दी जगें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इस बात को अगर जीवन में उतार लें तो बीमारियां भी कम लगेंगी और संग में अपना स्वास्थ्य के साथ साथ अपना अध्ययन, अपना काम, अपना व्यापार भी हम समयबद्ध तरीके से कर सकेंगे। ये तो बात हुई कुछ स्वास्थ्य की, और अब सुनते हैं ये गीत।

0: उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और सलमा आगा को फिल्म निकाह में।
1: ये सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना।

किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म शराबी में। इसी के साथ दोस्तों आज का युवा बाड़ी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी साथियों को हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमियों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र

0: तैयार किया है, जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशकान। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा 6:15। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत करेंगे अटल राम चतुर्वेदी। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा 6:50 पर। इस कार्यक्रम में होगी चर्चा बीजोपचार का महत्व और साथ में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। इसके अलावा आप सुन सकते हैं अपनी ही पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। प्रादेशिक समाचार 7:18 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से लेकर आएंगे। कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा 7:31। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम श्रीलंका के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से ले करेंगे। समय रहेगा 7:31। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात्रि 8:00 और 9:15 पर सुहाने तराने के अंतर्गत। देशगान एक बार पुनः हम आपको सुनवाएंगे 8:20 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। आज की फिल्म होगी पाकीजा। प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम 9:30 पर आप सुन सकते हैं। रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम हम आआपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से ले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए

स्वामेश्वरों में आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज काव्य मकरंद। प्रस्तुत कर रहे हैं अटल राम चतुर्वेदी।

0: का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे हैं अटल राम चतुर्वेदी।
1: ब्रजभाषा काव्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपकी समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं प्रसिद्ध ब्रजभाषा कवि श्री रसखान जी और श्री यमुना प्रसाद जी प्रीतम की कुछ रचनाएं। प्रथम श्री गणेश वंदना। विघन बेदार वेको सगुन सुधार वेको अघन उधार वेको जाको नित्य काम है। मोद के मनाई वेको मोदक के खाई वेको शोध के सुझाई वेको गुण अभे राम है। विद्या बुद्धि रिद्धि सिद्धि भुक्ति मुक्त देवे ही को परिगो स्वभाव सदा ललित लगाम है। प्रीतम प्यारे प्राण ज्ञान गुण वारे ऐसे देवगण राज जू को सतत प्रणाम है। बुद्धि ही ते विपत बेदारे वो ही भायो जिन सारे वो सुकाज सदा गायो यह गान है। विश्व की औनत हत बेदन किए हैं सब सतगुण पुण्य ध्वज शीश को निशान है। बलिन में बलि उग्र उन्नति में अग्रगण्य बंदित वेदित जग महिमा महान है। प्रीतम स्वतंत्र महामंत्र के प्रणेता गण तंत्र और गणेश दो एक ही समान है। दाता है सुबुद्धि के प्रदाता रिद्ध सिद्धि के विश्व के विधाता जो राखत दुख द्वंदना आए सुन तुंड को हालात दीन द्वार इन पे देखत ही पापिन के भय हैं अनंदना। बारो ही दीप के संवारो रि सुव्यंजन बहु पूजोरी विभेद भांति करो मन मंदना। प्रीतम कविंद छंद रचना सुरुच रच गावे गौरी सुत श्री गजानन की वंदना। श्री यमुना जी की वंदना। बंदो श्री पद पद्म बंधु तनया श्यामा प्रिया श्याम की कालिंद्री कल कुल केल सलिला धारा धरा धाम की पूर्णानंद करी सदैव सुभगा सारा सभी काम की प्यारी प्रीतम प्राण पुण्य फलदा शोभा सुबे श्राम की। जम पास की त्रास विनाश के बेग सदा तट बास को ही वर दे कब प्रीतम पाप पहारन को निज कुल कछारन में छर दे। भव वैभव भाग के वो नहीं में स्वस्वभाव ते भाम ते ही भर दे। जमने सुख वारिद की झर दे अरुमो दुख दारिद को दर दे। भाखे जम राज सुनो सेवक हमारे सब काहु मान उसको लाई वे को धर्म नाहरे। प्रीतम कवि जिते या जग माही पापी जन जमुना नहाय तिने रही भ्रम नाहरे। यही सो तुम सो बात खोल के कहत आज मेरी गमु नाहे तो तिहारी गमु नाहरे। आस जमु नाहे जाके पास जमु नाहे जहां बास जमुना है तहां त्रास जमुना है रे। निकट बसाई जनु गोद में बिठाई मन मोद में मढ़ाई लियो दारिद निकंदनी। कियो है मुकुंद पद सेवक स्वच्छंद पाई मुकुंद रत वर्धनी अमित आनंदनी। चार फल दायनी प्रदायनी मनोरथ की तुमसी तुमी हो मातु सग जग बंदनी। प्रीतम सुकवि अग वृंदन प्रभंजनी जू बंदो पद पदम श्री कालिन।

नंदगिरि नंदिनी, रोग हर ताप हर दुख हर दया कर, दीन जान आन मम गे मही रहिए, प्रीतम सुख अभिवाक सिद्ध बुद्ध शुद्ध हेतु, बैठ रस ना पे देव सांच सांच कहिए, वैभव की वृद्धि होई सुख में समृद्धि होई, दीजे वरदान मोई जो जो जब चाहिए, लाज को जहाज आज बूढ़ो जात जात मध्य, तासो मां उवारिए को बेग बाह गहिए, जमुना जब नाम कड़े मुखते सुनते तब पास रहे जमुना, जम नाम ना राखत खातिन में, जिनके जिए आन बसी जमुना, जमुना के प्रसाद भये कवि प्रीतम, गावत त्यों तब ते जुमना, भजरे जमुना जपरे जमुना, जित है जमुना उत है जमुना, अब तो जन्मो तो बसो जमुना तट, ओ तन मानुष को ही जू धारो, कवि प्रीतम जू रसना सो सदा, रस नाम गोपाल ही को सु उचारो, निर्धारो यही मन में इक्यास, प्रभो है निरास ना ताही बिसारो, जित केली कला तुम कीनी वही, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, हो तो हो जू तेरो चेरो तेरो, हो बनो ही रहो, यही आन वान को सुधारिये श्री यमने, पातक अनेक एक आसरो तिहारो बड़ो, अड़ो खड़ो द्वार पे निवारिये श्री यमने, प्रीतम मनोरथन पूरन करन बेग, ध्यान के धरत ही पधारिये श्री यमने, राज ओ समाज के सुकाज हित आज मेरे, लाज के जहाज को संवारिये श्री यमने। श्री द्वारकाधीश जी की वंदना। द्वारकेश वंदन करो हरो सकल तन ताप, अब नहीं जानो और कछु जोग जाग तप ताप।

सिंहासनपै साज सजी लक्ष्मी वामु बामु छवि छाजे है। अमित अनूप रूप उपमाना पाई कहूं देख के अनंग अंग कोटि कोटि लाजे है। दर्शन करनु हेतु भक्त भीरि भारी होत भावुकन भाव अष्टभूरि भव्य ब्राजे है। प्रीतम प्यारे सब दूसन हरन वारो भूषण हमारो द्वार केश जू विराजे है। श्री द्वारकाधीश जी मंदिर की आठों झांकियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि मंगल मंगला कीने ते होत श्रृंगार ते रास्ते राजत है नर ग्वाल ते गो प्रतपाल बने अरु राजसी भोग ते भोग मिले हर। उत्तापन भोग उत्थान करें नित आरती देख रहे तन सुंदर प्रीतम सेन की झांकी अपार निहार मनोज चित पावत है वर। इसी क्रम में श्री रसखान जी की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। मानुष हो तो वही रसखान बसो मिले गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंदक धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी और कमरी आपुर राजती हूँ पुर को तजे डारो आठ हूँ सिद्धि।

नवों ने देखो सुख नंदक देनु चराए बेसारो रस खाने का भोइनी आखिने सो ब्रज के बने बाग तड़ाग निहारो कोटिक हुकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहे निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तू पुनि पारे न पावे ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरे छाच पे नाच न चावे धूरे भरे अति सोहत श्याम जू तैसी बनी सेरे सुंदर चोटी खेलत खात फेरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी का छोटी वाचबी कोर सिखाने भी लोकत भारत काम कलाने दी कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी कानन दे अंगुर रहियो जब ही मुरली धुन मंद बजे है माहिन तानिन सौरस खान अटा चढ़ गोदन गह पे गह है तेरी कहा सिगुरे ब्रज।

0: कृष्ण जय है। मोरी पखा मुरली बनी माल लख्यो ही में हेरा उमे होरी ता दिन ते इन बैरिन को कही कौन बोले को बोले सहोरी। अब तो रस खान सने लगो को एक कहो को लाख कहोरी। और सो रंग रहो ना रहो एक रंग रंगीले सो रंग रहोरी।
1: आप सुन रहे थे ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे थे अटल राम चतुर्वेदी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।
2: हाँ उल्लू का पट्टा बोलिए।
3: उनको भी सुनाता था।

लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना, फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। संध्या वंदन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनबे वाले सभी भैया बहनन को हमारे राम राम। राम राम भैया, देखो खेती बाड़ी के संग संग आप पशु तो जेंगरे रखे हैं ना, तो बाकी संग आपने एक चीज और देखी होगी कि जो पशु हैं का है, उनकी संग में देखभाल और उनकी साफ सफाई है कि ना बहुत जरूरी है। और जो भैया हमारे दूध उत्पादन करें यानी कि दूध देवे वाले पशु रखें, गाय है भैंस है, तो उनकी तो बात कछु और ही अलग है। देखो जो हमारी गाय भैंस है वो दूध देवे ना, तो उनकी हमें पूरी साफ सफाई को ध्यान रखना पड़े, उन्हें नहलाएं धुलाएं और उन्हें हकाए कपड़ा से पोंछ देवे, तासे कहूँ पे जैसे गोबर है या कछु और तिनका तारों से लग जाए ना। तुमने एक चीज और देखी, जो पूंछ होता है वो गंदी जल्दी है जाते हैं भैंस की ज्यादातर, और जब मक्खी मच्छर लगते हैं या दूध तुम निकाल रहे हो वही टाइम पे वो पूंछ को हिलाते हैं वो, क्योंकि मक्खी और मच्छर लगते हैं।

दूध की खुशबू भी आते हैं वहां में। जब मक्खी मच्छर खाएंगे और वो पूंछ गंदी है तो वहां में कण जरूर आ जाते हैं दूध में। तो भैया आपसे बार बार ये बात है कि अपनी जो गाय भैंस है उनकी पूरी साफ सफाई करें दूध दोहेवे से पहले, और जो बासन होते हैं ऐसे बाल्टी है वहां में निकालने हैं दूध, तो सवेरे दूध निकाल लो तो साफ कर दई, संजा को निकालो तो साफ करनी है, यानी दो टाइम आपको साफ करनी है। और जब आपने दूध निकाल लियो है तो बाकू ढक के रखें साथ की साथ। बहुत सारे मक्खी मच्छर उड़ते रहते हैं, गिर जाते हैं और तरह के कीड़ा से उड़ते हैं। और जो कैन है दूध रखवे की, आपके बड़े बड़े बर्तन हैं, भगोना है, लीटर है दूध नापने को, उनको भी आप दो टाइम गर्म पानी से अगर आप सफाई कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। हर तरीका के वहाँ में बैक्टीरिया और कीटाणु जो हैं वो नष्ट है जाए हैं। और अपने हाथ भैया, सबसे बड़ी बात है हमारे जो नाखून हैं, हमारे जो हाथ हैं, उनकी भी हम पूरी साफ सफाई रखें। क्योंकि जब हमारे जब हाथ उनकी सफाई, हाथ में भी कोई चीज़ ऐसी लग रही है गंदगी है तो वो भी दूध में जाएगी, और वह दूध को हम सेवन करेंगे तो हमें ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बन जाए है। तो भैया हम तो आपसे ये कहें कि जो गाय भैंस हमें दूध दे रही हैं उनकी पूरी साफ सफाई रखें, और उनके नीचे भी सफाई रखें, उनको साफ सफाई से रखें, नहलाएं धुलाएं। और जहाँ भी पशु आपके बंध रहे हैं बाड़े में या पशुशाला में, आप बाकी पूरी साफ सफाई रखें। और खिड़की दरवाजे हैं धूप के समय खोल दें ताकि शुद्ध हवा आ सके और वहाँ में धूप प्रवेश कर सके, प्रकाश भी आए, तो आपकी पशुशाला भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो भैया हम तो आपसे ये कहें कि आज रविवार को देना है ना, तो आप भी सोचें कि हमें लोकगीत यानी मन भावन कार्यक्रम भी तो है, वो तो आपको सुनना है। देखो हमारे ठाकुर जी है काय मक्खन ते, दूध ते और दही से, तो बड़े राजी खुश रहे हैं, चिन्ना मृत बना में हैं हम। और हमारे गिरिराज महाराज जो तीन लोक के स्वामी हैं, गिरिराज महाराज उनकी तो बात ही कछु अलग है, उनकी लीला ही निराली रही। तो सुने हैं गिरिराज बास में पाऊँ या लोकगीत को।

गिरिराज वास की तो, गिरिराज जी की तो महिमा अलग है। मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में सुनो ना आपने ये लोकगीत। परकम्मा देवे दंडौती परकम्मा लगे, दूध की धार चढ़े, और गिरिराज बाबा की तो जय जयकार होती रहे। कछु महिमा है तीन लोक के जो कही न जाए, उनकी महिमा अपरंपार है, जाको को न पावे पार है। बिल्कुल सही बात है। देखो बहनाओं, हम तो आपसे ये कहें कि कोई भी कार्य को करो, लगन से करो, पूजा पाठ करो, श्रद्धा भक्ति मन में रखो, हर एक के प्रति दया भाव रखो। जासे जी मानव के गुण हैं, जब मानव में जे गुण आए तो वो भी प्रभु के संपर्क में जाए ना, तो प्रभु बहुत जल्दी वहाँ पे कृपा कर दे हैं। तो ऐसी दया कृपा हम सब पे बनी रहे। और पता है मुझे तो एक बात याद आ रही है का, अरे मेरी पास पड़ोस की ना है, वो तो मेला कहूँ भी लग जाए, वहाँ मैं ऐसी जावे टोल की टोल, अरे खरीदारी करवे जावे, वो देखवे भारवे जावे और जलेवा खावे और जाते हैं। पता है तुम्हें कैसे जलेवा मिलते हैं मेला में, आनंद आ जावा तो हमें तो भैया गरम गरम सिकते हैं वहाँ कढ़ैया में, मन ललचा उठा तो मेरा तो। चलें फिर कहाँ, अरे मेला में सुन ले में रमेश रावत सरस कोल को गाया भयो ये लोकगीत।

भैया देखो मेला तो खूब देखो है कि ना है। अरे घर को मेला जरूरी है और खेती बाड़ी की बात कर लियो वहां में हमारे किसान भैया को जा समय समय चल लो ना बड़ो पीक को समय चल लो बुवाई को समय। अरे भैया जा बीज को हम बोंगे ना पतो है। अरे बाकू उपचारित कर लियो पहले है कि नहीं बातें कहा होगा उपचारित जब आप करें बीज को तो पाकू उपचारित करें रात भर भिगो दे वहां में जैविक तरीका से करें है और छाया में कई बोरा टाट पे सुखाएं। जब वो बीज सूखवे की जे है कि बाकू हाथ ते या दांत के नीचे दबाए के देख लें कि बीज सूख गए हो तो मालूम पड़ जाते हैं हमें कट की आवाज आते है ना तब तो ही बाकू बुवाई के लिए हमारो बीज योग्य भयो है आप बुवाई करें बाकू। बामे का अच्छी किस्म को चुनाव करो विश्वसनीय दुकान होए है कि ना है? और बीज है का है सीलो भयो यानी सूखो भयो बीज होए बामे का होगा कि जो बीज आपने उपचारित करो है बाकी आप बोएंगे या बुवाई करेंगे तो बामे का है रोग है कीटाणु है कम आते हैं फंगस कम लगते हैं और कीड़न को भी आक्रमण कम होते हैं फसल हमारी बढ़िया होते हैं और सुरक्षित रहते हैं और अंकुरण है का जल्दी है जाते हैं और ज़्यादा उत्पादन होवे से तो भैया आपकी फसल पूरी तरह से समझ लियो कि बढ़िया भैया। तो जाले हम आपसे ये कहें कि जब भी आप बुवाई करें बीज को उपचारित सर्वप्रथम करें जैविक तरीका से और फिर अपने मन भावन कार्यक्रम में सुन लिए हैं या लोकगीत को माधुरी शर्मा को गायो भयो मोर मुकुट की देख छटा मन मेरो कर रो है सुनो भैया या लोकगीत को।

माधुरी शर्मा को गायो भयो आपने सुनो भैया, ये लोग गीत और पतो है। अब हमारे कार्यक्रम को मन भावन को समय यहीं पे हुई है संपन्न। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारे राम राम।

0: ब्रांड के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सी के वाई सी आई डी।
0: सी के वाई सी मतलब

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सी केवाईसी आईडी।
0: सी केवाईसी मतलब
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सी केवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सी केवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, RBI कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का बढ़ा है विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, मुख्यधारा से छूटे हुए लोगों को प्रदान किया जा रहा है समान अवसर। और प्रदेश में कल मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। महिलाएं रखेंगी कजरी तीज का निर्जला व्रत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान में तैयार अंग प्रत्यारोपण, विस्तारित क्षमता के इमरजेंसी वार्ड और अन्य कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने संस्थान में विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 वर्ष से कम समय में ही ये संस्थान चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा का बेहतरीन केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अंग प्रत्यारोपण यूनिट की शुरुआत एक बड़ी चिकित्सा सुविधा साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विगत 9 वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की एक नई श्रृंखला खड़ी की गई है।
2: आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा भी है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है और जहां पे कोई भी सहयोग

0: करने को तैयार नहीं, कोई सुविधा में आच्छादित नहीं हो रहा है, लेकिन उसे लगता है कि उसे कुछ सहयोग की आवश्यकता है, तो सीएम रिलीफ फंड में हम उसको पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराते हैं, जहां से उसको सहायता मिल जाती है, वो अपना उपचार कहीं भी जाके करवा सकता है, किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके करा सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ इसने अपनी प्रगति को की है, वह अपने आप में ढेर सारे पेशेंट को इसकी सुविधा उपलब्ध करवाएगा।
1: समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में मजबूत हुई चिकित्सा सेवाओं ने मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाने का काम किया है। समारोह को चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री रायबरेली के उच्चाहार में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिव भक्ति भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का आधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सनातन और हिंदू धर्म में जाति के आधार पर लोगों को नहीं बांटा जाता है, ये कर्म आधारित व्यवस्था है। इसमें सबका एक ही लक्ष्य धर्म और राष्ट्र की रक्षा करना है। रक्षा मंत्री ने आज आगरा में आयोजित खटिक समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि उनकी पहचान केवल किसी एक पेशे या किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं रही है। खटिक समाज धर्म के लिए समर्पित रहने के साथ उसकी रक्षा के लिए भी हमेशा तत्पर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की मुख्यधारा से छूटे हुए लोगों को समान अवसर देने के लिए काम कर रही है और प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़े।
2: हमारी सरकार अंत्योदय और सर्वोदय की भावना के साथ काम कर रही है। सर्वोदय यानी समाज में सभी लोगों का उत्थान होना चाहिए, यही हम लोगों की कोशिश है, और अंत्योदय यानी समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो बैठे हैं उनका भी उदय होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। राज्यों आज उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तेजी से विकास आगे बढ़ रहा है और सारे हिंदुस्तान में यह हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास के लिए जाना जा रहा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च सांसद पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद जगदम्बिका पाल का आज बस्ती पहुंचने पर जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों और नीतियों पर जनता का विश्वास कायम है। उन्होंने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।
3: अभी आपने ब्रिक्स का सम्मेलन देखा है, जिस तरह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, लेकिन आज भारत विश्व में एक नई ताकत और एक नई व्यवस्था के रूप में उभर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है।
1: प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर आज गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन राष्ट्र सेवा, जनसेवा और अंत्योदय के संकल्प को समर्पित रहा है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित होने वाला ये अभियान सेवा और जन कल्याण के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया है कि कल लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रशिक्षण एवं प्रबंध अकादमी में आयोजित होने वाली प्रशिक्षण कार्यशाला में 33 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, FLC सुपरवाइजर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर कल भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा, जिसकी सभी तैयारी पूरी हो गई है। गणेश उत्सव का संचालन करने वाले भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि गोमती के किनारे कल से 25 सितंबर तक चलने वाले

0: गणेश उत्सव का पंडाल कोलकाता से आए करीब 60 कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है।
1: अमेरिका के न्यू जर्सी स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर हमारा मुख्य द्वार का गेट बनाया गया है। 13,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया है वातानुकूलित वाटर प्रूफ, और 6,000 स्क्वायर फीट का एक हॉल बनाया गया है जहां भक्त लोग बैठेंगे, गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। हमारे अपने 60 आदमी लगेंगे जो कि महिलाएं और पुरुष, जो कि सिक्योरिटी का जिम्मा संभालेंगे। मोदक कानपुर के प्रसिद्ध हलवाइयों के द्वारा बनाया जाएगा जो कि भक्तों को बांटा जाएगा।
0: पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व कल मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा और निर्जला व्रत रखेंगी। इस मौके पर श्रावस्ती जिले के प्रसिद्ध विभूतिनाथ मंदिर में आसपास के जिलों के साथ ही नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। शिव भक्त आज से ही पवित्र नदियों से जल भरकर पैदल मंदिर की ओर रवाना हो रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का बढ़ा है विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 6th स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा मुख्यधारा से छूटे हुए लोगों को प्रदान किया जा रहा है समान अवसर। और प्रदेश में कल मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी, महिलाएं रखेंगी कजरी तीज का निर्जला व्रत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आपकी चाय, EMI, किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है, इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है। करने दें, RBI कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्याम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के आरंभ में ये सुनते हैं,
5: Yes, we do have one change. Today

आप सुन रहे थे सुरेश पाटीकर को, फिल्म का नाम था प्रेम रोग। पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे उमाली से अनूप कुमार, उद्धव पाटिल, पलसों से ऐश शेगोकार डॉक्टर जयश्री, कृष्णनगरी मथुरा से सबा अंसारी, अल्फेज अंसारी, नंदिनी और अंजलि, गांव हेप्पर सोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, शायरा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव हिप्पर सोगा से उस्मान शेख, सायरा बानो, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड, गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नास, नवाजिश शेख, दानिश और अमन अफरीदी, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी, लालकुर्ती रोड रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी, दीपाली और युवान और आर के राजा, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, सहानबाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हालिमा डावर, बेबी जिकरा डावर, परदेशीपुरा खंडवा से शेख शहीद रही और अनस भाई, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, साहसी नगर महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

सुदेश भोसले, अनूप जलोटा, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अग्निपथ। अब हमारे पास जो संदेश हमें मिले हैं वो हैं दत्ता धोड़के आष्टी जलना महाराष्ट्र से, अब्दुल गफ्फार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जिया आलोक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, बागेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक।

नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। कुर्मा जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से, दिलदार बिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मिरी, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा, हिना कौसर, मोहल्ला हलवायन, शेरकोट जिला बिजनौर से, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, हिंदुस्तान रेडियो मित्र टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, कारनौर हड़ा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी देवी पाटिल, समर्थ दादा और कुमारी सानिका देठे पाटिल, धमड़गांव महाराष्ट्र से, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, कीर्ति भारती, देवाश्री और अनुराग मोहन, जिला किशनगंज बिहार से, शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मजदू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन, सब्जी मंडी बुल्लाना से। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे अभिजीत को, फिल्म का नाम था एक ही फूल। शाम सुहानी कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अलका याग्निक, उदित नारायण और सुखविंदर को आपने सुन रहे थे। फिल्म का नाम था लगान। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

उदित नारायण, अलका याग्निक और नेहार को आपने सुना फिल्म गदर में, और आइए अब सुनते हैं फिल्म हिना का ये गीत।

लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद सईद और साथियों को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हिना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आप एक बार पुनः सुनेंगे सुहाने तराने के अंतर्गत फिल्म संकेत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

स्वामेश्वर में गाए इस देशकान के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पाकीजा फिल्म के कुछ गीत। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

संपन्न होता है। आज आपने सुने पाकीजा फिल्म के कुछ गीत, आवाजें थी लता मंगेशकर के। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी

0: निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
2: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
7: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए 7.8% का ग्रोथ रेट।

0: से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
1: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
3: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठक

0: पति को भी कभी।
1: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था आंखें।
2: न झटको ज़ुल्फ़।

मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे फिल्म शहनाई में। और आइए अब सुनते हैं हिमालय की गोद में फिल्म में मुकेश को।

आप सुन रहे थे मुकेश को, फिल्म का नाम था हिमालय की गोद में। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ राजस्थानी गीत। कलाकार हैं सीमा मिश्रा और साथी। सबसे पहले सुनते हैं

और इसी के साथ आज का राजस्थानी प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने सीमा मिश्रा और साथियों को सुना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकर करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुमित सिंह पदम द्वारा सितार वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय सुमित।

0: मित सिंह पद्म।
1: सुमित को संगीत के प्रति प्रेम और निपुणता अपनी 3 पीढ़ियों पुरानी पारिवारिक परंपरा से विरासत में मिली है। आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार उनके दादा श्री सोहन सिंह पद्म एक उत्कृष्ट संगीतकार होने के साथ साथ तंतु वाद्य यंत्र
2: किया है भारत में और सिर्फ 12 रन बने हैं पहले 2 ओवर में, यानी कि कतई ये काम आसान नहीं है। मुनीश जोली
0: फ्रॉम पंडित डॉक्टर हरविंदर कुमार शर्मा, अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड एन एक्लेम्ड सितारिस्ट कैरिंग द जनरेशंस ओल्ड लेगेसी ऑफ हिज गुरु उस्ताद विलायत खान साहिब ऑफ इमदाद खानी घराना।
1: आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार सुमित लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर रहे हैं और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
0: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include Sangeet Ratan Samman, Kala Nidhi Samman, Swar Sadhak Samman, एंड राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान।
1: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पद्म के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वे अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
0: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi, and taal kachehri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation, and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's reference panel of artists.
1: आज के कार्यक्रम में सुमित सिंह पद्म अपने वादन की शुरुआत राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत 3 ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में 3 ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
0: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with Rag Rageshwari, wherein alap is followed by jod alap, jod jhala, and then vilambit gat in teen taal, madhyalay gat in mat taal, and drut gat is in teen taal.

0: यह था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग देस। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम विल नाउ प्रेजेंट राग देस। आलाप

0: यह था सुमित सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देस। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देस presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation of आकाशवाणी जालंधर।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती

0: रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
0: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षो में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.

0: Durian. Smriti Mandhana was unfortunately run out with that misunderstanding between her and the captain, Harmanpreet Kaur. Mandhana scored 59 of 39 deliveries. But I tell you what, this is one of the moments where Shefali Verma
1: stayed one, bowling to Sugandhika. 7 wickets down, 103. India were well beyond 100. In fact, they were around 161 at this point of time. But a cut and then a thickish edge outside the off stump on the next delivery by Shefali Verma. Just a single then, as Sri Charni from the short third man runs to her right and picks up that ball. Sri Lanka at the moment 104 for 7 after 17 overs.
2: तो आखिरी 3 ओवर बाकी हैं इस मुकाबले में. 80 रन अब भी चाहिए श्रीलंका को. और नुथियांगना जो कि विकेट कीपर हैं टीम की, वो अब सुगंधी कुमारी के साथ बैटिंग करने आई हैं, 2 रन नुथियांगना के. और इसके अलावा 1 रन सुगंधिका कुमारी का. श्री चरणी ने आज 3 विकेट लिए हैं. अगर आप भारतीय गेंदबाजों का विश्लेषण देखें कि किसने किस तरह की गेंदबाजी की है, तो बिल्कुल आपको साफ लगेगा कि श्री चरणी सबसे कामयाब बोलर्स में उनका शुमार है. और बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने. क्रांति गौर ने शुरुआत की, दो ओवर में 1 विकेट लिया. नंदिनी शर्मा ने 3 ओवर गेंदबाजी की, 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला. श्री चरणी का ये आखिरी ओवर होना चाहिए. 3 ओवर्स इससे पहले उन्होंने किए हैं, ये आखिरी ओवर होगा उनका. 20 रन दिए हैं और 3 विकेट अपने नाम किए हैं. तो सबसे कामयाब गेंदबाज आज की श्री चरणी. दोनों डॉट बॉल इससे पहले और एक बार फिर खेलना चाहती थी, लेकिन गेंद उनके पैड पर जाकर के लगी. उछाल था गेंद में और इसलिए रन तो मिला नहीं, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हुआ श्रीलंका को. काफी उछाल था गेंद पर, जहां पर गेंद टप्पा खाई वहां बल्ला ले जाकर के स्वीप शॉट खेलना चाहती थी. पूरी तरह से मिस किया गेंद की टाइमिंग को और इस बार फिर रिवर्स खेलने का प्रयास. कुछ भी समझ नहीं पा रही है श्रीलंकन बैटर्स की किस तरह से खेलना है श्री चरणी को. श्री चरणी की लगातार 4 डॉट बॉल हैं. अब सुगंधिका जिन्होंने 6 गेंदों पर 1 रन बनाए हैं, जाहिर है कि एक फ्रस्ट्रेशन सर चढ़ करके उनके बोल रहा होगा. आखिरी 2 गेंदों पर श्री चरणी क्या करती हैं. पिछली 30 गेंदों में 25 रन बने हैं श्रीलंका के और 4 विकेट गवा दिए हैं श्रीलंका ने. इस बार फ्लाइटेड थी और गेंद को हवा में खेला है और हाथों में जाएगा बिल्कुल. 1 और विकेट श्री चरणी का, ये 4th विकेट. यानी कि विकेट्स लेने के मामले में श्री चरणी अब नंबर 2 पर पहुंच गई हैं. बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन. 8 विकेट इस मुकाबले से पहले उनके थे, 4 विकेट आज उन्होंने लिए. चमरी अट्टापट्टू के भी 12 विकेट हैं, इनके भी 12 विकेट हैं. और इस गेम को घुमा दिया था, लेकिन सीधे हवा में लहराता हुआ और एक अच्छा कैच और इसके साथ ही श्रीलंका का 1 और विकेट. यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी. नंदिनी शर्मा ने कैच किया श्री चरणी की गेंद पर, 1 रन बनाए सुगंधिका कुमारी ने 7 गेंदों का सामना करने के बाद. भारत के लिए जीत का दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका है. 104 8 विकेट पर. 18वें ओवर की आखिरी गेंद आनी है, यानी कि 13 गेंदें बाकी हैं. किसी भी सूरत में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है श्रीलंका, लेकिन क्या 20 ओवर खेल सकता है, सवाल बस यही है. नुथियांगना का साथ देने के लिए नई बैटर इस समय विकेट के ऊपर है और देखना है कि किस तरह का प्रदर्शन करती है. मिथाली अयोध्या है, बिल्कुल मिथाली अयोध्या आई है आखिरी गेंद का सामना. रक्षात्मक तरीके से अपने बल्ले से रोका. 18वां ओवर समाप्त हुआ. श्रीलंका का स्कोर 104 है 8 विकेट के नुकसान पर. आखिरी 2 ओवर में 80 रन बनाने हैं. मुकाबला हाथ से निकल चुका है. भारत 8वीं बार खिताब जीत चुका है. आखिरी 2 ओवर्स में क्या कुछ होगा, ये बताने के लिए मनीष जौली स्वागत.
1: A nice way to welcome after the 18th over as well, and fully taking that credit. Of course, this will be a victory for India for sure, because from here, in those remaining 12 balls, even if they hit a 6 of every ball, they'll reach.

0: भारत बना है आठवीं बार एशिया कप चैंपियन। भारतीय स्पिनर्स की फिरकियों ने श्रीलंका को ऑल आउट किया है 111 के स्कोर पर, और हम हाजिर हैं कौन बनेगा प्लेयर लेकर। मैं हूं बुद्धता और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट दर्पण तिखिया।
1: जी हाँ, सभी भारतीय प्रशंसकों को बहुत बहुत बधाई। भारत आठवीं बार एशिया का चैंपियन बना है महिला क्रिकेट में, T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम करने के बाद, और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने यह मैच जीता है। और भारतीय स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन स्पोर्ट्स के लिए आज का दिन शानदार रहा है। एक तरफ चाइना से खबर आई कि हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत की महिला टीम ने चीन को फाइनल में 1-0 से हराया, भारत की पुरुष टीम ने 4-1 से दक्षिण कोरिया को मात दी, तो वहां दो एशिया कप के टाइटल भारत ने अपने नाम किए, यहां महिला क्रिकेट में अपने नाम किया। तो वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को पहले T20 में मात दी। और वहीं एक खबर मेक्सिको से भी आ रही है, जहां पर आर्चरी

0: वर्ल्ड कप फाइनल्स में धीरज बोमा देवरा मेंस रिकर्व आर्चरी में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय आर्चर बन चुके हैं, यानी वहां से भी सिल्वर मेडल आना तो कंफर्म है। थोड़ी देर में पुष्टि होगी कि गोल्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो ओवरऑल इट हैज बीन अ टेरिफिक डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, बट हेयर वी आर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, हमारे साथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी है जो शायद इन इमोशंस को बहुत बेहतर से जानती है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जीत पाना। लतिका, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू सो मच।
0: और साथ में हमारे साथ उत्तरा गणेशन है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक लंबे अरसे से बड़े करीब से देखा है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है इस जीत के। वेलकम उत्तरा।
2: धन्यवाद।
0: तो लतिका, आपसे ही शुरुआत करते हैं। एज अ प्लेयर, जब आप इन विजुअल्स को देखते हैं, टीम को सेलिब्रेट करते हुए, लंबे टूर्नामेंट में जीत हासिल करते हुए, अनडिफीटेड रही है भारतीय टीम, कैसा महसूस करता है खिलाड़ी?
2: देखिए, सबसे पहले जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, महीनों के कैंप्स लगाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, यंगस्टर्स को लेकर आते हैं टीम, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि काफी लंबो भरा है ये जो रास्ता रहा है, उसकी जर्नी जो आज एक कप के साथ फिनिश होती है, तो इस चीज की फीलिंग एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल है। और इसी चीज के लिए तो हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं कि जब हम अपना 100% दे रहे हैं, उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह की ट्रॉफीज की ना अब आदत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हरमन जिस तरह का काम कर रही है, जिस तरह की कप्तानी वो कर रही है, तो उनके साथ ये जो सफर है, यंगस्टर्स भी हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं स्मृति जैसे, तो अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है। उत्तरा, 10वां एडिशन है ये एशिया कप का। पहले एडिशन में भी श्रीलंका और भारत का मुकाबला हुआ था, भारत हर बार फाइनल में पहुंचा है और ये 8वीं बार ट्रॉफी उठाने जा रहा है भारत। इससे ज़्यादा और क्या सबूत होगा भारत के डोमिनेंस का एशिया में?
3: मुझे लगता है कि अगर हालांकि उम्मीद थी भारत के जीतने की ही, पर जितना बड़ा गैप है इस वक्त भारतीय क्रिकेट और बाकी एशियन टीम्स के बीच में, महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में, बट महिलाओं में और ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि अब भारत को अपने आप को एशिया के हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जीतने लगते हो, जब आपको आदत हो जाती है, तो आपको अपने टारगेट्स, अपने सपने बड़े करने चाहिए। और मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंट अब आप प्रूव कर चुके हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार प्रूव कर चुके हो कि इस कॉन्टिनेंट में, एशिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके आसपास भी कोई नहीं है। आज इन्होंने फिर से इस चीज़ को प्रूव किया है, और जितने बड़े मार्जिन से ये जीते हैं, T20 जैसे टूर्नामेंट में 70-75 रन से जीतना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, जहाँ पे टोटल ही कई बार टीमों के इतने बनते हैं, उसमें इतने बड़े मार्जिन से जीतना, तो मुझे लगता है अब भारत को अपना सपना और अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा अपने एम्बिशंस और बड़े करने चाहिए, अपना लालच और बड़ा करना चाहिए और विश्व की ओर देखना चाहिए, क्योंकि अगला टारगेट विश्व कप ही होना चाहिए इनका।
0: जी बिल्कुल, 72 रन से भारत ने इस मुकाबले को जीता है। सामने श्रीलंका थी जो कि इस टूर्नामेंट में आज से पहले अपराजित थी, और उनको एक तरफा अंदाज में भारत ने हराया है। और अभी भी हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के जो स्टैंड्स हैं, वो खाली नहीं हुए हैं। भारतीय प्रशंसक अभी भी बने हुए हैं स्टैंड्स में, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जब हरमनप्रीत कौर को वो ट्रॉफी दी जाएगी और जश्न मनाया जाएगा भारतीय टीम द्वारा। लेकिन इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। लतिका, उत्तरा ने कहा कि हमें अब और आगे की सोचनी है, उस लिहाज से क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं, कौन से वो पहलू हैं जिन पर भारत को इंप्रूव करने की जरूरत है, जो आपने इस टूर्नामेंट में देखे?
2: देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, कैचेस की अगर मैं बात करूं, तो वो थोड़ा सा लैक दिखा है, उसमें थोड़ी कमियां जरूर नजर आई हैं। और आई होप के जो कोचेज हैं, मैनेजमेंट है, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा होगा और इस पे काम करने के लिए आगे प्लान्स भी ज़रूर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ये एक चीज़ होती है जो अपने हाथ में रहती है। एक बल्लेबाज किसी भी अच्छी गेंद पर आउट हो सकता है, एक गेंदबाज की किसी भी अच्छी बॉल पर बड़ा हिट लग सकता है, लेकिन फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ही एफर्ट करना है, वही एफर्ट जो है वहां पर रन बचा सकता है या किसी की बॉलिंग में वो विकेट

0: ला सकता है। तो जो आज भी हमने देखा है कि काफी आसान से कैच इतने आसानी से छोड़ दिए, आप उस बॉलर से पूछिए जिसने इतनी मेहनत की उस कैच को करवाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि कोई क्रूशल अगर मैच होगा और वहां ये सिचुएशन आती है तो थोड़े आपको कह सकती हूँ मैं कि लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये एक चीज होती है जब आप क्रिकेट में कोई भी चीज को नजरअंदाज करते हैं, तो छोटी से छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस जीत में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो अभी दिखा हमें वो था भारत के स्पिन अटैक का, लेड बाय दीप्ति शर्मा। नाउ वी हैव चरणी, देन प्रेमा रावत। कैसे देखती हैं उत्तरा इस स्पिन अटैक को आप भारत के? क्या वो और ज्यादा धारदार होता जा रहा है? और काफी इम्प्रेस किया है उसने इस पूरे टूर्नामेंट में।
2: बिल्कुल, और जिस तरह से एज अ नॉर्मली कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, बट ये सिर्फ फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं है, आपकी बॉलिंग यूनिट पूरी अटैक, व्हेन दे अटैक इन अ पैक तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो हाँ, दीप्ति शर्मा जरूर काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने काफी मैचेस खेले हैं, मैचेस जिताए हैं, काफी विकेटें ली हैं, इसमें भी वो टॉप विकेट टेकर बन गई हैं। पर श्री चरणी और प्रेमा रावत को देख के आपको लगता है कि कम से कम वो लेगेसी आगे कंटिन्यू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से क्योंकि दोनों यंगस्टर्स हैं, अभी बहुत साल और खेलना है। और हमारी बैटिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है, पर बॉलिंग में कभी ना हमेशा ये रहा है कि शायद एक कम पड़ गया है, या एक एंड पे जब हो रही होती है तो दूसरे एंड पे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब इस तरह से आपके पास तीन चार एक जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर्स होते हैं, तो वो जो बीच के ओवर होते हैं जिसमें आप एक्चुअली रन्स को चोक कर सकते हैं, वो एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है। और इसीलिए मिडिल ऑर्डर में जब आप सद के खेलते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो या वनडेयर्स हो, तो वहां पे फिर रन ज्यादा इजीली आते हैं। जब आपके पास एक की जगह तीन इस तरह के होते हैं जो किसी भी बैटिंग टीम को परेशान कर सकते हैं, बैटिंग साइड को, तो आपको आपके बैटिंग को भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कोई भी टारगेट सेट करें उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है कि अगर बाय चांस 5-10 रन कम भी बनाए हमने तो हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं, चाहे वो शुरू में तेज गेंदबाज हों या बीच में स्पिन गेंदबाज हों, जो सामने वाली टीम की रन फ्लो को रोक सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, हम जश्न मना रहे हैं भारत के एशिया कप जीतने का, वुमेन्स एशिया कप 2026 का टाइटल भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है। इस जश्न में आप भी शरीक हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1085 या 1084 पर, और अगर दिल्ली के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना की तो तारीफ होगी ही, मैं चाहूंगा लतिका एक बार फिर आप इनकी बल्लेबाजी का आकलन करें, और साथ के साथ शेफाली जो कि एक छठे बॉलर के तौर पर अब लगातार कंट्रीब्यूशन दे रही है, थोड़ा सा उस पर भी हमें बताएं।
0: बिल्कुल, देखिए ये विश्व कप के बाद से ही ये चीज हमने देखी कि शेफाली के हाथ में गेंद अब लगातार जो है दिखाई देती है जब भी कभी मैच होते हैं, और इस तरह के मोमेंट में आप देखिएगा पावर प्ले के आसपास भी उनको गेंदबाजी कराई जाती है। तो कह सकते हैं कि एक और गेंदबाज यहां तैयार हो रहा है भारतीय टीम के लिए, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज भी है, और ओपनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे एशिया कप में उन्होंने बल्लेबाजी की है, और अपने खेल का जो तरीका उन्होंने इस एशिया कप में दिखाया है तो उससे ये पता चलता है कि काफी मेहनत इन्होंने अपने स्किल पे भी की है, और जो इनका माइंडसेट है उस पे भी इन्होंने काफी काम किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर जो हैं ये बनकर आई हैं, और इस तरह की जब कोई प्लेयर बनते हैं ना तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो प्लेयर ही जानता है कि उसने कितनी मेहनत की।
3: थोड़ी सी पीछे की मेहनत आपने देखी है, हम जानते हैं, थोड़ा सा वो बताएं हमारे दर्शकों को।
0: ओके, मैं यही कहूंगी कि शेफाली जब ड्रॉप हुई थी इंडियन

0: टीम से, भारतीय महिला क्रिकेट टीम से, उस टाइम पे उन्होंने यही जो सपना था उनका यही था कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता और मैं लगातार अपनी जगह वापस लेने के लिए वो मेहनत करती रहूंगी। और उनको जैसे ही वो मौका वर्ल्ड कप के टाइम पे मिला और उन्होंने करके दिखाया, उसके बाद से वो शेफाली वर्मा हमें देखने को मिली है जो उससे पहले कभी हमें देखने को नहीं मिली थी। और हम यही चाहेंगे कि वो भारतीय टीम के लिए लंबे अरसे तक इसी तरह का प्रदर्शन करती रहे।
1: जी बिल्कुल, और शेफाली वर्मा पे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आज हमारे श्रोता भी काफी उत्साहित हैं, तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी अरविंद जी, अपना सवाल पूछें। आपको भी बहुत बधाई। इसके बारे में हम आपको शायद कुछ समय बाद बता पाएंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे शेफाली वर्मा की, आपने बात करी इससे पहले वाले कॉलर, तो उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया था कि शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए और दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे देना चाहिए। तो उत्तरा और लतिका, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि कौन होगा आपका प्लेयर ऑफ द मैच और देन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?
2: बहुत मुश्किल है, पर प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से, हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग की थी शेफाली ने, और जिस तरह से नॉर्मली होता है, ये बैटर्स हमेशा स्पॉटलाइट में ज़्यादा रहते हैं, और जिस उसकी उनकी बैटिंग की वजह से जो स्टार्ट मिला उसकी वजह से बाकी जो नीचे जितने भी थोड़े से रन आए, हालांकि मिडल ऑर्डर थोड़ी सी लड़खड़ाई, लेकिन जो स्टार्ट मिला शेफाली की बैटिंग से, और सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से उनकी बैटिंग रही है, तो मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच जरूर बनती है वो। श्री चरनी को भी देखा जा सकता है, क्योंकि चार विकेट फाइनल में आके लेना, और जिसमें आपका पूरा मिडिल ऑर्डर एक तरह से आपने उनका खत्म किया है, जो इस पूरे टूर्नामेंट में लगातार श्रीलंका की ताकत रही है, उनके ऊपर के बल्लेबाज हम फेल हों तो भी तीन चार जब ऊपर के निकल जाते हैं तो उनके पांचवें छठे सातवें आठवें नंबर के खिलाड़ियों ने ही रन बनाए हैं लगातार, उस पॉइंट पे आके उनको वो ना स्पेस देना और वो चार विकेट लेके एक तरह से उनकी पूरी मिडिल ऑर्डर को तोड़ना, इन दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। और जहां तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात है, तो अगेन शेफाली और दीप्ति में से मुझे नहीं लगता दोनों में से किसी को भी कोई तकलीफ होगी अगर किसी को भी मिले दोनों में से। तो
3: जी, श्री चरणी ने आज 38 विकेट अपने पूरे किए हैं 2026 में, और किसी भी कैलेंडर ईयर में भारतीय स्पिनर द्वारा लिए गए ये सबसे ज्यादा विकेट है। और लतिका, लगातार बात होती आई है एक लंबे अरसे से कि आपके पास बेंच पर राधा यादव हैं, जो ना ही सिर्फ इन्हीं की तरह लेफ्ट आर्म स्पिन डालती हैं बल्कि एक बेहतर बल्लेबाज भी हैं, बेहतर फील्डर भी है, फिर भी भारतीय टीम हमेशा चरनी को प्रेफरेंस देती आई है और उन्होंने डिलीवर किया भी है। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि ऐसा क्या है चरनी की गेंदबाजी में जो उनको सेपरेट करता है अपने कॉम्पिटिशन।
0: देखिए, चरनी जिस तरीके से गेंदबाजी करती हैं, पेस वेरिएट करती हैं, लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करता है। और जिस जो फील्ड सेट वो करती हैं, जिस तरफ फील्ड लगाती हैं उसी तरफ गेंद आप देखिएगा कि वहीं वो गेंद जाती है। अगर राधा यादव की बात करूँ, गेंदबाजी उन्होंने भी बहुत अच्छी की है जब भी उन्होंने मैच खेले हैं, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस मुझे दिखाई दिया है अभी तक, जो बॉल रिलीज होती है तो वो किस तरीके से हवा में जाती है और बल्लेबाज तक वो पहुंचती है, तो वो एक डिफरेंस है गेंदबाजी में दोनों की, कि गति का परिवर्तन बहुत बेहतरीन करती हैं श्रीचरणी
3: जी। और एक बड़ी खबर इस वक्त मेक्सिको से आ रही है, जैसा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, धीरज बोमा देवरा वर्ल्ड कप फाइनल्स में, आर्चरी की बात कर रहे हैं हम, तीरंदाजी की बात कर रहे हैं, रिकर्व मेंस इंडिविजुअल इवेंट में वो गोल्ड मेडल के बेहद करीब पहुंच चुके थे, और अब खबर आ रही है कि वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जापान के नाकानिशी को उन्होंने फाइनल में हराया है और आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को गोल्ड जिताया है। तो आप भारतीय स्पोर्ट्स के अगर आप फैन हैं तो आपके पास एक और रीजन है सेलिब्रेट करने का, एक और वजह है आपके पास जश्न मनाने की, क्यों मुद्दा?
1: बिल्कुल है, और जश्न मनना चाहिए, चलता रहना चाहिए ये जश्न, और अब आने वाले एशियन गेम्स में भी हमें लगता है ये जश्न जारी रहेगा। चरनी की बात हम कर रहे थे लतिका अभी, तो चरनी टुक 50th T20 इंटरनेशनल विकेट इन सेमीफाइनल अगेंस्ट बांग्लादेश और फास्टेस्ट इंडियन बॉलर

0: नहीं है वो मेन या वेमेन में टू गेट देयर। 39 T20 विकेट्स ले चुकी हैं इस साल, और इसके साथ ही हमारे साथ फिर से एक कॉलर जुड़ गए हैं। आज बहुत सारे सवाल हैं हमारे श्रोताओं के पास, तो नमस्कार, अपना नाम बताएं और साथ ही अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग, जी प्रकाश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। आपको भी हम सब की तरफ से
1: जी, ये खुशियां मैं नहीं दे रहा, ये भारत के खिलाड़ी दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भी। जी पूछिए।
2: मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि हमारा जो मिड अभी हरमन 14 बॉल 14 रन, ठीक है, ऋचा एक आई मीन पावर हिटर के यानी जानी जाती है, तो हमारा मिडल ऑर्डर इतना कच्चा क्यों है, मुझे ये जानना है सबसे पहले तो। और दूसरा ये है कि हम जो हमारी फील्डिंग्स है या फिर स्मिति को हमने इतने देखो इतना अच्छा खेल रही थी फिर भी हमने मिसकम्युनिकेशन देखा, हम इस पे काम क्यों नहीं कर सकते, ऐसे मेरे दो क्वेश्चन है
3: जी। उतरा हम चाहेंगे
1: से बाहर निकलना है, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, और बेहतर बनना है, विश्व स्तर पर ऐसा बनना है कि कोई भी टीम हमसे कम्पीट ना कर सके। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हो रही हैं इस पर हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं?
4: देखिए बिल्कुल, और जैसे लतिका ने कहा, जो प्रेमा की बॉल पे लगातार एक ही ओवर में 2 या 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, तो वो किसी भी खिलाड़ी को भी डिमोटिवेट करने के लिए काफ़ी होता है। और हालांकि जिस टाइम पे वो कैचेस ड्रॉप हुए उससे रिजल्ट पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था, तो आपको भारतीय खिलाड़ी भी थोड़े से हंसते मुस्कुराते नज़र आए, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर उस वक्त टोटल 107 पे 8 की जगह 177 पे 8 होता तो शायद चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती, क्योंकि तब आपके पास करीब 1.5 ओवर में आपको सिर्फ 5 या 6 रन बनाने रह गए थे या 8 रन बनाने थे, तो सिचुएशन शायद बिल्कुल अलग हो जाती। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है, फील्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि आज बहुत ही 2 एक्सट्रीम्स पे थे भारतीय फील्डिंग, कुछ तो इतने कमाल के इन्होंने कैचेस लिए जो शायद किसी भी हॉल ऑफ फेम में जा सकते हैं, और कुछ ऐसे कैचेस थे जो 10 में से शायद 9 बारी ये लोग नींद में भी ले सकते थे और आज ड्रॉप हुई हैं कैचेस। तो वो कंसिस्टेंसी लानी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया या इवन इंग्लैंड जैसी टीमों को अलग बनाती है या थोड़ा बेहतर बनाती है, वो मुझे हमेशा से लगता है कि जो एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, एक किलिंग स्पिरिट होती है, कि आपके पास बिल्कुल आपके पास 70-72 रन का अभी कुशन है, आपको पता है कि अगले 6 गेंदों में या 2 विकेट ज़रूर गिर सकते हैं लेकिन 70 रन नहीं बन सकते, पर आपको उस स्टेज पे क्यों जाके लगता है कि यहाँ पे हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ दो चार कैच ड्रॉप हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। वो 18.3 ओवर में क्यों नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि उस चीज से ओवरऑल आपके रन रेट पे फर्क पड़ता है, जो गेंदबाज है उसकी इकोनॉमी रेट पे फर्क पड़ रहा है, उसमें आपकी टीम की सीरियसनेस नजर आती है उससे। और जब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ बड़े लेवल पे खेलते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, और हमने लगातार देखा है कि इन छोटी छोटी चीजों से ही भारतीय टीम ने कई बारी विश्व स्तर पे अपने मैचेस हारे हैं बड़ी टीमों के साथ। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाना, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाना, थोड़ा सा वो किलर इंस्टिंक्ट लाना कि किसी भी पॉइंट पे आपको गेम को ख़त्म जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी ख़त्म किया जाए, 20वें ओवर तक 120वीं गेंद तक लेके जाने का उसका कोई मतलब नहीं है आपका। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वाकई थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, वो तभी आएगा जब आप सीरियसनेस, जब आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल होंगे, थोड़ा सा और सीरियस होंगे इस चीज़ को लेकर।
0: जी बिल्कुल, वो किलर इंस्टिंक्ट और वो विनिंग माइंडसेट।

0: जी
1: बिल्कुल चाहिए। लतिका, फिर से बात की उत्तरा ने प्रेमा रावत की। श्रियंका पाकी की इंजरी के बाद सीधे वर्ल्ड कप में डेब्यू हुआ था और उसके बाद अब एशिया कप, पिछले 4 मैचेस में 6 विकेट, आज फाइनल में खाता खोला है उन्होंने। हाउ वुड यू रेट हर परफॉर्मेंस?
0: देखिए, मैच के बाद मैच में वो इम्प्रूव करते नजर आई हैं और इस एशिया कप में एक खास बात ये देखने को मिली है उनकी गेंदबाजी में, जो कि वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मिसिंग थी। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वहाँ पर लाइन लेंथ इतनी प्रॉपर नहीं थी, इतने अच्छे से गिर नहीं रहा था, लेकिन इस एशिया कप में उनके हाथ से बहुत ही अच्छा गेंद जो है सीम से निकल रहा है, अच्छा टप्पे पर गिर रहा है, अच्छी लाइन जो है उनकी पड़ रही है और अच्छा वहां से स्पिन भी करा पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है गेंदबाज में, जब वो एक मैच के बाद मैच में इंप्रूवमेंट करता हुआ आ रहा है। अब विकेट टेकिंग की बात करें उनकी, तो विकेट टेकिंग एबिलिटीज हैं और वो हर मैच में दिखा भी रही हैं। आज अनफॉर्चुनेटली उनके कैचेस पकड़े नहीं गए, अदरवाइज ये एक की जगह 2 या 3 यहाँ पर विकेट होते। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा काम वो अपनी गेंदबाजी पे कर रही हैं और जिसका असर हमें मैचेस में दिख रहा है कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही सटीक और डिसिप्लिन जो गेंदबाजी है उनकी तरफ से हो रही है। और वही है कि किस तरीके से हम कहते हैं ना बॉलिंग में लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो बहुत बेहतरीन कर रही हैं एज ए लाइक स्पिनर।
2: अच्छा, स्पिनर्स की तो बात हम करने ही वाले हैं, होनी भी चाहिए, और दुबई में क्योंकि ये टूर्नामेंट था इसलिए स्पिनर्स बहुचर्चित रहेंगे, ये तो हमें मालूम था। लेकिन वो जो दो पेसर्स हैं लतिका, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, स्पॉटलाइट उन पर आ नहीं रहा, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है इस टूर्नामेंट में। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को हम बताएं, अपने लिसनर्स को हम बताएं उन दोनों के बारे में कि क्या है जो आपने आकलन किया उनको इस टूर्नामेंट में खेलते हुए देखते हुए, उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं?
0: देखिए, काफ़ी इम्प्रूव्ड गेंदबाजी, मैं ये कहूँगी कि विश्व कप के बाद से सभी गेंदबाजों में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, खासकर हमारी पेस अटैक पे, क्योंकि हम काफ़ी थोड़ा निराश थे कि वहाँ पर हमारी गेंदबाजी इतनी बेहतर तरीके से हो नहीं पाई। क्रांति गौड़ की बात करें तो उनकी लाइन और लेंथ पे अच्छा काम किया है, विकेट टू विकेट वो गेंदबाजी यहाँ कर रही हैं, पहले काफ़ी शॉर्ट गेंदबाजी वो करती थी, लेकिन अब उन्होंने बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी की है, अपनी लाइन लेंथ पे काम किया है। वहीं अगर नंदिनी की बात करें तो हमने देखा है कि WPL में किस तरीके गेंदबाजी करती थी और अब थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर किए हैं और उसकी वजह से जो एक विकेट टू विकेट गेंदबाजी हम ज़्यादा उनकी गेंदबाजी में देख रहे हैं, हमें पता है कि इन स्विंग अंदर की तरफ आती हुई गेंद वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डालती हैं, तो कंसिस्टेंसी इस टूर्नामेंट में हमारे
2: स्लोअर बॉल डालती है बैक ऑफ द हैंड
0: वो परफेक्ट है उनकी नंदिनी की। मैंने बहुत कम बॉलर्स देखे हैं जो इतने परफेक्शन से वो गेंद डालते हैं और उन पर उनको विकेट भी मिलती है, पिछले मैच में हमने देखा लास्ट बॉल में उन्होंने कैसे विकेट लिया था।
1: लतिका, हर प्लेयर का जिस तरह आप एनालिसिस कर रही हैं, तो आपका पिक कौन होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए?
0: देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल जिस तरह गेंदबाजी श्री चन्नी ने यहाँ पे किए हैं कि यंगस्टर्स हैं, उभरता हुआ सितारा भी हैं और उनको ये इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब कोई यंगस्टर इस तरह गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में करता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका अलग होता है और उन्होंने अपनी काबिलियत भी दिखाई, अपने स्टैंडर्ड भी सेट किए हैं कि वो किस लेवल की गेंदबाज हैं और चाहे हम किसी भी बैटर को उनके सामने ले आते घबराती नहीं है बॉल को डालते टाइम और जो रिटर्न कैचेस वो पकड़ रहे हैं आजकल, मतलब कह सकते हैं कि हवा में होते हैं वो पूरे और उसके बाद, तो एक ये भी देखने को मिलता है कि फिटनेस पे भी वो अच्छा काम कर रही हैं, तो ये देखते हुए अच्छा लगता है कि कोई यंगस्टर इस तरीके से आपकी टीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और वुमेन ऑफ द मैच तो मैं कहूँगी कि एक गेंदबाज को, मैम से भी मैं एग्री करूँगी कि गेंदबाज को मिलना चाहिए क्योंकि बैटिंग डोमिनेटिंग ये गेम बनता जा रहा है, तो जहाँ वहाँ बॉलर अगर 4 विकेट ले रहा है उसका ये मतलब, और एक मेडन भी डाला है उन्होंने, तो इसका ये मतलब है कि कितनी बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की होगी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लगता है कि शेफाली या दीप्ति, क्योंकि दीप्ति एक ऑलराउंडर हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करती हैं, समय आने पर अच्छी बल्लेबाजी भी वहाँ करती हैं और शेफाली के इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि जब इनिंग की शुरुआत करनी होती है वहाँ पर भी एक प्रेशर होता है, जब चाहे आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो या आप चेज करते हुए बल्लेबाजी करने हैं, तो वो एक अहम समय होता है वहाँ पर एज अ ओपनर कि आप शुरुआती दौर में वो ओवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में आपका रन रेट अच्छा होना चाहिए अगर आप दूसरी टीम पर प्रेशर डालें। तो दोनों ही अपनी तरफ से एक

0: मैं कहूंगी मेरी तरफ से तो ये टाई नजर आता है, तो अब देखते हैं फाइनली किसको मिलता है।
1: चलिए, कठिन निर्णय है, लेकिन हमारे कॉलर्स की क्या राय है वो हम जानना चाहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सवाल पूछिए अपना। जी और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी खुशी जाहिर की है, उसी से हम बहुत खुश हैं। उत्तरा, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द प्लेयर्स, बट देयर इज वन प्लेयर हू वी हैवंट डिस्कस्ड इन लेंथ, स्मृति मानधना। वी टॉक्ड इन द प्री शो दैट एट टाइम्स यू नो दे से दैट शी डजंट डिलीवर एट द बिग स्टेजेस, ये उन पर एक लालचन लगाया जाता था फैंस द्वारा। आज 150 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक बनाया है, रनआउट हो गई जरूर, बदकिस्मत रही, लेकिन आज कमाल की पारी खेलकर वो नींव उन्होंने रखी बड़े स्कोर की।
2: देखिए मुझे लगता है कि हमारे देश में सिर्फ फैंस नहीं, इन जनरल हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो अक्सर एक्सट्रीम्स पे ज़्यादा जाते हैं। तो जो लोग ये कह रहे होंगे इतने टाइम इतने वक्त से कि स्मृति मानधना बड़े स्टेज पे नहीं परफॉर्म करती या वो नहीं अपने रन्स बना पाती या वो बड़ी टीमों के साथ नहीं खेल पाती, वही लोग आज शायद सबसे बड़े फैंस होंगे स्मृति के, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आज पारी खेली है और जिस तरह से जो ओपनिंग पार्टनरशिप तैयार की है, और उसके बाद जब हरमनप्रीत के साथ वो मिसकम्युनिकेशन हुई तो वो बहुत आसानी से अपनी जगह पर खड़ी रह सकती थी और हरमन आउट होकर जा सकती थी, तो उन्होंने अपना एक सेट बैट्समैन होते हुए एक अच्छा स्टार्ट लेते हुए एक बहुत बहुत सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने जो अपना विकेट सैक्रिफाइस किया है एक तरह से टीम के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि वही लोग शायद इस वक्त उनको सबसे बड़ा हीरो भी मान रहे होंगे। तो हमारे देश में फैंस की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो किसी भी तरह की कोताही को उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, और स्मृति जितनी बड़ी खिलाड़ी हैं उनसे हर बारी ये उम्मीद होती है कि वो एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगी वो किसी भी फॉर्मेट में हो, तो जब वो नहीं प्रदर्शन कर पाती तो लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो भी इंसान है और इंसान का खराब फॉर्म आ सकता है, इंसान खराब खेल सकता है, और जानबूझ के कोई भी खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं उतरता है कि आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं खराब खेलूंगा। तो फैंस का ओपिनियन सर आंखों पर स्मृति जितनी बड़ी खिलाड़ी हैं बहुत लंबा समय उनका कभी जाता नहीं है कि उनका फॉर्म खराब हो या रन ना आए। इस पूरे टूर्नामेंट में पहला एक हांगकांग वाला मैच छोड़ के उनके उस तरह से रन्स नहीं आए थे, तो शी वॉज ड्यू फॉर अ बिग स्कोर, एंड अगर वो आज रनआउट पे अपना विकेट नहीं छोड़ती तो शायद शी कुड हैव बीन द टॉप स्कोरर ऑल्सो द वे शी वॉज बैटिंग। तो प्लेइंग फॉर द टीम एंड प्लेइंग द वे शी डज एंड द काइंड ऑफ प्लेयर शी इज, इमोशंस अपनी जगह पे हैं बट देर कैन बी नो क्वेश्चंस ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड हर क्रेडेंशियल्स।
3: जी बिल्कुल, स्मृति मानधना के क्रेडेंशियल्स पे कोई शक नहीं है, और हमारे कॉलर्स आज फिर बहुत उत्साहित हैं दर्पण। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए और अपना नाम बताएं। जी
4: बहुत सुनता हूँ क्योंकि आँख से तो अंधे मैडम, लेकिन मैं मोबाइल पे देखता नहीं मैच कभी, और जिस दिन से कमेंट्री सुनना शुरू किया मैं अभी तक सुनता हूँ 2004 से, और कमेंट्री के लिए मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ कब कमेंट्री आ जाए क्रिकेट का, कि मैं सुनना पसंद करे। और भारतीय टीम का जो महिला टीम आज वर्ल्ड कप एशिया कप का जो फाइनल जीता मुझे बहुत खुशी मिला, और चेन्नई जो आज का 100% है कि मैं
1: 2004 में जीता था, तो शायद भारतीय टीम के लकी चाम आप ही हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी, हमारे साथ जुड़ते रहिए, आप जैसे श्रोता जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमारी प्रोडक्शन टीम जो मेहनत करती है इस कमेंट्री को प्रोड्यूस करने में उनका भी हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे भारतवर्ष को।
3: जी जी, जी।

0: जी, आपके जैसे श्रोता हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपका फ़ोन कॉल, आपकी हर ओपिनियन, हर राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण, एक और वोट आ गया है श्री चरणी के लिए, क्या आपका वोट भी चरणी के लिए ही है?
1: देखिए, अब प्लेयर ऑफ द मैच कोई भी बने, मुद्दा यह है कि ट्रॉफी भारत के पास आ रही है और उससे हम बहुत खुश हैं। पुरुष क्रिकेट में भी भारत एशिया कप का चैंपियन पिछले साल बना था, इस बार महिलाओं ने भी जो 2024 में जो हार मिली थी श्रीलंका के खिलाफ, कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ा है। लेकिन अब एक थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। लतिका, हमने देखा, ठीक है, भारत को हमने देखा, पाकिस्तान को देखा, श्रीलंका को देखा, बांग्लादेश को देखा, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने इंडोनेशिया की भी भागीदारी देखी, थाईलैंड की भी भागीदारी देखी, हांगकांग की भी भागीदारी देखी। तो वर्ल्ड क्रिकेट की जो ग्लोबलाइजेशन है, जो हर एक क्रिकेट फैन चाहता है कि विश्व भर में ये खेल खेला जाए, उस लिहाज से आप इस टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं?
2: देखिए, मैं यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगता है ये सुन के भी और देख के भी कि बाकी के जो कंट्रीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो स्पोर्ट है ये काफ़ी अच्छे लेवल पे चल भी रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ WPL स्टार्ट हो गया है, कैरेबियन लीग स्टार्ट हो गई है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो हर जगह पर ये जो लीग्स हैं इससे एक उत्साह बनता है, जो बच्चे देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, और वही तो अगली पीढ़ी है इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जितना ये टेलीकास्ट हो रहा है TV पे या जितना ये सोशल मीडिया में आ रहा है, उसकी वजह से जो है लोग क्रिकेटर्स को जान रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। तो इस वही एक रीज़न मुझे ऐसा लगता है बड़ा कि जो यंगस्टर्स हैं इस गेम को फॉलो कर रहे हैं, खासकर लड़कियां इस गेम को फॉलो कर रही हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं जो हमें टीम बनती हुई नज़र आ रही है, और इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें हम उनका पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं।
0: जी, एसोसिएट नेशंस की बात हम कर रहे हैं उत्तरा, तो आपको किसकी परफॉर्मेंस ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में?
3: देखिए, काफ़ी टीमें हैं, और जब हम एसोसिएट की बात करते हैं तो जिस तरह से चीज़ें फैल रही हैं, तो हांगकांग में काफ़ी लोग खेल रहे हैं, थाईलैंड में क्रिकेट अभी से नहीं है, बहुत से लोगों को शायद नहीं आइडिया होगा कि थाईलैंड में काफ़ी सालों से क्रिकेट खेली जा रही है, और थाईलैंड काफ़ी पहले से एसोसिएट नेशन है।
0: शायद यही राज है इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस का।
3: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इन टीमों को आपस में और ज़्यादा खेलना चाहिए, और जितना हो सके हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट जिस लेवल पे है वो ऑब्वियसली विश्व स्तरीय है, पर जब आप अपने आसपास के, जिसे कहते हैं ना कि जब पड़ोस मजबूत होगा तो आपकी अपनी ताकत बढ़ती है, तो एशिया में क्रिकेट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितनी ज़्यादा टीमें अच्छा खेलेंगी और ऊपर आएंगी, उतना ही आपका खुद का कंपटीशन लेवल भी इम्प्रूव होगा, और जब तक आप आपस में और ज़्यादा नहीं खेलेंगे, हालांकि BCCI काफ़ी हेल्प करती है, आज अगर दिल्ली में भारत अफगानिस्तान मैच चल रहा है तो एक तरह से वो अफगानिस्तान का होम मैच है, वो होस्ट हैं हमारे इस सीरीज़ के, लेकिन वो दिल्ली में चल रहा है, वो अपने ट्रेनिंग कैंप भी यहीं पे लगाते हैं इंडिया में ही, तो चल रहा है काम। लेकिन मुझे लगता है कि महिला क्रिकेट में भी इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है, और जो एसोसिएट नेशंस हैं उनको यहाँ बुला के, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे ही क्यों ना हो, हमारे टूर्नामेंट्स में खिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि अगर वो अपनी नेशनल टीम्स भेजते हैं कुछ समय के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और उनको सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
1: जी, BCCI की हमेशा एक अहम भूमिका रही है। हम जानते हैं कि भारत की जो पुरुष टीम है अभी जापान के साथ भी एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आने वाले दिनों में खेलने वाली है। इस वक्त हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं, भारतीय टीम जश्न मना रही है एक हडल में, और BCCI के सेक्रेटरी देवजीत साइका वहाँ पे मौजूद हैं, और फील्डिंग के लिए मेडल दिया जा रहा है नंदिनी शर्मा को। ये एक ऑफिशियल प्राइस तो नहीं है, लेकिन टीम अपने ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट करती है बेस्ट फील्डर को, तो आज नंदिनी शर्मा को वो मेडल दिया गया है। राजीव शुक्ला भी वहां पर मौजूद हैं, और फील्डिंग कोच जो है भारतीय टीम के मुनीश बाली वो नजर आ रहे हैं, हेड कोच अमोल मौजूमदार नजर आ रहे हैं, और साथ के साथ भारत के सारे प्लेयर्स हैं। एक हडल में जश्न मनाया जा रहा है, इंतजार हालांकि

0: किया जा रहा है ACC के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब उनका, ताकि वो आए और ट्रॉफी दें। वो प्रेजेंटेशन अभी से कुछ देर में होगी, लेकिन तब तक हम अपने श्रोताओं को कुछ रोचक आंकड़े बता दें कि 10 संस्करण एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर 10 संस्करण महिलाओं के एशिया कप के खेले गए हैं, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने चौथी बार एज अ कैप्टन ए टाइटल जीता है। इनसे पहले मिथाली राज की कप्तानी में 3 बार भारत ने टाइटल जीता था, तो 3 बार एशिया कप जीतने वाली कप्तान मिथाली राज दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं उस सूची में, और हरमनप्रीत कौर नंबर 1 पर आ गई हैं। लतिका, एक बार फिर हम बात कर रहे हैं कि यहां से आगे कैसे इंप्रूव करना है। 2-3 वो वीक स्पॉट्स अभी भी दिख रहे हैं, एक वो नंबर 3 की पोजिशन, आपने प्रतिका को ट्राई किया, अभी एशियन गेम्स के स्क्वाड में भी आपने उनको डाला क्योंकि जमीमा रॉड्रिग्स फिट नहीं है, आज कामलिनी को आपने खिलाया जरूर लेकिन नीचे भेजा। दूसरा वो भारती फूलमली का जो स्पॉट है नंबर 5 नंबर 6 पर, वो कहीं ना कहीं अभी पक्का नहीं हुआ है। इन दो वीक पॉइंट्स को आप आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं इम्प्रूव होते हुए?
1: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये इस चीज़ पे काम करना, क्योंकि आपकी जो ओपनिंग साझेदारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी बल्लेबाजी कर रही है, और वन डाउन के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर कमलिनी को आपने चेंज किया है प्रतिका रावल से, और जो आज उन्होंने सिर्फ पाँच गेंदों में वो कमाल करके दिखाया, तो उनको भी वो मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वहाँ पर आके वो बल्लेबाजी करें, कुछ शॉट्स खेलें, कुछ कॉन्फिडेंस उनमें भी आए आगे के मैचेस खेलने के लिए। तो वहाँ से यहाँ पे अगर इनको नंबर 3 पर लेकर आते हैं तो वो जस्टिफाई भी करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे कमलिनी ओपनिंग करती हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी उनके पास काफ़ी है, और वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी जो है बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी करती है, बड़े बड़े शॉट्स लगाती हैं, तो वो एक्सपीरियंस इनको यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर उन्होंने आज वो कॉन्फिडेंस भी दिखाया, पहला मैच फाइनल मैच, प्रेशर बहुत था, आपको नंबर 3 पे नहीं भेजा गया, 4 पे नहीं भेजा गया, आप वहाँ डगआउट में बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब आपके बल्लेबाजी करने को मिलेगी, और उसके बाद जब आप बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक ही मकसद होता है रन बनाने का। तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो कमलिनी ने आज दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको नंबर 3 की जो समस्या, अभी जमीमा रॉड्रिक्स जो कि हालांकि इंजर्ड चल रही है उनकी जगह पर खिलाएं तो बेहतर होगा, और उसके बाद हरमन आती हैं, फिर ऋचा घोष मुझे लगता है कि 15वें ओवर के आसपास आएं, उसके बाद आएं तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल उनकी इनिंग नज़र आएगी। भारती फुलमल्ली को मैं हरमनप्रीत के बाद देखती हूँ, क्योंकि उनको पूरा मौका वहाँ मिलेगा अपनी बल्लेबाजी करने में, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि एक दो गेंद उनको लगती है समझने में देखने में, और उसके बाद वो बेहतरीन जो है बल्लेबाजी करती है। उनको हमने पहले डोमेस्टिक में भी देखा है, WPL में भी देखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बल्लेबाजी नहीं करती या रन नहीं बनाती, तो सही नंबर पर उनको भेजना बहुत जरूरी है।
0: तो एशियन गेम्स आने वाले हैं, वहां पर हर मुकाबला भले ही नॉकआउट है, सामने आप जापान से पहला मुकाबला खेलेंगे, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की गुंजाइश देखते हैं वहां पर, या फिर आप कहेंगे नहीं जी नॉकआउट है, एशियन गेम्स का सवाल है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे?
1: देखिए, जिस तरीके से अभी तक जो परफॉर्मेंस दिखाई है इस एशिया कप में, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर कुछ इसी तरीके की सोच वहाँ पर मैनेजमेंट की है या कोच की है, कप्तान की है, तो एग्जीक्यूशन लाने में कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को।
2: एग्जीक्यूशन लाने में दिक्कत नहीं है, पर उत्तरा हम देख रहे हैं स्क्वाड में और भी प्लेयर्स थे, रेणुका सिंह ठाकुर थी, कमलिनी को अभी मौका दिया गया है, क्या ये एक अच्छा मौका था कि हम उन सबको ट्राई करते अलग अलग जगहों पर, उन सबको मौका दिया जाता खेलने का, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें चैम्पियंस ट्रॉफी में बड़ी टीमों का सामना करना है, और शायद ये एक अच्छा मौका था टीम को तैयार करने का।
3: बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, कि हर टूर्नामेंट आप जीतने के लिए उतरते ज़रूर हो, लेकिन हर टूर्नामेंट का मेन मकसद सिर्फ जीतना नहीं हो सकता है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टूर्नामेंट्स को, कॉम्पिटिशन्स को, अपने प्लेयर्स को और उनकी उनके तैयारी को, उनकी उनके प्लान, उनके एक्सपोजर को, उनके रिहैब को, अगर इंजरी या निगल्स चल रही हैं, और ये एक या हर, और ये आप हर 2 महीने या हर 3 महीने में क्वार्टरली रिव्यूज़ नहीं हो सकते हैं, ये इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा, आपको साल के हिसाब से एटलीस्ट सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हर टूर्नामेंट में सिर्फ ये सोच के उतरेंगे कि हम चांस नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पहले अपना जीत जाएं उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, तो फिर आपके पास कभी एक्सपेरिमेंट करने या टेस्टिंग का कभी मौका मिलेगा ही।

0: नहीं आपको।
1: जी आपको बता दें कि भारतीय टीम ने आज 72 रन से इस फाइनल मुकाबले को जीता है और किसी भी वुमेन्स T20I के मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ये फाइनल में आई दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पहले नंबर पर 85 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था मेलबर्न में 2020 में। पुराने जख्म ताज़ा हो जाएंगे अगर उसकी बात करेंगे तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो जीत है भारत के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है। 8वीं बार भारत चैंपियन बना है एशिया का और हम लगातार बात कर रहे हैं हम कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनके प्रदर्शन की, लेकिन कप्तान को कैसे भूल सकते हैं लतिका। हरमनप्रीत कौर भले ही बैटिंग वाइज थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म रहा उनका यह प्रदर्शन, आप उनकी कैप्टेंसी को कैसे रेट करेंगे?
2: देखिए जिस तरह की कप्तानी वो करती हुई आ रही हैं वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक हमने देखा है कि बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहाँ पर की है।
3: हम आपको रोकना चाहेंगे, हम चलते हैं पहले सीधा फेलिसिटेशन सेरेमनी की तरफ।
4: डॉक्टर कमाली मेंबर ECB, मिस्टर ईरान विक्रम रत्न एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ACC, मिस्टर मुबाशिर उस्मानी जनरल सेक्रेटरी ECB इवेंट होस्ट एंड मिस्टर इब्स्टम अहमद अलकाबी Senior Vice President, Jasper Sales, DP World, representing DP World. Right, moving on, first and foremost, I'd like to invite Chamari Athapattu to come and sign the match ball. Chamari Athapattu led the side well, unfortunately, the defending champions losing out to the mighty Indian side. Right, now moving on, the much official mementos to be collected. I would request Mr. Mubashir Usmani from Emirates Cricket Board to please present the mementos to the match officials who have been amazing throughout this tournament, starting with our match referee, Supriya Rani Das, followed by Salima Imtiaz, on-field umpire. Satira Jakar Jesse on field umpire. Rokia Sultana. And followed by last and but not least, Humaira Farah. Right, moving on now to the runners-up team presentation to hand over the mementos. And now I'd like to invite Mr. Khalid Zaruni and Iran Vikramaratna to hand over the medals to the Sri Lankan side, starting with Chamari Athapattu, as she's already out here, followed by the players, please. Chamari Athapattu, followed by Harshita Samara Vikrama. Hasini Pereira. Sugandhika Kumari. Mithali Ayodhya, Nilakshi Silva, who played the final with a broken finger, showed the courage of the Sri Lankan side. Vishmi Gunaratna. Madhushani, Kavisha Dilhari, Chetana Vimukti,

0: टीम हो चाहे एशियन की और कोई भी टीम हो, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के गए गए होंगे। और भारतीय टीम ने कप जीता है, लेकिन एशियन गेम्स को किस तरीके से लेते हैं, वहाँ क्या प्लान्स होंगे, उनके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनका वो जो है जवाब ढूंढ रहे होंगे।
1: जी, तो चामरी अच्छा पचू ने कहा कि वी विल बाउंस बैक इन दी एशियन गेम्स। जी हाँ, एशियन गेम्स पर अब नजर होने वाली है, जहां पर क्रिकेट तो हिस्सा होने ही वाला है, साथ के साथ करीब 36 खेलों में भारत के अलग अलग खिलाड़ी शिरकत करते हुए नजर आएंगे और आकाशवाणी के जरिए हम सब साक्षी बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो मेडल्स का आंकड़ा है वो ट्रिपल फिगर्स में जाएगा। भारतीय टीम ने वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप 2026 को अपने नाम किया और आपने सुना आकाशवाणी पे सीधा प्रसारण इसका, और इसके बाद जैसा हम कह रहे हैं अब नजरें होने वाली है एशियन गेम्स पर।
2: बिल्कुल, और एशियन गेम्स का फॉर्मेट थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ सीधे क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। 17 तारीख को पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच होगा और दूसरा मुकाबला उसी दिन होगा बांग्लादेश और चाइना के बीच। वहीं 18 सितंबर को इंडिया का सामना होगा जापान से और श्रीलंका मुकाबला करेगा मलेशिया से। इसके बाद इन क्वार्टर फाइनल्स के जो विजेता होंगे वो सेमीफाइनल में भिड़ेंगे 20 सितंबर को, और ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल मैचेस होंगे 22 सितंबर को। तो उसके लिए हमारी तैयारी, स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं उत्तरा, उसमें कोई खास कमेंट आपका उस स्क्वाड पे, क्योंकि लगभग वही नाम है जो अभी एशिया कप में हमें दिख रहे थे।
3: मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फेरबदल करेंगे भी, और क्योंकि यही टीमें आपको फिर से वहाँ पे मिलने वाली हैं, और कुल मिला के 2 या 3 मैक्सिमम अगर आप फाइनल खेलते हैं तो मैचेस हैं, 3 मैच के लिए आप क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे नहीं, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये करना चाहते तो किसी यंगस्टर को ज़रूर चांस दे सकते थे, जैसा हम इस टूर्नामेंट के लिए भी लगातार बोल रहे हैं, पर अब जब स्क्वाड अनाउंस हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है। पर उम्मीद यही है कि वहाँ पे भी गोल्ड मेडल आएगा, क्योंकि जो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जितना बड़ा गैप है भारतीय टीम और बाकी टीमों के बीच में, तो गोल्ड से कम जो होगा वो एक तरह से आपके लिए हार के बराबर ही होगा।
1: जी, why fix what is not broken? तो उस स्क्वाड पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक स्क्वाड यहां पर भी रहा जिसने आप तक ये प्रसारण पहुंचाया, उसका धन्यवाद करना बहुत बहुत जरूरी है। उत्तरा, लतिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: और मेरी को एंकर मुदिता को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने संचालन करने में मदद की। थैंक यू सो मच मुदिता।
2: शुक्रिया दर्पण।
1: और बिहाइंड द सीन्स हमारी टीम जो बहुत मेहनत करती है, टेक्निकल टीम जयराम, मनोज सिंह, त्रिलोक गुप्ता, रामाशीष यादव का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ के साथ हमारे प्रोडक्शन क्रू का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें आज थे माधवी तिवारी, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर, एंड ऑफकोर्स द मैन हु रन्स द शो, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम, शाहनवाज खान, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप आकाशवाणी से जुड़े और साक्षी बने इस एशिया कप वुमेन्स 2026 के फाइनल का। इसी के साथ मैं दर्पण त्रिकिया आपसे विदा लेता हूं, सुनते रहिए आकाशवाणी।
4: प्लेयर ऑफ द मैच।
5: अभी आप वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए फाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
6: You've been listening to a special program, Player of the Match of the final T20 cricket match played between India and Sri Lanka of Women's Asia Cup T20 cricket tournament 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
7: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 12:21 हो चुके हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर अपनी पहली सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।